0: वेल डन किड्स, आज दिन की शुरुआत हुई है बच्चों की आवाज से, इससे खूबसूरत दिन कैसे हो सकता है?
1: एब्सोल्युटली आयुष्मान, और ना सिर्फ आज का दिन, ऑफ कोर्स इस गांधी जयंती, लेकिन इनका जुनून देख के, यू नो, सीइंग द एक्साइटमेंट इन देयर वॉइसेस, हमें ये पता है कि वी आर इन सेफ हैंड्स, आवर फ्यूचर जनरेशंस आर गोना कीप अस सेफ एंड हेल्दी. थैंक यू सो मच बच्चों.
0: थैंक यू किड्स.
1: बिग राउंड ऑफ अप्लॉज.
0: ये मुझे लगता है बनेगा स्वस्थ इंडिया से बनेगा मस्त इंडिया हो रहा है, क्योंकि हमारा भविष्य गाकर गया अभी सामने हमारे.
1: बिल्कुल सही कहा आपने.
0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका. आज 2 अक्टूबर है, बापू का जन्मदिन है, वो इंसान जिन्होंने कहा था कि स्वच्छता आजादी से भी ज्यादा जरूरी है. और आज इसी दिन हम एक ऐसी कहानी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है पिछले 12 साल से लिखी जा रही है.
1: बिल्कुल सही आयुष्मान. वेलकम टू सीजन 13 ऑफ द एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन. नाउ मोस्ट कैंपेन्स कम एंड गो. आयुष्मान एक स्लोगन होता है, एक सीजन होता है, और फिर सब भूल जाते हैं. बट दिस वन हैज स्टेड, क्योंकि बदलाव एक दिन का इवेंट नहीं होता, बदलाव एक आदत है. एंड हैबिट्स ऑब्वियसली टेक टाइम. 13 years आयुष्मान इज व्हाट इट हैज टेकन टू टर्न एन आइडिया इनटू अ वे ऑफ लाइफ. और आयुष्मान ये सफर जब शुरू हुआ था, एक सिंपल से सवाल से शुरू हुआ था कि क्या हमारा देश भारत साफ हो सकता है.
0: और फिर इसका जवाब दिया आप लोगों ने, गांव की उन माओं ने जिन्होंने घर में टॉयलेट की मांग की, उन टीचर्स ने जिन्होंने क्लासरूम को बदलाव की पहली प्रयोगशाला बना दिया, उन बच्चों ने जो घर जाकर अपने पेरेंट्स को समझाने लगे

0: आशा वर्कर्स, सरपंचों और सैनिटेशन वर्कर्स ने जिनके बिना ये कहानी अधूरी है। मैं हमेशा उन कहानियों की तरफ खींचा गया हूँ जिन पर लोग बात करने से कतराते हैं, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, पीरियड्स, हाइजीन। ये कैंपेन भी वही करता है। इट स्टार्ट्स द कॉन्वर्सेशन इंडिया नीड्स टू हैव। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, वी नीड टू कीप एट इट।
1: We do have a long way to go and we are keeping at it. Aayushman, जैसे COVID pandemic से पूरी दुनिया ने सीखा कि स्वच्छ और स्वस्थ दोनों साथ हैं, हमने देखा कि हाइजीन अकेला सिर्फ काफ़ी नहीं है, हेल्थ ऑब्वियसली इज द बिगर पिक्चर। और इसलिए बनेगा स्वच्छ इंडिया, बनेगा स्वस्थ इंडिया। स्वच्छता पहला कदम था, स्वास्थ्य मंजिल है। गिविंग बेटर हेल्थ इन मोर हैंड्स एवरी डे।
0: Yes, better health, क्योंकि अच्छी सेहत किसी का privilege नहीं है, हर हिंदुस्तानी का हक है। In more hands, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर्स या सरकार की नहीं, ये एक टीचर के हाथों में है, एक माँ के हाथों में है, एक बच्चे के हाथों में है, और हाँ, आपके हाथों में है। क्योंकि एवरी डे, क्योंकि सेहत एक दिन का जश्न नहीं है, रोज़ की आदत है। क्योंकि अब वक्त है कहने का, आई एम द चेंज।
1: एब्सोल्युटली आई एम द चेंज। और आपने बिल्कुल सही कहा, इट बिगिंस With I am the change, जो आपने बिल्कुल कहा। But over the last 12 years, I believe has turned into a movement. So let's take a quick look at the journey that has brought us all here together.
2: पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, फिट इंडिया, क्लीन इंडिया।

0: What we just saw was only a glimpse of an incredible 12-year journey. And as we begin a new chapter, the launch of season 13, I would like to welcome three leaders who've played an important role in taking this vision forward. Joining us virtually is Chris Litt, Chief Executive Officer, Reckitt. Joining us here, we have Gaurav Jain, Executive Vice President, Regional Director, Reckitt South Asia. We also have with us Rahul Kaval, CEO and Editor-in-Chief, NDTV. And we have with us Sonu Sood, actor, producer, and philanthropist, someone who's been on the campaign early and an integral part of it. Thank you all so much for joining us today. But before we go any further, we have a special message from the health minister of our country.
1: Mahatma Gandhi ji ki jayanti ke pavan avsar par banega swasth India ke 13th season ke shubharambh par aap sabhi ko meri hardik shubhkamnaen. Pichle 12 season se banega swasth India desh mein swachhta स्वास्थ्य पोषण जन जागरूकता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है. इस अभियान ने स्वच्छता कर्मियों के प्रशिक्षण से लेकर बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने तक अनेक सार्थक प्रयास किए हैं. मुझे गर्व है कि आजादी के दशकों बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लाल किले के प्राचीर से स्वच्छ भारत का आह्वान दिया और स्वच्छता के महत्व को समझाया. उनके नेतृत्व में शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान आज एक सशक्त जन आंदोलन का रूप ले चुका है. इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष का थीम बेहतर स्वास्थ्य ज्यादा हाथों में मुझे अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है. पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम नेतृत्व में देश ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्मित किए गए, 12 करोड़ से अधिक घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया, जहां पीढ़ियों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी. 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के निवास स्थान के निकट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं. आयुष्मान भारत जो योजना है वो 61 करोड़ से अधिक नागरिकों को बीमारी के आर्थिक भार से सुरक्षा प्रदान कर रही है. यह संख्या यूरोपीय संघ के देशों की कुल आबादी से अधिक है. व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर नेटवर्क के माध्यम से 12 आवश्यक हेल्थ पैकेज दिए जा रहे हैं. टीबी मुक्त भारत अभियान की वजह से भारत में हर साल सामने आने वाले टीबी के नए मामलों में 21% की कमी आई है और टीबी से होने वाली मौतों में 28% की गिरावट दर्ज की गई है. अपने दूरदर्शी नेतृत्व से प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों भारतीयों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है. प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि स्वस्थ समाज का लक्ष्य स्वस्थ सुविधाओं के विस्तार से और जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है. बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा. एक स्वस्थ और जागरूक नागरिक ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है. स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत, यही विकसित भारत की मजबूत नींव है. मैं बनेगा स्वस्थ इंडिया की पूरी टीम को इसके लिए और उनके सहयोगी संस्थानों को 13वीं सीजन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं. आइए महात्मा गांधी जी के स्वच्छता और स्वस्थ समाज
2: के सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत का संकल्प लें। जय हिंद।
3: बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा जी। कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के मिशन में प्राइवेट कंपनियां जुड़ती हैं, मीडिया जुड़ता है, लेकिन साथ ही साथ जब सरकार की ताकत लगती है तभी वाकई में ज़मीन पर इसका असर दिखता है। इट्स फैंटास्टिक टू बी हियर। आयुष्मान एंड अंबिका, द टीम्स हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट द ईयर एंड गॉट व्हाट स्ट्राइक्स मी एज मोस्ट रिमार्केबल इज कि साल भर कितना एफर्ट लगता है। ये जो लोग अभी टेलीविजन पे, डिजिटल पे, सोशल पे देख रहे हैं, साल भर की पूरी मेहनत, पूरी तपस्या है जिसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे।
4: Right,
3: right, and I hope we see the all of it today. It comes alive. It's fantastic to have you. And Ayushman, I see you're getting better with the passing year. When you came in, you were a little concerned about how this would go. He's just growing into this role. We're very, very happy to have you with us. And thank you
5: so much,
3: here.
5: Rahul. Thank you so much. Nadda ji ne teen baar Ayushman naam le liya. Yeah, of course.
3: Unko pata tha kaun hai yahan pe. Isiliye. We want to go across to Chris Lish. He's the CEO of Reckitt Globally. Thank you very much, Chris, for joining us. And thank you for partnering with NDTV in this very important mission.

0: but actually how healthier choices can become part of everyday life for 1.4 billion. That's a fundamentally different challenge. At Reckitt, we've learned that improving health at scale requires three things. The first thing is access. Better health cannot depend on where you live or what you earn. It requires solutions that are affordable, available, and relevant across diverse communities, say from major cities to the most remote parts of the country. The second element is trust. Sustainable behavior changes happen through healthcare workers, those at the front line, and the leaders in the community who all play a critical role turning health information into action and action into habits. And at Reckitt, we're guided by the simple principle, doing the right thing always. That trust is not built through what we say, it is earned through consistent action, long-term commitment, and delivering meaningful outcomes for communities. And then the third element is prevention. The greatest public health impact comes when we help people stay healthy, not just treat illness. That's why we focus on embedding early healthy behaviors, particularly among children, where small interventions can create lifelong benefits and actually also influence entire families. So ultimately, it takes all those three components to be successful in this mission.
1: So well said, right? I mean, Raul, what he said initially, this is what Chris has said, right? It's about behavior change, and that's what we've been trying to bring about, you know, through the campaign, like actually being the change, being part of this change. Ayushman, humne wo dekha, and Sonu, you've been, you know, an integral part. Aap shuru se, you've been supporting the campaign, but when we see your work as well, chahe wo COVID ho, humne Nepal mein dekha, kahin bhi jab issue ho, especially health ke, you've always been there.
2: मैं पूछना चाहता हूँ, देखो, एक मैं फिल्म कर रहा हूँ सूरज बजाते हैं कि उसमें प्रेम बना हो, ये भी प्रेम बन चुके हैं. प्रेम का एक ना बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, प्रेम इज अ ग्रीन फ्लैग. आज ग्रीन पहनकर भी आए हैं तो आप पब्लिक की नज़रों में इतने ग्रीन फ्लैग हैं, उनकी हमेशा सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आप कैसे इसको देखते हैं?
3: आयुष्मान, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यू नो, मेरा इस कैंपेन के साथ बड़े सालों का रिश्ता है, और आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आई फील बागडोर सही हाथों में है. We are making sure that, you know, the message reaches to the right people. But like you said, जब मैं मुंबई आया था तो बहुत सारे ड्रीम्स लेकर, you know, you're an engineer, you want to become an actor, फिर आप light, camera, action की दुनिया में आप आ जाते हैं, और फिर कई सालों बाद आपको लगता है कि शायद जो ज़िंदगी होती है वो सिर्फ light, camera नहीं होती, एक ऐसा action होता है जो आपकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है. और जब आप एक आम इंसान के साथ जुड़ते हैं इन मुश्किल समय में, तब आपको लगता है कि दुआओं में बड़ा असर होता है. यू नो, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू गेट, हमें हर रोज़ एक ऐसी फीलिंग होती है कि आज एक, यू नो, 1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है, जब हम उन परिवारों के साथ समय बिताते हैं. तो मुझे लगता है कि एक रास्ता मिला है ज़िंदगी का, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी डू, एंड आई थिंक दैट गिव्स यू द बेस्ट फीलिंग एवर. और मुझे हर रोज़ ईश्वर का धन्यवाद करना पड़ता है कि, यू नो, आई फील दैट आई वाज अ चोज़न वन.
4: सोनू के साथ खास बात यह है कि ऐसा नहीं कि वो कैमरे के लिए कर रहे हैं या सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं. जब कैमरा ना भी हो, कोई किसी का फोन ना भी हो, तभी लगे रहते हैं. सो इट्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, एंड दैट इज क्वाइट ऑसम. मोर पावर टू यू.
3: इट्स नॉट जस्ट मी, आई वुड से कि कनेक्शंस बड़े जुड़ते हैं. जब आप किसी, यू नो, अनजान इंसान के लिए मदद मांगते हैं किसी और से, और आप बोलते हैं कि मेरा, देखिए, मैं इससे मिला नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मैं दोबारा शायद मिलूंगा भी नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करके इनकी जान बचा सकते हैं, और फिर जो डॉट्स जुड़ने शुरू होते हैं, आई थिंक दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड.
4: ये बहुत पुण्य का काम है. वो पुण्य का काम वो भी है जो गौरव करे, क्योंकि जिस तरह का एफर्ट लगता है, एंड द नंबर्स ऑन दिस आर स्टैगरिंग. 30 million चिल्ड्रन रीच्ड, लैक्स ऑफ स्कूल्स इम्पैक्टेड अक्रॉस द कंट्री. But the question is about outcome. It's not just about outreach. How do you ensure that the outreach that you're being able to deliver is actually leading to measurable outcome, which I know is extremely important for you?
5: Well, I'll thank you for the question, Raul. I'll answer it. But I think as the CEO of the company in India, I have to start with saying a big thank you. I think I'll start by saying thank you to my friend here, Ravi. I think Ravi and his four-man army, Kashika, Vivek, Sahil, Dr. Chris, I mean, they put their heart and soul into this for the last 13 years. I think, salute to you, Ravi.
4: And a clap thank for you. Them as well. They've been really amazing.
5: It's just amazing. I think a big thank you to our partners.

0: very passionate. People like, when you have people like Ravi in your team, it just spreads. And you can't avoid not to do it. And as I said, we are so result-oriented that when we see good results, it motivates us to do better and better and better. And so why give up a good thing which is doing so well? It motivates our people. We talked about in colleges and campuses. It helps us get talent. People look at us and say, this is a good company to work for. So all the good things associated with it, but in the end, something...
1: Good karma compounds.
0: Kind of.
1: Ayushman, you've really been growing in your role as the brand ambassador for Banega Swasth India. You've been doing so many things, you know, from acting, music. Where does this stand in your list of priorities? What brings you back year after year?
2: It's the sheer relentlessness of maybe Reckitt and NDTV and the level of involvement and passion. It's unparalleled, I think. Aaj Gandhi Jayanti hai, 2 October hai. And achhi jo sahi deshbhakti wahi hoti hai agar aap desh ke liye kuch karna chahe. Aap kya kar sakte hain? Aapki awaaz de sakte hain zyada se zyada as an opinion leader. Uske alawa, I think this is the biggest form of patriotism. I think it's a collective consciousness which comes together. And I think it's beautiful. Isse achhi nation building nahi ho sakti.
1: But outside of this campaign and outside of the stage, do you try and do as much as Sonu does? आप भी एफर्ट कर रहे हैं?
2: मैं एफर्ट करता हूँ. मैं यूनिसेफ एम्बेसडर हूँ इंडिया का. मैं काफ़ी फील्ड विजिट्स कर चुका हूँ. ग्रास रूट लेवल से कनेक्ट होता हूँ. सो आई गेस जो इनफैक्ट एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो मेरी सारी फिल्में ग्रास रूट लेवल पर बेस्ड होती हैं. सोशल मैसेजेस होते हैं मोस्टली. तो आई थिंक इट्स मी एज एन आर्टिस्ट. वी वॉन्ट टू क्रिएट अ सर्टन वैल्यू. एंड ये एक छोटा सा तरीका है करने का. और क्या
1: सुनो, आप जो लोगों की मदद करते हैं उससे एक अलग आपकी इमेज बनती है ओवर एंड बियॉन्ड जस्ट बीइंग अ स्टार एंड अ फेमस पर्सनैलिटी. Are you also trying to encourage others to come? Because A, आपकी देखा देखी कोई लग जाए काम में जुड़ जाए. दूसरा ये कि आपको लगे कि नहीं, वाकई में बॉलीवुड के या स्पोर्ट्स स्टार्स हों, फिल्म स्टार्स हों, ओटीटी स्टार्स हों, सबको लगना चाहिए कि फिर एक सोनू सूद नहीं 10-12 हो जाते. आप कैसे तय करते कि, क्योंकि इतने लोगों को मदद चाहिए, आप कैसे तय करते कि किसकी मदद कर सकते हैं किसकी नहीं और किसको छोड़ दे नहीं कर पाए?
3: इतने सालों में राहुल, एक मुझे लगता है ना, हमारे अंदर एक ऐसा एक्सरे मशीन लग जाता है कि जैसे हम लोग बात करने लगते हैं तो हमें पता होता है कि ये कितना जेन्युइन केस है. आज भी मेरे ऑफिस या घर के सामने 200-300 लोग पहुंचते ही हैं और मैं जब शाम को निकलता हूं तो उनसे जब मिलते हैं तो किसी की मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, किसी के एजुकेशन के प्रॉब्लम होते हैं. बट पिछले 6-7 सालों के अंदर एक नेटवर्क ऐसा बन गया है कि पूरे देश भर में छोटे छोटे जिलों के अंदर भी जहाँ पर किसी को पढ़ाई करनी हो, इलाज करवाना हो, बेड चाहिए, सो फ़ोन करते हैं, जुड़ जाते हैं. कोविड के दौरान करीबन 7.5 लाख लोगों से मैं कनेक्ट हुआ था जिनको घर भेजा था. आज वो 7.5 लाख लोग हैं, वो मेरे वॉलेंटियर्स की तरह हैं कि अगर हमें यूपी में गोंडा ज़िला में किसी को पहुँचाना है तो मैं गोंडा दबाऊंगा तो वहाँ पे 10 कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे. फिर उनको फ़ोन करते हैं, यार उसको ये पहुँचा दे. बिहार में किसी को भैंस पहुँचानी हो तो हम लोग ढूंढते हैं. तो फिर लड़का एक भैंस ढूंढने जाता है कि कौन सी अच्छी भैंस है जो अच्छा दूध देती है, और उसके साथ बछड़ा भी दिया जाता है ताकि उस जो बाढ़ में वो घर तबाह हो गया उसको एक रोज़ी रोटी मिल सके. तो बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल्स होती हैं. आज जब मैं सुबह यहाँ पर आ रहा था तो मैं जब सुबह उठा तो मुझे 5:30 बजे मेरा फ़ोन बजा. मैं उठने वाला था तो मैंने देखा कि एक किसी का कॉल आ रहा है. मैंने फ़ोन किया तो कहते सर मेरा भाई का जो बेटा है वो PGI लखनऊ के बाहर है, उसको एडमिशन नहीं मिल रही और बहुत सीरियस है, आप कीजिए. तो मैंने मैसेज डाला वहाँ पे डॉक्टर्स को. तो 6:15 बजे मुझे फ़ोन आ गया और बाय द टाइम आई वाज कमिंग फ्रॉम माय हाउस टू दिस प्लेस उसका एडमिशन हो गया था एंड फाइनली ही इज़ गेटिंग ट्रीटेड. सो मकसद ये है कि शायद ऊपर वाला चुन लेता है कि ये कुछ कर दीजिए और फिर हो जाएगा. एंड that makes your day very special. So I feel अपने आप हो जाता है, पता नहीं. बट आई एक बड़ा द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्नड इन ऑल दीज ईयर्स इज कि यू नो आप फेवर्स लेने में कतराए मत. यू नो मैंने अगर आपको एक फोन किया कि राहुल चलिए मिलके हम उसकी पढ़ाई करा देते हैं,
1: ऐसा मत मांगना बस. ऐसा नहीं है और कुछ हो तो बताइए.
3: या उसको चैनल में कहीं जॉब लगवा दे. अगर वो डिजर्व करता है, अगर वो डिजर्व करता है वो पहले है तो फिर यू नो
2: ऐसा मांगना किसी ये तो मुश्किल है.
3: सो आइडिया ये है कि आप भी जानते हैं कि आप मैं उनको बोलता हूँ कि भैया देखिए मैं इसको कभी जानता नहीं, मिला नहीं, लेकिन देख लीजिए अगर वो डिज़र्व करता है। और कई बार ऐसे हो जाता है कि यू नो अपने आप वो डॉट जुड़ जाते हैं और वो इंसान अपने लक्ष्य पे पहुँच जाता है। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू जॉइन दोज डॉट्स एवरी सिंगल डे एंड समवेयर गॉड इज डूइंग द ट्रिक एंड
4: पहुँच जाते हैं। आई थिंक इट्स आल्सो जो आप दिल से करते हैं, राइट, द एफर्ट एंड यू नो द विलिंगनेस इज वन थिंग, बट जो दिल से करते हैं कोई भी चीज़।
3: इस पे ना हमेशा एक बड़ी कमाल की चीज़ जो मैंने एक बार लिखी थी भी अपनी फिल्म के अंदर, कि कहते हैं कि जब आप मदद करना शुरू करते हैं तो बहुत दफ़ा अच्छा भी होता है और कई बार आप पे उल्टा भी आता है कि यार यू नो आप जिसको जितनी मदद चाहिए उतनी नहीं कर पाए, कम तो दें दे यार इतना इसने किया नहीं। तो एक बड़ी कमाल की लाइन थी कि मदद भी बड़ी कमाल की चीज़ होती है, करो तो लोग भूल जाते हैं, ना करो तो याद रखते हैं। सो आई थिंक उस
2: क्या बात है?
3: उस चक्कर में आपको रुकना नहीं है।
1: पर भूल क्यों जाएंगे ऐसे कैसे कि करो तो भूलेगा नहीं, आपको लगता होगा ऐसा, पर ऐसा खुद जिसको आपने मदद की उसको याद रहेगा। आयुष्मान की
3: याद रहता है, पर मकसद है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है, दुआएं देगा कि यार उसने मदद की थी, बड़ा अच्छा हुआ, कुछ हुआ, फिर उनकी जिंदगी एक शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप किसी की मदद नहीं करते हो हमेशा याद रखते हैं कि बॉस मैं गया था उससे और मेरी मदद नहीं हुई।
2: सो आई थिंक उसके लिए रुकना नहीं चाहिए कि वहां से क्या आएगा।
3: या
2: जस्ट बी सेल्फलेस।
4: Absolutely. Well, we have Chris still waiting, so we'll just go back and ye charcha hum jari rakhenge. Chris, you know, we've been talking about behavior change, or a major theme of this telethon has been everyday habit creation. Now, changing behavior is far harder than obviously distributing products or building infrastructure. As a CEO, how do you ensure Reckitt delivers both sustainable business growth as well as lasting social impact?
5: We exist to deliver better health in more hands every day. And that's not something that we write on a wall. It's a meaningful call to action, which shapes how we think about value creation as well as the role we play in the world. As CEO, I don't believe businesses should have to choose between growth and impact. The most resilient businesses actually create both. That's why our focus extends beyond products to prevention. A product can address a need in a moment. A behavior change can improve outcomes for a lifetime. And when healthier habits take root, the benefits compound across families, communities, and generations. The strongest brands are built not just on what they sell, but on the role they play in people's lives. And when communities see sustained investment in education, prevention, and well-being, trust deepens. And trust is one of the most valuable assets any company can create.
4: In fact, Rahul, what Chris said, you know, it's everything is about trust.
1: No, and also right? Good karma compounding, the amount of effort that it takes,
4: yeah.
1: Whether it's for a kid, whether it is for Sonu, the fact that you do this, and then, you know, you've got a whole vicious, you've got a whole very interesting virtuous cycle of good karma compounding. That really is critical. Gaurav, you know, share some first-hand experiences that you've picked up, your team's picked up from across the country, working with partners over the last decade plus now. And also the unsung heroes. It literally takes a whole village to get this going. This is not about this stage, this moment, and today. This is about work happening through the year and all the unsung heroes that are working around the country in ensuring that there is systematic behavioral change that happens on the ground.
0: No, very true. I think what we do is give expertise and knowledge, and what our partners do is give us scale and reach. But end of the day, the last person who goes to that village or that school is the person that matters. And obviously with our reach, we have thousands and thousands of these, and you hear stories every day or every week of what they are doing or trying to do. And I can tell you one or two that I remember. One of them is documented in the Niti Aayog's research on how people bring about change. There was this headmaster in Orissa. I think he took over the school in 2022. Unke school mein there was no. So he said ki uske bachche hi chale jaate the. 12 baje tha. All the kids would disappear because unka pani peene ke liye they had to walk safe water ke liye 10-12 kilometer jaane ke liye. So they would leave. So or स्कूल में टॉयलेट नहीं था तो द गर्ल्स वुड स्टे बैक वर ऑब्वियसली अंडर ह्यूज डिस्कम्फर्ट और इस जेंटलमैन ने ही डिडंट वेट फॉर द गवर्नमेंट और व्हाटएवर ही सेड ही गार्नर्ड रिसोर्सेज ने अपना ट्यूबवेल बनाया 16 पावर ट्यूबवेल उसको प्योरिफिकेशन वो लगवाया उसने 3 टॉयलेट खुद बनवाए हैंड वॉशिंग स्टेशन बनाए एंड इट्स बीन डॉक्यूमेंटेड कि एक साल में द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दैट स्कूल कम्प्लीटली चेंज्ड बिकॉज यू नो द difference between coming to school and doing well in school is basically a glass of clean water, a clean toilet to stay, and love and care. There was another story which I met this lady. She's uske char teen ya char miscarriage ho gaye the in the past 4-5 years, and she was again pregnant, and she told me the story herself. So and she made me meet her baby. So I told her what's the story, and she said aapka jo Dettol ka self care program mein, we call them gulabi didis, wo log who go to the villages, and she said jab main chauthi baar pregnant thi mujhe lag raha tha ki kuch same hone wala, because you know they don't have clinics close by, they don't do checkups, they're extremely anemic, or usse you have these problems. And at that time we had this program, and the gulabi didi came, and she said ki usne mujhe apni badi behan ban gayi meri, usne jo 6 mahine mere sath mera treatment mujhe sikhaya, nutrition mujhe sikhaya, iron rich foods, mera checkups karwaye, and she showed me the baby. That time the baby was 6 months. She had named her Asha, which is hope, and she was so proud and she was so happy for it. And sometimes, you know, sitting in our offices, when you don't meet these people, you don't feel it, and when you hear it, you feel, oh my God. And it's just amazing.
4: You know, it's also actually got a going on ground. You know, when I'm covering the stories, I'm seeing the impact. You can actually, like you're saying, you realize ki kitna kaam ho raha and how much work is still needed to be done. Humne shuru mein kaha tha Ayushman. In fact, Sonu, is saal hamara jo campaign ka focus hai, wo hai better health, giving better health in more hands every day. Of course, you are doing, you're making that effort. Aap knee surgery ke liye bhi aapka initiative and helping people. But how can we make it bigger? Because when we look at, you know, Viksit Bharat ka sapna, obviously, health is a very integral part. So giving better health to more hands every day, wo hum isko aise aur better kaise kar sakte hain?
3: No, I feel, first of all, you know, a platform like this is something that brings that awareness, that motivates people to come forward. And also, I would say, you know, Gaurav said, ki kis tarah aap ground level par jaakar un takleefon ko samajhte hain aur karte hain. Ek chota sa example, pichle mahine aisa hi hua tha. Andhra mein ek jagah hai, Anakapalli karke, ek bada chota sa district. Main wahan pe kuch samay pehle ek event ke liye gaya tha, karke aaya. Bada beautiful, lot of love you get from there. Aur phir wahan pe mujhe 8-10 din baad ek social media pe kisi ne tag kiya ki ek uske paas gaon hai jahan par pani ki samasya hai, aur usme maximum gaon ne isliye chhod diya kyunki wahan pani milta nahi, aur ladies jo hain badi dur dur kai kilometers tak jati hain. So jab Anakapalli mein agla event hone wala tha mera usi brand ke sath, to maine bola ki yaar meri fees nahi, wahan pe ek borewell wagera lagaiye aur wahan pe unko pani milna chahiye. So agle hi din wo log pahunche wahan par, और कुछ ही दिन में वहाँ पर लग भी गया, और जो गांव में बड़े परिवार छोड़कर चले गए थे वापस आने शुरू हुए, और मैं अभी उनको विज़िट भी कर कर आया. तो एक इतना कमाल का एक्सपीरियंस था कि किस तरह आप, यू नो, जो छोटे छोटे लोग उन गांव में उनके आसपास रहते हैं, आपको उनका हाथ थामने और बोलने की यार चलो ऐसा मिलकर करते हैं. फिर उनकी जो एक्सपर्टाइज होती है, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर काम करने की हो, या हम अपने लेवल पे अवेयरनेस की बात करें, या टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लेकर आती, तो वो सब जब चीज़ें जुड़ती हैं और ऑटोमेटिकली एक ऐसी दुनिया बनती है जो आई थिंक हम चाहते हैं कि देश भर के हर गाँव में रहे हो.
4: Actually, true. Ram, ne jo technology ki baat ki, Gaurav, I want to quickly ask you, we're running out of time, but how under, you know, banega Swachh India and of course Swasth India, hum technology ko kis tarah, you know, intervention ko use kar sakte taki hum aur logo ko give them more better health in more hands?
0: We've used technology from the beginning. Humne jab start kiya tha, jo school program tha, 5000 school tha, we had 2 rooms full of books that used to come. मैंने रवि से बोला था यार अगर इसे 1 million करेंगे तो स्टेडियम चाहिए होगा, वी कांट डू दैट. सो द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज डिजिटाइज इट, एंड वी ऑब्वियसली नाउ गो टू 1 million स्कूल ऑल डिजिटाइज, बिकॉज वी कुडंट हैव गॉन अदरवाइज. द स्केल दैट वी हैव गॉट इज लाइक टेक्नोलॉजी, बिकॉज एवरीबडी नाउ हैज अ फोन, यू कैन यूज इट, द वे मैसेजेस आर सीन बाय जनरल पब्लिक एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन, आई मीन, वी हैव लॉन्च्ड इन दिस फोरम the Hygia chatbots, the card that we have for loyalty card for hygiene, the game that we've launched, we're launching the AI powered teacher training module today. I think last year we launched those 2 tech accelerators. I think they were very interesting, the Bempu kit for newborn, which basically tracks your the hypothermia in babies, and we are testing it now in 1 district, and the initial results are extremely encouraging. There was the one that we had, the AI kit, where you put a bracelet on the high-risk pregnant mothers and it tracks, yes, and it gives signals back to. So that's technology. What we are trying to do now with the sanitation workers, I mean, that we have tried a lot of things, but when they go down, it's extremely unsafe, and because of the gases and the poisons. And we have no technology today to figure out where to go, when not to go. And we're working very hard to figure that out, and you'll see that next.
4: Absolutely,
0: year.
4: And we're going to be seeing it, you know, during our program today. The innovators, aapne jo bempu ki baat kahi, you know, jo sanitation.

0: स्टेशन वर्कर्स के जो इनोवेशन हो रहे हैं आज हम वो देखेंगे. एंड नाउ वी हैव अ मैसेज फ्रॉम मोहन यादव, द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश.
1: भारत ने एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन स्वस्थ भारत का सपना तभी साकार होगा जब स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी नीतियाँ हमारे रोजमर्रा के जीवन और हमारी आदतों का हिस्सा बने. स्वास्थ्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक, हर परिवार, हर स्कूल और हर समुदाय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है. बीमारी से बचाव, स्वस्थ जीवन शैली और रोजमर्रा के जीवन में किए गए सही चुनाव ही एक स्वस्थ भारत की मजबूत नींव होती है. मैं उन सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से भारत को और अधिक स्वस्थ बनाने में योगदान दे रहे हैं. NDTV के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि आइए स्वास्थ्य को एक सच्चा जन आंदोलन बनाए. हर भारतीय यह संकल्प ले कि मैं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दूंगा. आइए मिलकर स्वस्थ भारत और विकसित भारत का निर्माण में अपना अपना योगदान दे. जय हिंद, जय मध्य प्रदेश.
0: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट गेट रेडी फॉर समथिंग रियली एक्साइटिंग. स्ट्रेंथ, बैलेंस और इनक्रेडिबल मूव्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन. मलखम.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: सुन लो बैठ के उस इंसान की बात. Maybe that.
1: Yeah, absolutely.
2: It's okay to be vulnerable. Yeah. Like, it's okay to be sensitive and to cry and shed the tears. You know.
3: Specific लोगों के साथ हमेशा अपनी vulnerability sleep पर रखना भी जरूरी नहीं है. खास आपका एक zone होता है जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, share कर सकते हैं, जिनको trust कर सकते हैं.
2: Absolutely. हम सेहत की बात कर रहे हैं रवि, और खास तौर से पुरुषों के role की. आप एक नवजात बच्चे के जो पहले 1000 दिन होते हैं उसकी जिम्मेदारी एक माँ पर सौंप दी जाती है, लेकिन इसमें एक मेल मेंबर का, फादर का उतना ही बड़ा रोल होना चाहिए. डू यू सी दैट चेंजिंग और देयर इज लॉट टू डू ऑन ग्राउंड राउंड?
4: थैंक यू NDTV एंड थैंक यू सिकदा फॉर हैविंग मी हियर टुडे. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा. रोल पहले भी था, रोल आज भी है और रोल आगे भी रहेगा. बेसिकली क्या चेंज हुआ है कि इंफॉर्मेशन अभी ज़्यादा है. एक हमारा कैंपेन भी था डैड्स कैन डू, सो उसके अंदर हमने यही बात किया लार्जली कि एक ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं मुझे ऐसा समझ में आता जो कि मैन नहीं, जो पिता नहीं कर सकते. सो चाहे बच्चे को नैप दिलाना है या नैपी चेंज करना है या हैंड वॉश कराना है या डॉक्टर के पास लेके जाना है या उसके लिए फीड तैयार करना है, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं हो सकता. ये बात और है कि और ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की. और फर्स्ट 1000 डेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिसके अंदर बच्चे के जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं. और एक बॉन्ड बच्चा अपने टच से, अपनी स्माइल से, अपनी क्राई से अपने पेरेंट्स के साथ में एस्टेब्लिश करता है. तो बॉन्डिंग तो ऑलरेडी बच्चे का पेरेंट्स के साथ में है ही. अब ये बात बोलना कि मेन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है बट फैमिली एज ए कपल दोनों का रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है.
2: देवेंद्र जो बात कर रहे थे,
5: बिल्कुल सही कहा. इनफैक्ट
2: जो देवेंद्र बात कर रहे थे कि हमने बॉक्स किया हुआ है, एक मेल इस तरह से बिहेव करेगा और एक फीमेल इस तरह से बिहेव करेगी, और ये इसमें रिफ्लेक्ट करता जो बच्चों की देख रेख और उनकी देखभाल को लेकर है भी.
5: और उसी को आई थिंक तोड़ना बहुत जरूरी है. आई मीन ऑफ कोर्स फर्स्ट 1000 डेज इंपॉर्टेंट है, मदर इज डूइंग एनीवे आई थिंक द हार्ड वर्क. आई मीन लेट मी पुट इट दैट वे, इट्स नॉट इजी यू नो जो वो जाती है यू नो थ्रू हर प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर दैट. लेकिन फादर्स प्ले वेरी वेरी क्रिटिकल रोल. यू वांटेड टू ऐड समथिंग?
0: या आई मीन विमेन गो थ्रू अ लॉट एज वी ऑल नो, लाइक पोस्टपार्टम.
5: Yes.
0: And everything, it's not just like about mental. The kid. It's I mean, वहाँ पे शायद responsibility ज़्यादा बन जाती है. बच्चे का तो आप ध्यान रखें ही रखें, अपने partner का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. उनका mental health क्या है?
5: आता है देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा. Everybody is focusing on the kid.
3: Exactly.
5: And very often, माँ की well-being, माँ की सेहत हम बहुत often भूल जाते हैं. That's when lot of women, lot of mothers go into postpartum.
3: Yes.
5: Yeah. In fact, sorry, everyone.
4: Basically, the families are also now nuclear.
5: Yeah.
4: There's more of role of you know the partner. To take care of the postpartum depression, to take care of the mom, because हर कोई आता है, चाहे वो gift भी लेके आता है, blessings भी लेके आता है, वो stay करती हैं newborn तक. Mothers जो होता है वो पूरा ignore हो जाता है. तो it's very important basically कि mothers ignore नहीं हो, उसके जो partner है वो supportive role में रहे. And it should not be seen as a band-aid solution कि कुछ दिन के लिए, because the postpartum depression takes lot of time for overcoming.
3: Yeah.
4: And sometimes some years also in some women.
5: Absolutely.
3: ऐसा होता है कई बार कि जैसे अगर बच्चा बीमार पड़े, बच्ची की देख रेख हो रही है, मर्द बीमार पड़े घर का जो है उसकी देख रेख हो रही है, जब माँ बीमार पड़ती है वो फिर भी काम कर रही है. तो ये बहुत एक आयरोनिक सी चीज़ है, विडंबना भरी चीज़ है, ये होता है हमारे समाज में जिसको हमें आई थिंक कंट्रोल करना.
0: लाइक दे से इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड.
3: एब्सोल्युटली
0: राइट. आई मीन इट्स अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीवन कमिंग टुगेदर फॉर दैट न्यू लाइफ.
3: तो वही बोल रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में और रोल बढ़ जाता है मर्द का,
0: मर्द को टेक केयर ऑफ.
5: और ये बच्चों की बात नहीं, मैं यू नो अगर हम आगे बढ़े, ऑफ कोर्स 1000 डेज बच्चे हैं, 5 इयर्स, बट आई वांट टू आस्क यू देवेंद्र ऑन जेन जी. राइट, वी हैव सीन जेन जी हैज अ वॉइस, दे हैव एन इन्फ्लुएंस एंड दे आर नॉट अफ्रेड टू यूज इट. हम सबने देख लिया है. You know, as I mean, as actors, as somebody who's a voice, of course, we have Ayushman here with us, and we've spoken about that. How do we get more young people to actually use that influence towards a healthier India? Because हमने देख लिया, health is directly impacted, whether it's our economy, whether it's prosperity. Yeah. We know that. Gen Z की को हम किस तरह aware करें कि सेहत बहुत जरूरी है?
0: I think to begin with, हमको समझना होगा कि health सिर्फ एक physical aspect नहीं है. जैसे हमने mental health की भी बात करी. Health सिर्फ एक तरीके से दिखने के लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रोटीन खाने से आप हेल्दी नहीं हो जाते हैं. यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड आपका बॉडी टाइप क्या है टू बिगिन विद. आप उसमें क्या क्या चीज़ें खाते हैं, आपको कार्ब्स, फाइबर, इसेंशियल फैट्स, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें. दैट आई थिंक दैट कॉन्वर्सेशन नीड्स टू स्टार्ट एट आर डिनर टेबल्स कि आप क्या खा रहे हैं.

0: इंटरेस्टिंग फॉर पीपल यू नो फॉर द यंग किड्स यू नो कि तुमने क्या खाया, इससे तुम्हें क्या मिला, इसको तुम और बेटर कैसे कर सकते हो, डज इट सूट यू योर बॉडी, मे बी ऑल ऑफ दैट. या
1: वही मेरा अगला सवाल था एक्चुअली, आंसर उन्होंने कर ही दिया है कि सेहत जो है वो मेंटल सेहत भी बहुत जरूरी है, सिक्स पैक्स के
2: अलावा. एंड जो प्रोटीन का भौकाल है, आई कैन यूज दैट वर्ड, दैट्स अनदर वन.
0: इट्स सच एन ओडी राइट नाउ, एवरीवन इज जस्ट, भगवान के बाद प्रोटीन का ही नाम आता है मुझे लग रहा है.
3: फिटनेस और सेहत को अलग रखना होगा.
0: हाँ बिल्कुल,
3: फिटनेस और सेहत को अलग रखना चाहिए, यू नो,
0: लगना चाहिए. आई थिंक स्पोर्ट कैन बी अ वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट इन दिस. आई थिंक इट हैज टू बी अ कंपल्सरी, जैसे हम physics, chemistry, geography padhte hain, there has to be a sport included in our curriculum.
2: Which teaches so much, right? It's about character building, it's about discipline, absolutely.
1: Well, I think 100 gram gyan ke saath 100 gram protein. Hum aksar kehte hain ki sehat har insaan ka haq hai, lekin sawal ye hai ki us haq ko har ghar tak pahunchata kaun hai? Who are the people who are ensuring India's future all over the country, ensuring better health in more hands every day, overcoming huge odds?
2: आयुष्मान, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज सॉरी, क्योंकि कभी रास्ते आसान नहीं होते, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मुश्किल रास्ता रुकने की वजह नहीं, आगे बढ़ने की वजह बन जाता है. आइए देखते हैं मणिपुर की टामलोंग में से एक ऐसी आशा वर्कर की कहानी, मेदनलू नेमाय की कहानी.
4: Day for a 56-year-old Asha worker, Medilnyu Neumai, begins with household chores before she sets out to serve the women and children of a remote village, Atangkulli Nenluang, 28 kilometers from Tamil in Manipur's Taminglong district. Asha workers are a critical link between India's healthcare system and rural communities. They support immunization, educate families on healthcare and nutrition, maintain health records and promote sanitation. Madilnyu continues to cross difficult terrain to reach people in her village. With the focus on women and children, her motivation is straightforward, keeping children healthy.
5: Asha ka kam to bahut hai, kam to likha bhi bahut hai, phir bacha log ke bhi kam, बच्चा लोग कैसा बाल होगा, कैसा करेगा, कैसा बच्चा लोग से बीमार नहीं सहने के लिए रखेगा, ऐसे भी हम लोग से सब ये उसको बच्चा लोग को ऐसा हम आशा लोग तो काम करते हैं.
4: For Medilnyu, every journey through the hills, forests and rivers is a journey to take healthcare closer to her community. And she keeps on going, one household and one child at a time.
1: अभी जो आपने देखा, ये सिर्फ एक आशा वर्कर की कहानी नहीं है, ये हौसले की कहानी है, फर्ज की कहानी है और उस जज्बे की कहानी है जो एक दिन विकसित भारत का सपना पूरा करेगा.
2: एब्सोल्युटली आयुष्मान, इट्स द अनसंग हीरोज लाइक मेदनलू हु आर गिविंग बेटर हेल्थ इनटू मोर हैंड्स एवरी डे.
6: बिल्कुल, ये वो मुहिम है जो असरदार है और जिसका संदेश बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली है. अब चर्चा हमारे भविष्य की, भारत के भविष्य की, कैसे हम देश के स्वास्थ्य और सेहत को सुरक्षित करके अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं. जॉइनिंग अस डॉक्टर नरेंद्र सैनी, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA एंड मेंबर प्राइम मिनिस्टर्स ग्रुप ऑन इन्फेंट मोर्टैलिटी, नीरज जैन CEO सोशल अल्फा, डॉक्टर नीलम मोहन प्रेसिडेंट इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस, वुंटास मुद्गल रीजनल मार्केटिंग डायरेक्टर हेल्थ साउथ एशिया रैकेट, और हमारे साथ देवेंद्र और रवि तो बने ही हुए हैं मंच पर. डॉक्टर सैनी, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, इन्फेंट मोर्टैलिटी को लेकर तमाम चुनौतियां हमारे देश में बनी हुई हैं, अभी भी बहुत काम हुआ है, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाना इस वक्त सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है. कैसे एक नवजात के भविष्य को हम सुरक्षित रख सकते हैं अभी इन चुनौतियों को देखते हुए?
7: देखिए, चुनौतियां आपने बिल्कुल सही कहा, चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन हमने काफ़ी कुछ अचीव भी किया. कहाँ हम 120-125 हम इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट से आज की तारीख में 27 तक पहुँचे हैं, तो इस बात की तो उपलब्धि है, लेकिन चुनौतियाँ बहुत हैं. यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो नव शिशु है इज नॉट ओनली सर्वाइविंग, इट इज़ थ्राइविंग, कि बच्चा पनपे, स्वस्थ रहे और अपना जीवन कुछ स्वस्थ, कुछ सोसाइटी को भी दे पाए, इसको आज की तारीख में कहेंगे कि यस, अच्छा एक जीवन हमने दिया है. उसके लिए ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी. आज की तारीख में भी, अभी भी हमारे यहाँ पर रूरल और अर्बन में डिवाइड है। यदि मैं अर्बन की बात करूं तो 17% है और रूरल में 37 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो देर इज़ ए डिवाइड बिटवीन द टू, क्योंकि

0: क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के साथ जरूरी है कि माँ की ग्रोथ पूरी हो जाए उसके बाद बच्चा होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली होता है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी और ये जो एडोलेसेंट जो हमारी शादियाँ होती हैं वो बंद होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमारे को और काम करना होगा, क्योंकि काफ़ी काम हुआ है लेकिन और करना पड़े। तीसरा है इन्फेक्शन, वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इन्फेक्शन आज की तारीख में हमारे अराउंड 30% डिलीवरी जो होती है इन्फेक्शन के कारण हो जाती हैं, तो उसको भी रोकना होगा, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज़ है। आज सारे ये प्रिवेंटेबल है, दिस इज़ नॉट विच इज़ नॉट प्रिवेंटेबल, और इंडिया इज़ गुड इनफ, हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा सब कुछ हम कर सकते हैं, सिर्फ लोगों के बिहेवियर चेंज में और हाइजीन प्रैक्टिस को एक अमल में लाना।
1: बिल्कुल डॉक्टर सैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर डॉक्टर मोहन। वैक्सीन आर वन ऑफ द मोस्ट important tools for protecting children, and ma'am, what do you say to parents who are anti-vaxxers, who don't believe in it, who have still have doubts ki bachchon ko vaccines deni chahiye nahi deni chahiye, so what do you have to say about that?
2: Dekho, jo parents ko ye shak hota hai ya vaccine ke bare mein, to main unhe ek concerned parent hi manungi, at least wo chahte hain ki iska risk to nahi hai, lekin jab wo ye sawal poochte hain to do cheez samajhna zaruri hai, jiske liye hum vaccine de rahe hain us disease ke kya इम्पैक्ट है, यू नो, रिस्क से ज़्यादा उस डिज़ीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो डिज़ीज़ क्या मीज़ल्स है या मेनिनजाइटिस है या कैंसर को रिलेटेड हेपेटाइटिस बी है, सो ये अपनी या एचपीवी जो निकली हैं, तो इसको लेके आपको ये समझना चाहिए कि रिस्क वर्सेस की डिज़ीज़ का इम्पैक्ट क्या है। नंबर वन, कोई भी वैक्सीन जब आती है तो आई वुड से दे आर अमंग द हाईली स्टडीड मेडिसिन that you can think about लेते हैं, और वैक्सीन आने के बाद भी इनकी ongoing studies चलती रहती है, nationally ही नहीं internationally भी, कोई भी adverse event होता है तो वो पूरी तरीके से, कभी कभी एक social media आजकल इतना बढ़ चुका है कि एक छोटी सी story, एक personal fear को इतना बढ़ाया जाता है कि वो उससे impact हो जाता है। तो जो भी ये social media में stories देखते हैं उनको ये समझना भी चाहिए कि कोई चीज़ अगर वैक्सीन से साथ जुड़ी है या वैक्सीन के आसपास हुई है, सपोज़ किसी कोई गिर गया और उसे कुछ एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन से ही रिलेटेड है, एग्जांपल दिए, सो ये समझना ज़रूरी है, बिकॉज वैक्सीन्स एक आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं ताकि आप एक अच्छी तरीके से उस बच्चे की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और
1: हम जैसे मिलेनियल्स हैं, उस टाइम पे एचपीवी वैक्सीन्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल टीनेजर्स को दी जाती है, तो ये अभी ये क्या डिफरेंस क्या है, मेडिकल साइंस इवॉल्व हो रही है ऑफ कोर्स।
2: जी, वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। 600 मिलियन से ज़्यादा डोजेज एचपीवी की ग्लोबली दी गई हैं, 600 मिलियन, लेकिन अभी भी लोगों को फियर है कि ये वैक्सीन एचपीवी की जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री भी वैक्सीन दे रही हैं, कि उसका दिस इज़ वन ऑफ द ओनली प्रूवन वैक्सीन अगेंस्ट अ कैंसर, जैसे हेपेटाइटिस बी भी लिवर सिरोसिस से कैंसर कर सकता है, तो उसे हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसी तरीके से ये कैंसर लड़कों में भी, एनल कैंसर या वॉट जेनाइटल कैंसर, और लेडीज़ में कैंसर जो होता है सर्वाइकल, इसको प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि एक वायरस के कारण है ये, सो ये समझना ज़रूरी है कि उसकी मॉर्बिडिटी, उसका इम्पैक्ट, उसकी डेथ कितनी रिलेटेड है, रैदर देन वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट एक थोड़ा सा फीवर या पेन या स्वेलिंग इतना ही लिमिटेड होता है।
3: इनफैक्ट एब्सोल्युटली ट्रू आपने जो कहा, इनफैक्ट देवेंद्र, तो आप भी क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं अवेयरनेस पे, यू नो, ऑन वैक्सीनेशन, सर्विकल कैंसर, और आपने इन चीज़ों के लिए भी अपनी आवाज़ उठाई है। How important is it to lend your voice, like how Ayushman and Nike all do it, you know, on important issues like this? जैसे explain किया, right? Myths हैं, parents भी confused रहते, करे नहीं करे, कितना ज़रूरी है?
4: बहुत ज़रूरी है, I think ये, और जैसा मैम ने बताया, ये it's all science backed, you know, इसके ऊपर एक research है, ये, you know, मन से बनाई हुई बात नहीं है, और जितना हम लोगों को एजुकेट करें इसके बारे में, आई थिंक इट्स बेटर फॉर आर फ्यूचर, फॉर आर फ्यूचर जनरेशंस टू कम, और उसका हम जितना इम्पैक्ट कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, if we take that into account, I think it's very important to talk about these things.
3: Yeah, absolute. Sorry, Ayushman, you were
1: no, I'm not talking to Guntaz now, I think.
3: Yeah, no, I was just saying prevention ki agar hum baat karein, picking up from what Dr. Mohan said, Neeraj, you know, using social media to, you know, very often that's used, of course it should be used for the right thing, right? Neeraj, technology.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Very good, Esther. You were absolutely brilliant. How do you do the step?
1: Yeah.
0: Show us. That's so cute.
1: Wow. How lovely. And how cool is your dress here?
0: Yeah.
2: My dress is designed.
0: On the mic. Yeah.
2: And
0: your dress is
2: designed by my mom.
0: Your mom.
1: Oh. Wow.
0: Moms are the best. We were discussing that.
1: Yes.
0: In fact, India's cultural identity, diversity, currency is very strong. Mizoram, Esther, what a beautiful performance.
1: Yeah.
0: Divyendu.
1: हाँ जी.
0: हमारे इस शो में, इस डिस्कशन में, बूमर से लेकर जेन अल्फा तक आ जाए. तो आपको क्या लगता है? इनका क्या योगदान रहा है हमारे इनिशिएटिव पे?
1: यार आयुष्मान क्या ही बोलेंगे इनका परफॉर्मेंस इतना देख के लग रहा है हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इन लोगों से.
0: बिल्कुल.
1: इट्स अबाउट गिविंग देम अ वॉइस. Beat sport, beat art, culture, whatever it is. This is so nice, so heartening to see जब कोई आके ऐसे अपने आप को express करता है. I mean, पढ़ाई, education, yes, it's equally important. But things like these, they make you a wholesome individual.
0: हमने भी express किया अपने आप को, आगे भी करते रहेंगे. Thank you so much, Esther. Thank you, Divyendu.
1: Thank you.
0: बने रहिए हमारे साथ. Dettol बनेगा स्वस्थ इंडिया पर. See you after the break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: उसके बाद अपना खिला रहता है, सुई रहती, वो चुभने का डर रहता है। उससे क्या होता था, इन्फेक्शन होता था। इन्फेक्शन बोले तो कैसा, ताप आना, डेंगू, मलेरिया, इससे इन्फेक्शन की ये थोड़ी सी ये हो जाती सर दिक्कत। जैसे मैंने अपना हैप्पी क्यूस टॉयलेट कॉलेज को ज्वाइन करा, उससे मेरे को थोड़ी सी सेफ्टी का मालूम मेरी गिरी।
1: सुनील जी ने कहा थोड़ी सी सेफ्टी, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज चेंज, लाइक ही सेड पहले काम नहीं मिलता था, यू नो शिफ्ट होती थी, बट मोर इम्पॉर्टेंटली रिस्किंग द लाइफ, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द चैलेंजेस दे गो थ्रू, इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग वर्क, बट एवरी टाइम दे आर गेटिंग इन देयर क्लीनिंग द डर्ट वी स्प्रेड, यू नो दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स, एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर गोली, आई वुड लाइक टू आस्क यू प्रोफेसर गोली, व्हाई इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ और द हेल्थ बर्डन, यू नो वी नो अबाउट द स्टडी व्हिच रेकेट एंड आईआईपीएस हैव डन, टेल अस अबाउट दैट, बट 11.4 इयर्स इज नॉट अ स्मॉल नंबर, द गैप इज ह्यूज।
2: In terms of average years of life, 11.4 years is a huge gap. And to tell the importance of that gap, what it is has been in terms of the human capital loss is concerned, years of life lost as a human capital loss. You know, the health is the wealth of a nation, and it contributes hugely to the human capital. So if you put it in a monetary terms, this 11 years loss of life on an average is and in terms of human capital, it cost for a country almost 1% GDP. And if you see the what it will contribute by overcoming it, that's a return that you can add 1% GDP by modernizing their occupations. And of course, modernizing their occupation means you are saving their lives 11 years, so you are adding to the human capital. But not only that, there are also indirect contributions. For example, he said a lot of injuries, a lot of health expenditure, which is the catastrophic health expenditure of 10. So the health expenditure, what they spend is that 17% of their monthly consumption expenditure on health, which is huge compared to what others are spending, because they are part of. And what I'm saying is, like, you know, the in terms of overcoming this problem, to overcome this problem, the cost that Harpic World Toilet has putting is 10,000 per worker, but the returns are huge. It is 25 times higher than that. So the cost that we are putting is much less, the returns are much higher.
1: Well, thank you so much, Professor Guli, for explaining us that. So it's not just the economic cost, it's not just that 1%, but it's also what you're putting in, you're getting, like you said, 25 times more. Thank you for putting that. Rashi, hum baat kar rahe hain sanitation workers ki life expectancy. Well, they are the real heroes, you know. Let me put it that way. Agar hum life expectancy ki baat kar rahe hain, I want to ask you, you know, there's this whole thing of longevity today. We talk about lifespan. How important is a healthier lifespan or health span versus lifespan?
3: You know,
1: I mean, adding those healthier years in our life.
3: This actually brings me back to this beautiful dialogue in this film called Anand, which says life lambi nahi badi honi chahiye.
1: Yeah.
3: In terms of health, you know, there's no point in living if you're unhealthy. You'd rather have a healthy short life than an unhealthy long one. I also feel that we are very privileged in a way. We can take care of our health, we can take care of our surroundings. But for sanitation workers specifically, just statistics samne aa rahe hain, it's very difficult for them to have that around them. Is why I feel like individual responsibility increases even more. आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं. हम सबकॉन्शियसली कितना लिटर करते हैं बाहर, कहीं भी बस चीज़ें फेंक देते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को ग्रांटेड लेते हैं. आई थिंक दोज स्टेप्स आर वॉट विल रियली हेल्प नॉट जस्ट अस बट आर इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो द वर्कर्स हु आर वर्किंग टायरलेसली टू मेक श्योर दैट वी आर हेल्दी इनफ, यू नो. सो आई थिंक हम लोग तो कर लेते हैं अपना हेल्थ के लिए जो कर रहे हैं, बट आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स एज वेल.
1: I think being responsible
4: for others,
1: yes,
4: yeah. As an actor, मैं देखा है, as an artist, आप हर बार एक फिल्म का रेफरेंस देते हैं. आपने आनंद का रेफरेंस दिया, मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ अपनी फिल्म आर्टिकल 15 का, पिछले साल भी दिया था. गौतम हमारे साथ है, एंड हम सैनिटेशन वर्कर्स की अगर ख्याल नहीं रखते तो मुझे लगता है कि हम वी ओ अलॉट टू देम. एक सीन था आर्टिकल 15 में जहाँ पर एक सैनिटेशन वर्कर नाले में जाता है और उसके बाद पीछे वंदे मातरम चल रहा होता है. इट्स सो आयरोनिक, विडंबना से भरा हुआ. लेकिन एज हार्पिक स्टार्टेड द जर्नी, you know, with toilet hygiene, it has evolved over the years.
1: Yeah.
4: So evolution kaise aaya hai Gautam?
5: Aishman, Harpic ka evolution has been, like you said, from just being a product, then going to thinking about people, then creating these systems, and eventually going to health. So agar main isko elaborate karu, Harpic always

0: believe clean toilet is better health, right? Hygienic toilet is better health. But then we realized, jo toilet saaf kar rahe hain, sanitation workers, what about them? So we started thinking about people, and this is where the World Toilet, Harpic World Toilet College came up. So we've trained about 2.5 lakh sanitation workers since then, give them a life of dignity, upskill them, kaise use karna hai, kaise sahi tarike se karna hai. But once that happened, we realized just building toilets and this is not enough. So schools mein, for example, then we started creating these systems, system of eight, power of eight, where we said there are eight steps, there are eight things to be done, right from the right product to what are the different steps. Uske baad, I think we asked the bigger question, what about the health of the sanitation workers? Baaki sab ki to health achhi ho rahi hai.
1: Unka hai.
0: What about the sanitation workers? So this is where the research, IAPS research really opened our mind as well, that look, this is the reality. So where we've come in is right just from a product now to health, and goes back to the bigger one where we say better health in everybody's hand every single day.
2: So Ravi, taking cue from Gautam, he mentioned about Harpic World Toilet College. Reckitt is working closely with sanitation workers, and ये सैनिटेशन वर्कर्स के साथ काम करते करते आपने इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में कब सोचा?
3: वेरी इंटरेस्टिंगली यू नो वी हैव अ सिस्टम वेयर इन द वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज वी स्टार्टेड गिविंग सिक्स गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम वॉज अराउंड आयुष्मान भारत सो दैट द आयुष्मान भारत कार्ड इज गिवन टू एवरी वन. We started seeing the kind of the disease profile like hepatitis B, hepatitis C, we also see dengue, we also see tuberculosis and many other things, skin infections. And at that time, like fortunately, like I met one of the India's top leading professors, Professor Goli. And we thought like, you know, we really need to do a projection modeling. So what is the loss to the country and loss to economy and loss to the, you know, sanitation worker ecosystem? If the health of the sanitation workers is not taken care of.
2: Yeah.
3: And we thought like, there are a lot of questions like, jindagi choti hoti hai inki, death jaldi hoti hai. So, are there some numbers? We started looking into the numbers and, you know, as my boss Gaurav always challenges me on the numbers. So, inhone mujhse pucha, Ravi, kahan pe hai data? Kahin pe data hai? I thought like, this is a very important question and we need to really dig into that. I reached out to IAPS, which is world's top institute on fertility, migration and population sciences. They consented to agree and do this independent study for us. And they found out like, you know, there is a gap of 11.4 years. And the second is like, you know, they also said like, you know, there is a big loss on the GDP, which is almost at the tune of 1%. And big question came like, is it the life expectancy? We have been doing the show every year. Kabhi humne machines diya, kabhi humne training diya. To kya zindagi badli? Kya deaths kam ho gayi? So, these were all the important triggers, you know.
2: तो इसलिए मैं सुनील जी से पूछना चाहता हूँ. सुनील जी, देखो, हम यहाँ एसी के कमरे में बैठकर ये बातें कर सकते हैं, आपने वो जिंदगी जी है. आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस लाए जाने चाहिए आपकी जिंदगी में, एक सैनिटेशन वर्कर की जिंदगी में?
4: सबसे पहले जब मैं हैप्पी और टॉयलेट में कॉलेज में नहीं था, तब है ना सेफ्टी कुछ भी नहीं थी सर. जब मैं टॉयलेट ज्वाइन करा हैप्पी और टॉयलेट कॉलेज, तब मेरे को सब सेफ्टी मिली सर जी. आयुष्मान कार्ड हो अपना, वो दूसरा कार्ड रहे, उसमें क्या होता है, सेफ्टी मिल रही है सर मेरे को. सेफ्टी कौन सी? अपना हेलमेट, मास्क, चश्मा, ग्रीन बूट और यूनिफॉर्म मिलता था सर. जब से ये कॉलेज ज्वाइन करा ना, सब सीखने को मिला मेरे को.
2: और बदलाव आप चाहते हैं बताइए, सामने बैठे हैं रवि, इनको बता दीजिए.
1: रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू नो, फॉर्चुनेटली आप वर्ल्ड टॉयलेट हार्पिक टॉयलेट का एक हिस्सा हैं, आपको वो स्कीम्स मिली हैं, और जैसे गौतम जी ने भी कहा कि आपके जैसे कितने साथियों आर अ पार्ट ऑफ दिस, लेकिन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश भारत के सारे सैनिटेशन वर्कर्स के लिए. अगर उन सैनिटेशन वर्कर्स के लिए आप एक चेंज चाहेंगे जो आपकी ज़िंदगी में आया, वो क्या चेंज होना चाहिए?
4: मैं सबसे विनती करूंगा, जो मेरे शरीर के कैजुअल लोग हो आप वो टॉयलेट के लिए, उन्होंने सबसे यही करने का कि अपनी सेफ्टी करके पूरा काम करने का, इससे सबसे मेरी विनती सर जी.
1: तो सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज रिक्वेस्टिंग. यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट.
4: उससे उससे जो कहते हैं मैम सर जी, मेरे को ना थोड़ा मैं नया वो बोलने के लिए,
2: कोई बात नहीं, बोलिए ना,
4: दिक्कत है ना मेरे बोलने को. कैसा है सर, जब मैं वेट उठाता हूँ, वेट की वजह से मेरे को ना जो अपना हाथ जो रहता है कि उससे थोड़ा दर्द होता है सर. करके मैं कैसा भी अपना घर का चूल्हा

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

बनेगा स्वस्थ इंडिया। देश भर में आयोजित एक इनोवेशन चैलेंज के जरिए बनेगा स्वस्थ इंडिया ने कुछ ऐसे नए और असरदार समाधानों की पहचान की जो जोखिम कम कर सकते हैं, जिंदगियां बचा सकते हैं और हमारे शहरों को चलाने वाले लोगों के काम को ज़्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक भी बना सकते हैं। आज मिलिए ऐसे ही 5 इनोवेटर्स से जिन्होंने अपने यकीन को बदलाव में बदला और मुमकिन किया और उनके पास ये समाधान इस वक्त हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले इनोवेटर से। इनका सफ़र शुरू हुआ एक लैब से जहां वो DRDO के लिए गैस सेंसर्स पर काम कर रही थी। लेकिन जब भी किसी सीवर में सफाई कर्मचारी की मौत की खबर सामने आती, उन्हें लगता कि उनकी रिसर्च का मकसद सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रह सकता। वो लैब से निकलकर ज़मीन पर गई, सफाई कर्मचारियों से मिली, उनकी मुश्किलों को भी समझा और फिर तैयार किया सेफ 360, एक ऐसा सिस्टम जो किसी कर्मचारी के अंदर उतरने से पहले वहाँ की हवा और ख़तरनाक गैस की जांच करता है और काम के दौरान भी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्लीज़ वेलकम मोनिका जायसवाल। प्लीज़

मंदानी की टीम इमारतों, ऊर्जा और पानी के लिए स्मार्ट सेंसर्स बनाती है और अपने इस अनुभव को वह एक बात अच्छी तरह जानते हैं, हालात कभी भी बदल सकते हैं। इसी चुनौती को देखते हुए फाउंट लैब ने एक छोटा सा वायरलेस मैग्नेटिक मॉनिटर तैयार किया। इसे कर्मचारी के कपड़ों पर, सीढ़ी पर या सीधे मैनहोल पर लगाया जा सकता है और जब तक काम चलता रहता है ये लगातार अंदर की हवा पर नज़र रखता है और सबसे अहम बात, खतरे का अलर्ट कर्मचारी और सुपरवाइजर दोनों को एक साथ मिलता है ताकि समय का रहते कदम उठाया जा सके। प्लीज़ मंच पर आइए।

सावण मास ते एक सांझ लेके चौतरा के नीम पे को झूला बांध लेवे न दिखे मानस की जात मारे ओरे धोरे प्रेम की ही ओट मैं यो

0: I want to welcome my brother Vikit Sunny. Please come on the stage, brother.
1: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए। सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए। आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको देखे ये चेहरा हंसता हुआ। रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ देखो ना घूमते जा रहा हूँ। कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को सोचा भगवान मिलेंगे। जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है। जब बैठा वो छांव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला। इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं। जब पेट तो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं। पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है। कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा। मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: किसी बच्ची की शिक्षा के रास्ते में अवरोध नहीं बन सकते, उनकी मुश्किल नहीं बन सकते। सुषमा तमांग ने इस चुनौती को दूर करने की ठानी। स्वागत करें सिक्किम की द पीरियड स्टिग्मा डिस्ट्रॉयर सुषमा तमांग का। वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस।
1: अगेन सो इंक्लूसिव, द ड्रेस अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। Well, clean water, safe toilets, and a place to wash your hands should be basic to every child's school day. Please welcome the Wash Infrastructure Reviver, Om Prakash Mishra. A big round of applause.

एक बेहतर स्कूल एक बच्चे की रोज की कश्मकश को बहुत हद तक बदल सकता है। उत्तराखंड के विजय प्रसाद भट्ट ने अपने आसपास के लोगों को साथ लिया ताकि मिलकर वो क्लासरूम, हाथ धोने की सुविधाएं और अच्छे पोषण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर सकें। प्लीज वेलकम द स्कूल वेलबींग ट्रांसफॉर्मर विजय प्रसाद भट्ट जी को।

0: Thank you so much. Rupak Roy Chaudhary helped bring menstrual hygiene into everyday school life through better facilities, awareness and student participation. Ladies and gentlemen, please welcome making menstrual hygiene a habit, not a hush, Rupak Roy Chaudhary.
1: बदलाव नहीं किया बल्कि एक स्कूल को जमीन से बिल्कुल शुरुआत से शुरू की। राजस्थान की गीता कुमारी ने स्थानीय समुदाय को साथ लिया ताकि बच्चे खासकर लड़कियों को एक सुरक्षित विद्यालय मिले जिसमें पानी साफ सफाई और सम्मान भी साथ हो। अब स्वागत करते हैं द स्कूल फ्रॉम स्क्रैच विजनरी गीता कुमारी जी का।
2: Manipur, Changamayum Damayanti Devi turned everyday hygiene into student responsibility, inspiring children to wash hands, manage waste, and guide one another towards cleaner habits. Please welcome the student hygiene commander, Changamayum Damayanti Devi.

0: आदतों को बदलने के लिए या उसे सुधारने के लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी जरूरी होती है
1: जी।
0: तो अंडमान निकोबार आइलैंड के भी निलैया ने शतरंज के खेल से बच्चों को प्लास्टिक वेस्ट के असर के बारे में समझाया, फिर इस सीख और समझ को वो बीच की सफाई में ले गए और उनका इस्तेमाल किया। स्वागत करिए द चेकमेट प्लास्टिक चैंपियन बी निलैया जी का।
2: Sometimes the first step towards change is simply breaking the silence. In Jammu and Kashmir, Anjali Raina opened conversations around periods, improved access to sanitary pads, and helped girls manage menstruation with greater confidence and dignity. Please welcome on stage the period silence breaker, Anjali Raina.
3: Bhavini Dinesh Bhai Desai turned students into cleanliness ambassadors, making hand washing and responsible waste disposable everyday habits. Please welcome the cleanliness culture creator, Bhavini Dinesh Bhai Desai.
2: Congratulations. Well, moving on, in Nagaland, K. Zanbeni Lotha brought students, parents and the school together to make menstrual health, hygiene, education and practical support part of everyday school life. Please welcome the adolescent health guardian K. Zanbeni Lotha with a big round of applause.
4: You look lovely.
2: You look so lovely. All of them look lovely. Yeah.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: He is being lauded for his courage across the world, and now Prime Minister Narendra Modi has spoken with Braveheart Captain Smith Machar while he recovers at a hospital in Abu Dhabi. The Prime Minister commended the captain for his courage, patience and presence of mind that saved many lives. Here's that full conversation, which is almost 10 minutes long.
1: Smith, namaste.
2: Namaste, sir.
1: कैसे हो? अभी तबीयत कैसी है?
2: सर सब ठीक है, सर सब ठीक है।
1: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं।
2: यस सर।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने

0: शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया, और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफिसाई कर रहे, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17-7 से ज्यादा उड़ा रहा, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ, और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा, स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए, और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी, सऊदी में भी, यहाँ पे तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर, मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ने मेरे को बचाया। बस आपका एक कॉल आ गया, मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने लौट रहा हूँ सर।
0: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
1: सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा, कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी, सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्पष्टता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात।

कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया।

0: mal sagt er sein. Und der bohrt gerade viel, oder? Mein, aus dem Moment besser. Mein Arm hat nie live gelebt, leider, leider. Ich, dieser Moment, da mein Kollege ist, war okay, aber ich habe nichts nicht gemacht, weil ich mein Geld schuldig war. Mein Geld ist nicht gehauen, ich habe nichts schuldig war, nicht. Und in diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, dass ich nicht aufhören kann. Ich habe mir 17 Jahre alt gemacht. Ich habe mich 11 Jahre alt gemacht. Und ich habe mir gedacht, dass ich mich bann kann, was in der Charts ist. Als ich nicht gehauen war, dann habe ich mir gedacht, dass ich nicht aufhören kann. Und mir war bekannt, dass das ein letzter Push von Joshua Smith war. Die Tür war nur so. Und dann habe ich mich mal gefragt. Bis er öffnete, Sir, die anderen kamen. Und die anderen waren auch so viel. Ich hatte eine Rolle. Aber ich wusste, dass ich mich selbst mit meiner Wissenschaft beschäftigt habe. Aber zum selben Zeitpunkt wusste ich, dass ich mir alle nicht helfen konnte. Nur nach dem Abschluss haben die Leute hier in Saudi Arabien auch Punkte bekommen, dass sie sich besser und besser mit der medizinischen Attention nicht helfen konnten. Und ich bin nur eine Positivität, wenn ich mich immer wieder dran denke. Ich bin mir sicher, dass ich Hanuman Chalisa bin. Ich bin mir sicher, dass ich Hanuman Chalisa bin. Und ich bin mir sicher, dass ich Hanuman Chalisa bin. Was ich mir sicher bin, ist, dass ich mir sicher bin. Ich bin mir sicher, dass ich mir sicher bin. Ich bin mir sicher, dass ich mir sicher bin. Ich bin mir sicher, dass ich
1: mir sicher bin. Sorry, ich bin mir sicher. आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
0: सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी। कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था। इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्पष्टता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
0: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूं, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मैं साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूं कि जो मुझे बोला गया है। क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए।
1: सही बात है।
0: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है। और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
0: नहीं सर, मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं इसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा।

0: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए और आप बिल्कुल, पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए जय श्री कृष्ण, मेरा थोड़ी गुजराती में बात करी ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता? गुजराती बोले छे। તો બાળકો મળવાનું થઈ ગયું, બાળકો ને ડોક્ટરો એલાવ કર્યા મળવા માટે? મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ એ આવો તો જોઈ નહીં ડરી ગઈ. અચ્છા અચ્છા, એ થોડી એ મારાથી બહુ ક્લોઝ છે. હા, અને મારા નાના સન બે વર્ષ પર છે, એને નથી એલાવ કરતા. નહીં, હમણાં તો સાચવું જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે. યસ, હા યસ, કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં, બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે. ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાવ, પછી આપણે મળીએ છીએ. ગોડ બ્લેસ યુ. જય જય હિન્દ. સ્મિત નમસ્તે.
1: નમસ્તે સર,
0: કેસે હો? અભી તબિયત કેસી હૈ?
1: સર સબ ઠીક હૈ, સર સબ ઠીક હૈ.
0: દેખિયે, પૂરા દેશ આપકે લિયે પ્રાર્થના કર રહા હૈ. મહામૃત્યુંજય કા જાપ સબ દૂર ચલ રહે હૈ.
1: યસ સર,
0: આપકી હિંમત ને, આપકે ધૈર્ય ને और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं. और आपने अपने શરીર પે ઇતના બડા ઘાવ હુઆ, આપ સ્વયં જીવન ઓર મૃત્યુ કી લડાઈ લડ રહે થે, ઉસ સમય ભી આપને અપની જીવન કી પરવાહ નહીં કી, સભી યાત્રીઓ કે જીવન કી પરવાહ કી. ઓર સબસે બડી બાત, 140 કરોડ દેશવાસીઓ કા આપને માન બઢાયા, ઓર ઇસલિયે મેં હૃદય સે ગર્વ અનુભવ કરતા. कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बना है. स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा.
1: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है. मैं उस मोमेंट पे सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने घाव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एंजर में 17 साल से ज्यादा जुड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ, और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए, और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सबको बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी या तो पढ़ के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था, एंड मैं सर आई एम जस्ट मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो बहुत बहुत गर्व होता है आप भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने रो रहा हूँ सर।
0: स्मित अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है, और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी, सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ मेरा 2 साल का बेटा मुझे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात है,
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
0: आपको पता नहीं होगा लोग सावर कुंडला में भी वढ़वाण में भी सब दो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है, कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं, भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
1: नहीं सर मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी, मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
0: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे, और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए और आप बिल्कुल, पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए जय श्री कृष्ण, मेरा थोड़ा गुजराती में बात करे ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता? गुजराती बोले छे। તો બાળકો મળવાનું થઈ ગયું, બાળકોને ડોક્ટર એલાવ કર્યા મળવા માટે?
1: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ એ આ ઉપર તો જોઈ નહીં ડરી ગઈ.
0: અચ્છા અચ્છા,
1: એ થોડી એ મારાથી બહુ ક્લોઝ છે. હા અને મારા નાના સન બે વર્ષ પછી એને નથી એલાવ
0: કરતા. નહીં, હમણાં તો સાચવું જ જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે. કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં, બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે. ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાવ, પછી આપણે મળીએ છીએ. ગોડ બ્લેસ યુ.
2: Also, a new video of Captain Smith has emerged from inside the cockpit. This video shows the moments after Captain Smith Mochhar opened the cockpit door and called for help. Passengers rushed in to assist the injured, the Indian pilot, and provide whatever first aid was available. In this video, Captain Smith is being heard saying he has been hit multiple times, and passengers call for police and doctors after the attack.
3: זה מי שרצה לדקור אותו, מי שדקר אותו, לא שרצה.
4: יוהן? פוליסיה, פוליס קאמי.
5: Where is the police? Who is police?
6: No, no, just outside the police. They're outside. No police.
4: Tunnelinis.
7: Yes, I understand.
4: I'm meeting him with family.
7: That is terrorist. You understand, yes? We need police. We need only police here.
4: Show you, show you.
5: Okay.
7: He can't go outside.
4: No, he cannot go anywhere.
7: Yes.
4: He's here with us.
7: Yes.
4: Yeah.
5: Is it like this? 1 hour? 40 minutes? More? 5 minutes? It's okay.
8: Oh, my hand. Oh.
7: לא עם סכין, עם היד, נכון?
4: עם היד.
7: בוא נצלם את כל זה.
4: סעודי פרובלם.
7: סעודיה. כן,
6: אנחנו נצחק על זה.
2: Let's take you through the footage from inside that aircraft.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
2: Hello and welcome to watching Prime 5 with Prima Ishaan Sehgal. What's happening? How?
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
3: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
4: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
5: High rate, check the audio.
3: Let's do it. Let's start.
6: Breaking stories, we're jumping straight into it.
3: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
7: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
3: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
8: Welcome back. We know so much about Captain Smith, but the moment we were waiting for is this moment where the Prime Minister has spoken to the Braveheart captain and was captured on video. You can see his injuries there in the video, but you must listen into the conversation and hear from the man himself, Captain Smith.
9: Smith, namaste.
10: Namaste, sir.
9: कैसे हो अभी तबीयत कैसी है?
10: सर सब ठीक है सर सब ठीक है.
9: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं.
10: yes,
9: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने. yes, और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं. और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की. और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता. कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया. स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा.
10: सर मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं. मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है. मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे. एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से जा जुड़ा रहा, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है. जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मिथ,

0: बोलता मैं जान के मैं सर को बोला था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं हम सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर आई एम जस्ट मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था। अब मुझे पता है कि वो भगवान ने मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है। आप अभी मेरे को हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था। अब हो गया सर, सॉरी मैं आपके सामने लौट रहा हूँ सर।
1: सुमित अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
0: सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
0: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मैं साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात है।
0: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा लोग सावरकुंडला में भी वढ़वान में भी सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूँ, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
0: नहीं सर, मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मित आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए और आप बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है।

0: अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने घाव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे। एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से ज्यादा दौड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ, और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था। बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए, और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं सर को बोला था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो पढ़ के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर आई एम जस्ट मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, और मुझे पता है कि वो भगवान की मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं तो बहुत बहुत गर्व होता है, और अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था। अब हो गया सर, सॉरी मैं आपके सामने रो रहा हूँ सर।
1: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
0: सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना न। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
0: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए।
1: सही बात है,
0: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावर कुमला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं, भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूँ, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है अपने।
0: नहीं सर, मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: I was fighting for my life. That's what Fly the White Captain Smith Matar told Prime Minister Modi today as he recalled the terrifying moments after his co-pilot attacked him, saying he could feel the aircraft going down and pushed himself to open the cockpit door. We'll hear more about that. First, let's go across to NDTV's Shiva Roor for more.
1: And joining me live now from Abu Dhabi is Bhupendra Bhai Matar. He is the father of hero pilot Smith Matar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain, Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai? उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी, भूपेंद्र भाई?
2: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए. तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
1: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे, भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
2: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज भी अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे.
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस हैं? इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है, भूपेंद्र भाई?
2: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
1: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
2: जैसे जैसे हर माँ बाप का होवे, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
1: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
2: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले.
1: जी, और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा. डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा. तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया. और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था. तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
1: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना? उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
2: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
1: जी,
2: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता है मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
1: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे? फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
2: वो तो वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
1: और
2: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
1: क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
2: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है वो।
1: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी। क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
2: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम लोग तो एक आप बोलेंगे साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी

0: का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मिथ को, वो बिल्कुल सही है। पूरा नेशन, एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
1: सही है, सही है। वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियोस, और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका के इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और ये सब सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे को विश्वास है कि वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
0: भूपेंद्र भाई, स्मिथ की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी? सर
1: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही, और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होगा।
0: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट।
1: हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे और स्मिथ की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे, और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते, हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी, और डर ना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस, कैसे भी करके
0: जी
1: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
0: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इसराइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज़ किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इसराइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
1: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है, और जीवन जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया ऐसा प्रूव हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
0: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया है, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
1: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
0: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही काम करेंगे आगे जाकर? भूपेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, आपके वरीज भी हैं, आप कंसर्न भी हैं, क्या आपको लगता है उनको वापस आना चाहिए भारत?
1: वो काम शायद जहां कर रहा है वहीं करेगा।
0: इसको लेकर जो इम्पैक्ट होगा एविएशन पर, भूपेंद्र जी थोड़ा डिटेल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कॉकपिट में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेकर, टेरर लेकर, एविएशन को लेकर असर पड़ेगा?
1: अभी वो अपनी कंपनी का सब लोग अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ऐसा चीज बहुत सालों में एक बार होता है और वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके लिए जो भी चौकसाई करनी होगी वो कंपनी वाले करेंगे जरूर।
0: एक बात बताइए भूपेंद्र जी, सारा दुनिया आपके बेटे को जानता है, अब उनका नाम पूरा रोशन हो गया है, लेकिन जो ओमानी को पायलट था जो स्मिथ के साथ ऑपरेट कर रहा था इस फ्लाइट में, उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट है ये, इसके बारे में आपका क्या सोच है?
1: नहीं, मैं मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
0: किसी ने क्या आपको ब्रीफ किया है कि क्या हुआ था उस कॉकपिट में? किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको क्या ब्रीफ किया है?
1: नहीं, मैं ब्रीफ करूंगा मेरे बेटे के साथ ही, जो भी समझना है पूरा उनके साथ ही।
0: जो ग्लोबल मीडिया में आपके बेटे के बहादुरी को लेकर जो मीडिया स्टोरीज चल रहे हैं उसको लेकर आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र जी? क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू के पहले, स्मिथ मच्छर जो है एक इंडियन पायलट नहीं है, अब एक वो ग्लोबल एक बहादुरी के एक आइकॉन है ऑलमोस्ट, क्या ये सही है? ही इज अ ग्लोबल सिटीजन नाउ सर।
1: ऊपर वाले की मेहरबानी है।
0: क्या आप सिटीजन्स को कुछ बोलना चाहेंगे एज द फादर ऑफ स्मिथ मच्छर, द मोस्ट फेमस इंडियन पायलट ऑफ आर जेनरेशन? सर उन्होंने जो किया है इंडिया को प्राउड किया है, क्या सिटीजन्स को कुछ बताएंगे? अब बहुत सारे यंग जेनजी भी देख रहे हैं अभी, स्मिथ जो है 38 साल के हैं, कुछ मैसेज है आपका?
1: मैं खाली एक स्मिथ का एक आपको नेचर और हमारा फैमिली का जो चलने का रास्ता है वो मैं खाली अपने जेंजी को खाली बोल सकता हूँ कि जो

0: रिस्पेक्ट आज स्मिथ फादर मदर को दे रहा है और जिस तरीके से अपने फैमिली के साथ वो अच्छा लाइफ जी रहा है, तो जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उतना ऊपर वाला हेल्प करेगा जब भी तकलीफ आएगी। तो मैं यंगस्टर्स को जो अपग्रोन है अभी, जो नया लाइन में जाना चाहते हैं या अभी उनके हाथ में कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, तो एक ही बात बोलूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी है ना, वो हमेशा जीतती है और उसी को पकड़ के चलना, वही अपने लिए सक्सेसफुल रहेगा, तो आगे अपना इंडिया में सब जन अच्छी तरह से रह पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और
0: धन्यवाद। अभी
1: भूपेन जी, आखिरी सवाल, एक जो मोस्ट वायरल कमेंट है इस इंटरेक्शन में प्रधानमंत्री के साथ, वो था हनुमान चालीसा को लेकर। क्या स्मिथ बहुत रिलीजियस माइंडेड है, बहुत विश्वास रखते हैं हनुमान जी में, आपके परिवार में, इसके बारे में बताइए सर।
0: खाली एक ही लाइन में बोलूंगा कि हम लोग के घर में एक सिस्टम है कि एक सोते टाइम हम लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और लाइट ऑफ करते हैं, और सुबह स्मिथ ने एक अपने छोटे बच्चे को रोज सुबह मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा बोलने का काफी दिनों से चालू किया है। तो हमको खुशी है हम लोग के घर में इस तरीके का स्वभाव है सबका। ठीक है जी,
1: भूपेंद्र जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We are so proud of Smith Machar. Thank you very much. We wish you the very best. We wish him a speedy recovery. And I know you are looking forward to meeting him again after he has just spoken to the Prime Minister. Thank you very much. Bhupendra Machar, father of the hero Indian pilot Smith, speaking first and exclusive here on NDTV. It's back to the studio now.
2: Thanks for that, Shiv. And Bhupendra G, they're speaking to NDTV about his brave son. His son, Smith Machar, earlier today spoke to Prime Minister Modi. Let's bring you those details. All right, we're now joined by Smith Machar's uncle, Kishore. Kishoreji on the phone line with us. Thank you so much for speaking to NDTV. Kishoreji, I'd like to ask you your first reaction when you heard the news. Aap kahan the? Aapko kab ye khabar aayi jo hua ye Fly Dubai flight pe?
3: मैं घर में ही था
2: जी,
3: और मेरी बेटी ने मुझे बोला कि आपने टीवी देखा, ऐसा स्मिथ फ्लाइट पे गया और उसके ऊपर अटैक हुआ है, और हम लोग बहुत ही शॉक में थे। फिर ये सिलसिला चला, हम टीवी देखते रहे। फिर मैं मेरे भाई साहब से बात की, ऐसी ऐसी बात हुई है, फिर पता चला हमें न्यूज के माध्यम से कि भाई उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। वो सब हम जैसे आम जनता को पता चलता है वैसे ही हम लोग बैठे थे टीवी पे देख के देख रहे थे।
2: और आपने अपने भाई को फोन किया पता करने के लिए कि उनको क्या खबर आ रही है, क्या हुआ है?
3: हम भाई के पास ही, मेरे दो बिल्डिंग करीब ही रहते हैं वो
2: जी।
3: मैं उनके पास गया, पहुंचा और उनको संभाला मैंने, हम लोग दोनों। ही वॉज ऑल्सो वेरी शॉक्ड, ही वॉज नॉट अवेयर। जब भी मैं उनके पास गया, उनके पास भी कोई नॉलेज नहीं था ये। फिर हमने देखा टीवी पे ये सब, फिर हमने कॉन्टेक्ट किया उनकी वाइफ का, तो उन्होंने बोला कि भाई इस तरह से ऐसा ऐसा हुआ है। वो भी सी वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग।
2: ओके,
3: फिर रात भर वही चले रहा, हम लोग तैयारी करने लगे कि हम दुबई चलेंगे। फिर भाई साहब और उनकी वाइफ दोनों दुबई के लिए हम लोग ने सब।
2: और अब इस समय आपका क्या कहना है, जिस तरह से पूरी दुनिया भर में प्रेज आ रहा है स्मिथ मच्छर के लिए, जिस तरह उनकी जो बहादुरी जो उन्होंने दिखाई, लोगों की जान बचाई फ्लाइट पर, अब आपको क्या कहना है अपने नेव्यू के बारे में?
3: बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, और एक तो संतुष्टि है, हमारे PM साहब ने उनसे बात की, उनकी देखभाल के लिए वहाँ व्यवस्था हो गई, और अभी हॉस्पिटल में कल हमारे भाई साहब उनको मिल के आए और उनकी हालत अच्छी है, समझ के हम लोग बहुत रिलीव्ड हो गए। हमको अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वी आर फीलिंग वेरी प्राउड, और ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारी फैमिली पे कि वो हमारा बच्चा एकदम ठीक है।
2: All right, thank you so much for speaking to NDTV. Kishore Machar there, who is the uncle of Smith Machar. And just a short while ago, Shiv Arur spoke with Smith Machar's father, Bhupendra ji. Just listen in to what he had to say.
1: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है, आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
0: जैसा आपने देखा वीडियो में वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था, थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है, तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम उनके वे ही है। और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
1: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
0: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था, तो मैंने सोचा कि आज मीट अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे, आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ। तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे।
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस हैं, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
0: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी, तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।

0: में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे ही करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
1: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
0: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाजा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
0: भूपेंद्र भाई, क्या स्मित हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
1: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
0: जी,
1: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता है मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
0: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
1: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा। और क्या? मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
0: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
1: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी हो।
0: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी, क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
1: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम लोग तो एक आप बोलेंगे तो साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी हैं, और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है। हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था कि प्राउड मोमेंट भले है लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
0: जी बिल्कुल, और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मित को, वो बिल्कुल सही है, पूरा नेशन एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
1: सही है,
0: सही है,
1: वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियो, और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका के इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और ये सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे को विश्वास है कि वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
0: भूपेंद्र भाई, स्मित की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी सर?
1: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही, और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होएगा।
0: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट था।
1: हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे और स्मित की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे, और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते, हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी, और डर ना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस, तो कैसे भी करके
0: जी

0: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
1: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इसराइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज़ किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इसराइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
0: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है और जीवन जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया ऐसा प्रूव हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
1: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया है, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
0: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
1: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही काम करेंगे आगे जाकर? भूपेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, आपके वरीज भी हैं, आप कंसर्न भी हैं, क्या आपको लगता है उनको वापस आना चाहिए भारत?
0: वो काम शायद जहां कर रहा है वहीं करेगा।
1: इसको लेकर जो इम्पैक्ट होगा एविएशन पर, भूपेंद्र जी थोड़ा डिटेल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कॉकपिट में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेकर, टेरर लेकर, एविएशन को लेकर असर पड़ेगा?
0: अभी वो अपनी कंपनी का सब लोग अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ऐसा चीज बहुत सालों में एक बार होता है और वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके लिए जो भी चौकसाई करनी होगी वो कंपनी वाले करेंगे जरूर।
1: एक बात बताइए भूपेंद्र जी, सारा दुनिया आपका आपके बेटे को जानता है, अब उनका नाम पूरा रोशन हो गया है, लेकिन जो ओमानी कोपायलट था जो स्मिथ के साथ ऑपरेट कर रहा था इस फ्लाइट में, उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट है ये, इसके बारे में आपका क्या सोच है?
0: नहीं, मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
1: किसी ने क्या आपको ब्रीफ किया है कि क्या हुआ था उस कॉकपिट में? किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको क्या ब्रीफ किया है?
0: नहीं, मैं ब्रीफ करूंगा मेरे बेटे के साथ ही, जो भी समझना है पूरा उनके साथ ही।
1: जो ग्लोबल मीडिया में आपके बेटे के बहादुरी को लेकर जो मीडिया स्टोरीज चल रहे हैं उसको लेकर आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र जी? क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू के पहले, स्मिथ मच्छर जो है एक इंडियन पायलट नहीं है, अब एक वो ग्लोबल एक बहादुरी के एक आइकॉन है ऑलमोस्ट, क्या ये सही है? ही इज अ ग्लोबल सिटीजन नाउ सर।
0: ऊपर वाले की मेहरबानी है।
1: क्या आप सिटीजन्स को कुछ बोलना चाहेंगे एज द फादर ऑफ स्मिथ मच्छर, द मोस्ट फेमस इंडियन पायलट ऑफ आर जेनरेशन सर? उन्होंने जो किया है इंडिया को प्राउड किया है, क्या सिटीजन्स को कुछ बताएंगे? अब बहुत सारे यंग जेंजी भी देख रहे हैं अभी, स्मिथ जो है 38 साल के हैं, कुछ मैसेज है आपका?
0: मैं खाली एक स्मिथ का एक आपको नेचर और हमारा फैमिली का जो चलने का रास्ता है वो मैं खाली अपने जेंजी को खाली बोल सकता हूँ कि जो रिस्पेक्ट आज स्मिथ फादर मदर को दे रहा है और जिस तरीके से अपने फैमिली के साथ वो अच्छा लाइफ जी रहा है, तो जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे उतना ऊपर वाला हेल्प करेगा जब भी तकलीफ आएगी। तो मैं यंगस्टर्स को जो अपग्रोन है अभी, जो नया लाइन में जाना चाहते हैं या अभी उनके हाथ में कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, तो एक ही बात बोलूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी है ना, वो हमेशा जीतती है और उसी को पकड़ के चलना वही अपने लिए सक्सेसफुल रहेगा, तो आगे अपना इंडिया में सब जन अच्छी तरह से रह पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और
0: धन्यवाद। अभी
1: भूपेंद्र जी, आखिरी सवाल, एक जो मोस्ट वायरल कमेंट है इस इंटरेक्शन में प्रधानमंत्री के साथ वो था हनुमान चालीसा को लेकर, क्या स्मिथ बहुत रिलीजियस माइंडेड है, बहुत विश्वास रखते हैं हनुमान जी में आपके परिवार में, इसके बारे में बताइए सर।
0: खाली एक ही लाइन में बोलूंगा कि हम लोग के घर में एक सिस्टम है कि एक सोते टाइम हम लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और लाइट ऑफ करते हैं, और सुबह स्मिथ ने एक अपने छोटे बच्चे को रोज सुबह मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा बोलने का काफी दिनों से चालू किया है, तो हमको खुशी है हम लोग के घर में इस तरीके का स्वभाव है सबका। ठीक है जी।
1: भूपेंद्र जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो प्राउड ऑफ स्मिथ मच्छर। थैंक यू वेरी मच। वी विश यू द वेरी बेस्ट। वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड आई नो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम अगेन आफ्टर ही हैज जस्ट स्पोकन टू द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र मच्छर, फादर ऑफ द हीरो इंडियन पायलट स्मिथ, स्पीकिंग फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव हियर ऑन एनडीटीवी।
2: All right, with that, we'll slip into a short break. Coming up on the other side, we'll also be bringing you the conversation that Smith Machar had with the Prime Minister today. Remember, he spoke to him from the hospital bed there in the UAE, where he recounted those terrifying moments, but how he pushed himself, because he said, I knew 170 people could die if he did not push himself. He also spoke about chanting the Hanuman Chalisa as he lay there on the cockpit floor. More on that coming up, first a short break.

0: Now, Prime Minister Narendra Modi spoke today to Captain Smith Machar, who is recovering in the UAE. Before that conversation, NDTV also exclusively spoke to Smith Machar's father, Bhupendra Ji, who spoke about his son, who also shared with us those frightening moments when they realized that he had come under attack. But he spoke about his resilience, about his faith and his determination as well. Listen in to this conversation with Shivarur.
1: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai? Unki tabiyat kaisi hai? Unki abhi jo video samne aaya hai Prime Minister ke saath baatcheet karte hue saaf nazar dikhai deta hai ki wo theek hai. Aap ek update dijiye ki wo kaise hain, aapka beta kaisa hai abhi Bhupendra Bhai?
2: Jaisa aapne dekha video mein, wahi cheez maine bhi dekhi aaj, kyunki main aaj unko kal main mila tha 10 minute ke liye, tabhi wo thoda पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
1: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
2: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मिथ अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे.
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस है? इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
2: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
1: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
2: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब भी उस नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
1: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
2: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले.
1: जी, और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा. डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा. तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया. और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
1: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना? उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
2: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी, ऐसा समझ लो
1: जी।
2: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता है मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
1: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे? फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
2: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा। और मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
1: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
2: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है।
1: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी। क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
2: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है। हम लोग तो एक आप बोलेंगे साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी हैं, और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है। मेरे हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था कि प्राउड मोमेंट भले है, लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
1: जी बिल्कुल। और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मिथ को, वो बिल्कुल सही है। पूरा नेशन, एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
2: सही है, सही है, वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियो, और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका के इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और ये सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे को विश्वास है कि वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी? सर
2: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही, और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होगा।
1: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट।
2: हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे और स्मिथ की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे, और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते हैं, हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी, और डर ना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस। ऐसे भी करके
1: जी
2: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
1: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इजराइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
2: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है, और जीवन जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया ऐसा प्रूव हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
1: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
2: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
1: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही काम करेंगे आगे जाकर? भूपेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, आपके वरीज भी हैं, आप कंसर्न भी हैं, क्या आपको लगता है उनको वापस आना चाहिए भारत?
2: वो काम शायद जहां कर रहा है वहीं करेगा।
1: इसको लेकर जो जो इम्पैक्ट होगा एविएशन पर, भूपेंद्र जी थोड़ा डिटेल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कॉकपिट में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेकर, टेरर लेकर, एविएशन को लेकर असर पड़ेगा? अब
2: अभी वो अपनी कंपनी का सब लोग अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ऐसा चीज बहुत सालों में एक बार होता है और वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके लिए जो भी चौकसाई करनी होगी वो कंपनी वाले करेंगे जरूर।
1: एक बात बताइए भूपेंद्र जी, सारा दुनिया आपका आपके बेटे को जानता है, अब उनका नाम पूरा रोशन हो गया है, लेकिन जो ओमानी कोपायलट था जो स्मिथ के साथ ऑपरेट कर रहा था इस फ्लाइट में, उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट है ये, इसके बारे में आपका क्या सोच है?
2: मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
1: किसी ने क्या आपको ब्रीफ किया है कि क्या हुआ था उस कॉकपिट में? किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको क्या ब्रीफ किया है?
2: नहीं, मैं ब्रीफ करूंगा मेरे बेटे के साथ ही, जो भी समझना है पूरा उनके साथ ही समझूंगा।
1: जो ग्लोबल मीडिया में आपके बेटे के बहादुरी को लेकर जो मीडिया स्टोरीज चल रहे हैं उसको लेकर आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र जी? क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू के पहले, स्मिथ मच्छर जो है एक इंडियन पायलट नहीं है, अब एक वो ग्लोबल एक बहादुरी के एक आइकॉन है ऑलमोस्ट, क्या ये सही है? ही इज अ ग्लोबल सिटीजन नाउ सर।
2: ऊपर वाले की मेहरबानी है।
1: क्या आप सिटीजन्स को कुछ बोलना चाहेंगे एज द फादर ऑफ स्मिथ मच्छर, द मोस्ट फेमस इंडियन पायलट ऑफ आर जेनरेशन सर, उन्होंने जो किया है इंडिया को प्राउड किया है, क्या सिटीजन्स को कुछ बताएंगे? अब बहुत सारे यंग जेंजी भी देख रहे हैं अभी, स्मिथ जो है 38 साल के थे के हैं, कुछ मैसेज है आपका?
2: मैं खाली एक स्मिथ का एक आपको नेचर और हमारा फैमिली का जो चलने का रास्ता है वो मैं खाली अपने जेंजी को खाली बोल सकता हूँ कि जो रिस्पेक्ट आज स्मिथ फादर मदर को दे रहा है और जिस तरीके से अपने फैमिली के साथ वो अच्छा लाइफ जी रहा है, तो जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे उतना ऊपर वाला हेल्प करेगा जब भी तकलीफ आएगी। तो मैं यंगस्टर्स को जो अपग्रोन है अभी, जो नया लाइन में जाना चाहते हैं या अभी उनके हाथ में कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, तो एक ही बात बोलूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी है ना वो हमेशा जीतती है, और उसी को पकड़ के चलना वही अपने लिए सक्सेसफुल रहेगा, तो आगे अपना इंडिया में सब जन अच्छी तरह से रह पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और भूपे
2: धन्यवाद। अभी
1: भूपे जी आखिरी सवाल, एक जो मोस्ट वायरल कमेंट है इस इंटरेक्शन में प्रधानमंत्री के साथ वो था हनुमान चालीसा को लेकर, क्या स्मिथ बहुत रिलीजियस माइंडेड है, बहुत विश्वास रखते हैं हनुमान जी में, आपके परिवार में, इसके बारे में बताइए सर।
2: खाली एक ही लाइन में बोलूंगा कि हम लोग के घर में एक सिस्टम है कि एक सोते टाइम हम लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और लाइट ऑफ करते हैं, और सुबह स्मिथ ने एक अपने छोटे बच्चे को रोज सुबह मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा बोलने का काफी दिनों से चालू किया है, तो हमको खुशी है हम लोग के घर में इस तरीके का स्वभाव है सबका। ठीक है जी
1: भूपेंद्र जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We are so proud of Smith Machar. Thank you very much. We wish you the very best. We wish him a speedy recovery. And I know you are looking forward to meeting him again after he has just spoken to the Prime Minister. Thank you very much. Bhupendra Machar, father of the hero Indian pilot Smith, speaking first in exclusive here on NDTV.
0: Captain Smith Mutcher's father there speaking to NDTV. Now, even as praise is pouring in for Smith Mutcher, so are requests and demands that he be honored for his bravery. Now, the latest to come in is from the Federation of Indian Pilots, who have written to the Prime Minister's office seeking a bravery award for Smit Machar, saying that he showed tremendous presence of mind during that time when the plane, when he came under attack. It's seeking a national recognition over his handling of the September 30th in-flight emergency, asking for him to be considered for a national bravery award after due verification. But let's go across to NDTV's Tanushka for more on this story. And Tanushka, even as, you know, praise is pouring in for Smit Machar, now the Indian Pilots Federation, they're asking the Prime Minister's office that he must be given a bravery award.
3: Precisely, Gargi, a lot of requests have come in to confer Captain Smit Machar with the Ashok Chakra, and we have the Federation of Indian Pilots also writing to the Prime Minister's office seeking this National Bravery Award for Captain Smit. The Federation also says that this sort of national recognition should be conferred to Captain Smit regarding his handling of this in-flight emergency, and says that since he's been seriously injured after being attacked by the first officer with a crash axe, and despite all these injuries, Captain Smit continued to command this flight by flight. And the Federation believes that, you know, it is because of Captain Smit and his executive decision-making skills that he was also able to safely divert the flight to Tabuk in Saudi Arabia after this cockpit incident, saving the lives of 174 passengers and 8 crew members, which deserves a National Bravery Award after due verification, is what the Federation of Indian Pilots has written to the Prime Minister's office.
0: All right, Tanushka, thanks so much for joining us with all those details. So the chorus really of these requests pouring in, even as we said, praise pours in for Smit Machar and the manner in which he handled that crisis as he was being attacked on that plane. He's spoken to the Prime Minister and said all he had on his mind was that he had to save 170 passengers on board. Now requests and demands for him to get, you know, bravery awards are coming in, and demands that he receive the nation's highest honours. From the Ashok Chakra to even the Bharat Ratna and Mahavir Chakra, the chorus for recognition growing. Shiv Sena MP Milind Deora has written to Prime Minister Modi seeking the Ashok Chakra for Smit, while Congress leader and former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat has called for a Bharat Ratna. And lyricist Javed Akhtar says Smit deserves the Mahavir Chakra. The message is clear. Smit's courage has sparked nationwide call for recognition.

0: got very emotional as well. In fact, Smit Machar telling the Prime Minister that he even recited the Hanuman Chalisa during that incident that gave him courage to fight. Prime Minister Narendra Modi praised him for his extraordinary courage and said that the whole nation is proud of you.
1: Smit, namaste.
2: Namaste, sir.
1: कैसे हो अभी, तबीयत कैसी है?
2: सर सब ठीक है, सर सब ठीक है।
1: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं।
2: यस सर।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से जा जुड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मित कर दे दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं हम सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था, एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने लो रहा हूँ सर।
1: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहाँ होंगे?

0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, उतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मैं साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है। क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात
1: यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर
0: है।
1: हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
0: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
1: नहीं सर, मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं इसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
0: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपकी बहुत केयर की। मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, और लोगों ने कहा कि अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, और आप बिल्कुल, पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ी गुजराती में बात करे ली बॉबी, यानी जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता? बेवजह गुजराती बोले छे। अच्छा तो बाळको મળવાનું થઈ ગયું? બાળકોને ડોક્ટર એલાઉ કર્યા મળવા માટે?
1: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ એ આ ઉપર તો જોઈ નહીં, ડરી ગઈ.
0: અચ્છા,
1: એ થોડી ઇમારતી બહુ ક્લોઝ છે અને મારા નાના સન 2 વર્ષ પછી એને નથી એલાઉ કરતા.
0: નહીં, હમણાં તો સાચવું જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે. કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ ના, ફરિયાદનું નામો નિશાન નહીં. ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં. બસ એમની એક જ વાત હતી ને, ભગવાન સારું જ કરશે.
1: બસ બસ એકદમ એમાં જ રહે છે સર.
0: હા, चलो जय श्री कृष्ण।

0: અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાઓ, પછી આપણે મળીએ છીએ.
1: યસ સર.
0: હાજી, ગોડ બ્લેસ યુ. જય જય હિન્દ.
2: All right, so Captain Smith Machar there speaking to the Prime Minister from his hospital bed. Now, NDTV also spoke to Captain Smith's in-laws. Listen in to what they had to say about the bravery of their son-in-law.
3: Captain Smith Machar ne jo kiya wo desh ke liye ek gaurvanvit karne wala kshan hai. ऐसे में उनका परिवार उनके साथ इस समय दुबई में मौजूद है और कैप्टन स्मिथ का फिलहाल इलाज चल रहा है. आज उन्होंने प्रधानमंत्री से वीडियो कॉल पर बात भी की है. इसी बीच ये कैप्टन स्मिथ और उनकी पत्नी सोनल के परिवार के लिए कितना बड़ा क्षण है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोनल के पिता जयसुख जोगी और सोनल की माता जी हैं. सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जब ये बात सामने आई कि एक फ्लाइट क्रैश होने वाली थी लेकिन एक भारतीय पायलट ने उस क्रैश को होते होते बचा लिया और आपको पता चला कि वो आपके सन इन लॉ कैप्टन स्मिथ थे, उस समय आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ था?
4: वो सुनने के बाद हम लोग को एकदम से शॉट लगा और ऐसा लगा कि क्या हो गया है. और तभी हम लोग को मालूम पड़ा सर, 5 बजे हम लोग को मालूम पड़ा. मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया कि भाई आपका ये हुआ है ऐसा करके. तो फिर हम लोग सोचते रहे कि ऐसा हो क्या. फिर उपेंद्र भाई को हमने फ़ोन किया, अभी भाई को, कि भाई क्या हो गया है, ज़रा तो बात सही है कि गलत. तो कहा हाँ बात सही है, ये हो चुका है और हम लोग सब अपसेट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है. अभी सब लोग बातचीत कर रहे हैं क्या हो रहा है. तो हम लोग को बहुत शॉर्ट लगा. बाद में धीरे धीरे सब समाचार आने लगा तो ज़रा रिलैक्स होने लगे. मगर इतना टेंशन रहा रात भर, रात भर नींद भी नहीं आई कभी, क्या होगा अभी, क्या होगा ऐसा. उस फिर की तब वो बात करने को भी नहीं दे रहे थे उनके साथ. तो हम लोग को बहुत टेंशन, मेरी लड़की भी बहुत टेंशन में थी, पूरा घर सब टेंशन में था. कहते एक बार बात हो जाए तो ठीक है. फिर नरेंद्र मोदी ने बात की सोनल से, फिर वो कुछ रिलैक्स हुआ हम लोग. और उनको नरेंद्र मोदी को भी बोला कि ज़रा बात करा दो हम लोग को, तो हम लोग को एक बार रिलैक्स हो जाए. फिर उन लोगों के मिलने को गया, फिर अब मिलने के बाद घर को शांति हुआ. तब तक बहुत सब लोग टेंशन के अंदर थे.
3: अब आपको थोड़ा सुकून लग रहा है क्योंकि कैप्टन स्मिथ ने आज प्रधानमंत्री से वीडियो कॉल पे बात भी की है और सोनल ने भी जो भी बात की है उसमें कहा है कि वो चाह रही हैं कि सब सही हो जाए और कैप्टन स्मिथ भी रिकवर कर रहे हैं.
4: उसके लिए बहुत अच्छा लगा. और देख दुनिया भर से सब लोग का उसको जो तरफ से उन लोग को जो आशीर्वाद मिल रहा है वो एकदम सराहनीय से, गर्व से सीना फूल रहा है कि भाई चलो एक हमारे आदमी ने इतना साहस करके इतना लोग की जान बनाई. और मेन दूसरा बात है कि पूरा इंडिया का नाम कर लिया. नगर एक जब मोदी जी ने किया वो बात सही है कि अगर ये हौसला हो जाता तो सब लोग का गलत मैसेज आता था कि भाई ये इंडियन पायलट ने सबको मार दिया. एकदम सही बात है, एकदम आदमी ने एकदम बराबर काम किया, पूरा समाज के लिए, मुंबई के लिए, पूरा घर के लिए, हमारा कुटुंब के लिए, हम लोग को सबको गर्व है. और बहुत लोग का फ़ोन आ रहा है कि उसके लिए हम लोग को बधाई दे रहे हैं कि आपने, आपका जमाई ने बहुत अच्छा सा काम किया.
3: मैम, आपसे जानेंगे आज जब कैप्टन स्मिथ प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, वो रोने लग गए थे और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहा था जब मैं कॉकपिट में था और मुझे सिर्फ इतना दिख रहा था कि मुझे लोगों को बचाना है और मैं अपनी ड्यूटी से पहले मेरा जो कर्तव्य बनता है वो कर रहा था. कैप्टन स्मिथ को लेकर, क्योंकि आप उन्हें कैप्टन स्मिथ हैं, आप उन्हें अपना बेटा मानते हैं, आपके दामाद हैं वो, आप वो बताइए कि वो बिहेवियर में कैसे हैं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि वो बिहेवियर वाइज भी उतने ही अच्छे हैं जिस तरीके से उन्होंने काम किया है.
5: बिहेवियर वाइज बहुत लगनशील है और सबका केयर करता है, खास करके मम्मी पापा का, बच्चों का, सोनल का, सबका केयर करता है. और वो इमोशनल ऐसे हो गए कि मोदी जी ने फ़ोन किया इसलिए भी इमोशनल हो गए और थोड़ा ये कठिन परिस्थिति में से बाहर आए हैं, भी बच्चों से मिले नहीं हैं तो वो थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो गए कल.
3: आपने आपने बात की होगी सोनल से, कैप्टन स्मिथ से बात की आपने, क्या बात हुई उनसे?
5: खास कोई बात नहीं हुई, बस स्मिथ की तबीयत रिकवर हो रही है ऐसी बात हुई. और ये न्यूज़ में सब सुनते हैं कि सब लोग उसके जल्दी तबीयत रिकवर हो जाने के लिए प्रेयर करते हैं. सोमनाथ में वो महामृत्युंजय जप किया, कोई हीलिंग वाला ग्रुप है वो हीलिंग भेज रहे हैं, मतलब पूरा इंडिया उसकी तरफ गर्व करता है और हमदर्दी भी दिखा रहा है, इसलिए अच्छा लगता है। और प्राउड तो होगा ही होगा, कुछ छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है, तो प्राउड तो बहुत है हमको। बस एक बार स्मिथ को मिल ले ना हमको, तो और ज़्यादा खुशी होगी।
1: कब कब मिली, कब थी आप उनसे आखिरी बार?
5: आखिरी बार याद करना, 3-4 महीना तो हो गया होगा। और वो दुबई से 1-2 दिन के लिए आते हैं ना, तो मिलने का कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है।
1: ओके, अब आप चाहेंगे कि वो जल्दी भारत आए और आप लोग से मिले?
5: नहीं, हम पहले तो अभी उसका तबीयत एकदम रिकवर होने दो, हम लोग दुबई जाके उसको एक बार मिल लेंगे।
1: क्या बात है सर, जैसा
5: कि आएंगे और मिलेंगे, जरूर हमारे घर पे भी आएंगे।
3: भारत आएंगे और मिलेंगे। सर आपसे जानेंगे कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आप हमारे देश के एक हीरो हैं, और ये जो उन्होंने काम किया है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इसराइल के भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इनकी तारीफ कर रहे थे, तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा क्षण है जिसको आगे चलकर इतिहास में लिखा जाएगा कि एक पायलट ने, यदि जिस जो सूझबूझ उन्होंने दिखाई है वो 1 से 1.5 मिनट में, वो हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाए?
4: सही बात, एकदम सही बात है, सब लोग जो बता रहे हैं एकदम सही। एक क्षण था सब लोग का, सब लोग, और 5 आदमी ने मदद किया उसने, वो भी सब सुनहरे अक्षर में जाएगा, क्योंकि ये चमत्कार ही है एक, समझ लो, ऐसे कभी हो नहीं सकता है। बहुत लोग का वीडियो मैंने देखा, सब लोग यही बोले, एक चमत्कार है। जो बाकी का एक स्मिथ का बहुत बड़ा था, वो दरवाज़ा खोल दिया, वो दरवाज़ा खोल दिया, और बाकी का लोग ने जो एक एक ने सब काम किया, एक एक संभाल के पूरा सब लोग का जिंदगी बचा, एक समझ लो ऊपर वाले ने सबको बचाया, ऐसे समझ लो। बाकी अब पॉसिबल ही नहीं था कि ऐसा जो आदमी, जो प्लम्बिंग का आदमी काम करता है, वो आदमी ने स्टेयरिंग पर करके सही कर दिया, वो भी स्टेबल कर दिया, और एक 2-3 मिनट का मामला, 3 मिनट में सब खत्म हो जाता था, मगर सब ऊपर वाले की दया से सब बच गए। प्राउड होता है कि सब अच्छे से हो गया। ट्रंप ने भी बताया, नेताओं ने बताया, मोदी जी ने बताया, सब लोग ने तारीफ किया, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि भाई हमारा जमाई ने इतना सब अच्छा सा काम करके दिया, और सब लोग इसके लिए खुश है। बहुत लोग का बहुत बोलेगा तो बहुत लोग का उसका लिए अभिनंदन आ रहा है। हम लोग कुछ कुछ स्मिथ से हम लोग की बात नहीं हुई है, खाली वीडियो देखा तभी उनको हम लोग देखा, बाकी देखा नहीं था। फैमिली से बात हुई, उनके में वेवाई से और सोनल से तभी बात हुआ था, तभी हम लोग खाली बात हुआ था, देखा नहीं था, बेटा तो वीडियो में हमने पहली बार देखा।
1: कवर हो रहे हैं वो।
4: एकदम कवर हो रहे हैं, बात अच्छे से कर रहे थे, हमको भी दिल को तसल्ली हुई।
3: तो आप यहाँ पर सोनल के मम्मी और पापा को सुन रहे थे, इनका कहना है कि जो कुछ कैप्टन स्मिथ ने किया है वो आगे चलकर इतिहास में लिखा जाएगा, और वही दूसरी ओर फिलहाल कैप्टन स्मिथ रिकवर कर रहे हैं, और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की और अपने हेल्थ अपडेट को लेकर जानकारी भी साझा की। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।
2: All right, Sujata, they're speaking with Captain Smith's in-laws. Now, in the midst of the life and death crisis at 30,000 feet, Captain Smith Machar says he turned to faith. He revealed this during his conversation today with Prime Minister Narendra Modi, badly injured, convinced that the aircraft could be going down. Smith says he recited the Hanuman Chalisa, saying that it is a prayer he turns to whenever he faces a crisis. And this time, as he fought to save everyone on board, he says he kept reciting it. Smith also told Prime Minister Modi that he recites the Hanuman Chalisa with his 2-year-old son every day. For him, it was more than a prayer. It was a source of courage and faith in what he believed could be his last moments.
6: अब मुझे पता है कि वो भगवान की मेरे को बचा है। सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए।
0: सही बात है।
6: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
0: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं, भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है।
2: Right, Captain Smith, they're telling the Prime Minister how he turned to faith, how he was reciting the Hanuman Chalisa, thinking this could be his last moments. Well, with that, we'll slip into a short break. More news and updates on the other side. Yeah.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: him and tried to crash the flight Dubai plane. Speaking to Prime Minister Modi, Captain Smith shared his experience and said that he did not care about his life but cared for the lives of 170 people on the plane. He even said that he was reciting Hanuman Chalisa during the incident that gave him courage to fight. Prime Minister Modi praised him for his extraordinary courage and said that whole nation is proud of you.
1: Smith, namaste.
2: Namaste, sir.
1: कैसे हो अभी तबीयत कैसी है
2: सर सब ठीक है सर सब ठीक है
1: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं
2: yes,
1: आपकी हिम्मत ने आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं जान बचाने वाले लोग हैं और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला गीता बहन से बात की सोनल बहन से बात की जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया स्मित अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा
2: सर मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था आपने सबसे बड़े एक्टर से और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफर ऐसा कर रहे हैं मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं गिर चुका था इतने गांव लग चुके थे कि मैं बच चुका था नीचे एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एंजर में 17 साल से जहाज उड़ा रहा हूँ मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मित कर दे दरवाजा बस वही है और तभी भी मैं मार खा ही रहा था बस वो खोल दिया सर बाकी सब आगे और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था बट जान के मैं सर को बोला था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था एंड मैं सर आई एम जस्ट मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए बस आपका एक कॉल आ गया मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है अब भी मेरे को हो रहा है मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था अब हो गया सर सॉरी क्या आपके सामने रो रहा हूँ सर
1: स्मित अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहाँ होंगे

0: भी आपसे बात होगी, तब भी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
0: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात है।
0: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वाड़ में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
0: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, और अब बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ी गुजराती में बात करी ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता? गुजराती बोले छे। अच्छा, તો બાળકો મળવામ થઈ ગયું? બાળકો ને ડોક્ટર એલાવ કર્યા મળવા માટે?
0: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ આ બધું જોઈ નહીં ડરી ગઈ.
1: અચ્છા અચ્છા,
0: એ થોડી ઈમારતી બહુ ક્લોઝ છે. હા, અને મારા નાના સન 2 વર્ષ પછી એને નથી એલાવ કરતા.
1: નહીં, હમણાં તો સાચવું જોઈએ. પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે. યસ, હા
0: યસ.
1: કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને. ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં. બસ એમની એક જ વાત હતી ને, ભગવાન સારું જ કરશે. चलो जय श्री कृष्ण अने खूब जल्दी साझा थाओ पछी आपने मळीए छे गॉड ब्लेस यू जय जय हिंद
2: You heard that heart-to-heart conversation of Prime Minister Modi with Captain Smith Mack. Let's now give you a lowdown of what that conversation actually means. First up, he speaks to the Prime Minister about how Smith fought for his life and that of the passengers as well. Despite his injuries, Smith's focus was saving the lives of the passengers on board. He knew that the aircraft was going down as well, and he lied injured. Smith could feel the aircraft descending. Apart from that, 17 years of flying also kicked in. A lot of aviation experts talking about the muscle memory of the Captain Smith Mack. His experience helped him understand the crisis and take prompt and quick action during that situation. Faith also became his anchor. Smith, during that conversation with the Prime Minister, says that he recited the Hanuman Chalisa as the crisis unfolded. He does not dwell on his injury. Smith sees his injury as a journey to recovery, and he says that he's positive that he will recover soon. Let's now tell you more about all that transpired mid-air, in the midst of a life and death crisis at 30,000 feet. Captain Smith Machar says that he turned to faith. He revealed that this in a conversation with Prime Minister Modi, where he was badly injured and he convinced that the aircraft could be going down. Smith says he recited the Hanuman Chalisa. He says it is a prayer he turns to whenever he faces a crisis. And this time, as he fought to save everyone on board, he says he kept reciting it. Smith has also told Prime Minister Modi that he recites the Hanuman Chalisa with his two-year-old son every day. For him, it was more than a prayer. It was a source of courage and faith in what he believed could be his last moment.
0: And myself, I'm just my positivity. सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए
1: सही बात है
0: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं
1: आपको पता नहीं होगा लोग सावर कुंडला में भी वढ़वाण में भी सब दो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है
2: Well, Captain Smith Machar's father speaks exclusively to NDTV. Bhupendra Machar, father of Captain Smith Machar, says his son's courage came from a determination to ensure that no passenger lost their life during the Fly Dubai cockpit attack. As Smith recovers in a military hospital in Abu Dhabi, his family credits faith, resilience, and a deep sense of duty for the actions that turned him into a global symbol of courage. Listen in to this exclusive conversation with NDTV's managing editor, Shivarur.
3: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain, Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai? उनकी तबीयत कैसी है उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई
4: जैसा आपने देखा वीडियो में वही चीज मैंने भी देखी आज क्योंकि मैं आज उनको कल मैं मिला था 10 मिनट के लिए तभी वो थोड़ा पूरे पूरे कंट्रोल में नहीं था, थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है। तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, माउंड वे ही है। और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
3: स्मित ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे, भूपेंद्र भाई आपको क्या बताया कल?
4: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था। तो मैंने सोचा कि आज स्मित अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे, आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ। तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे।
3: भूपेंद्र भाई स्मित के जख्म कितना सीरियस है, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
4: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी। तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।
3: भूपेंद्र भाई आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
4: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे खराब भी उस नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे।
3: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
4: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
3: जी। और भूपेंद्र भाई आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
4: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा

0: Well, I am with the Asian Games champion in 75 kg boxing, Lovlina Borgohai. Lovlina, even before I congratulate you, many, many happy returns of the day.
1: Thank
0: happy
1: you so
0: birthday.
1: Much. Thank you.
0: What is the story of this medal? Every medal comes with a story. Is medal ka story kya hai?
1: Is medal ka story, pehle to bahut jyada expectation ke saath main nahi aayi thi. एक माइंड में था कि मुझे अपनी गेम को एंजॉय करना है क्योंकि मुझे लगता है हम अपने गेम को जिस तरीके से अगर एंजॉय करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा. मेहनत तो हम हर कोई करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं रहता है, सबका सपोर्ट भी रहता है, बट खुद के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है. और कहीं ना कहीं वही रखा मैंने और दूसरा कुछ भी नहीं सोचा इस बार, बस अपने गेम पर फोकस था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बस मुझे जीतना था और कलर चेंज करना था. और ऊपर से बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था क्योंकि जापान मेरे लिए लकी है.
0: बिल्कुल, जापान आपके लिए लकी है. और बहुत लोग कह रहे थे कि आपके पास अब दो दो एशियन मेडल है जो कि मैरी कॉम के पास भी नहीं है. उस लिहाज से कंपैरिजंस विद मैरी कॉम, सम आर कॉलिंग यू ग्रेटर दैन मैरी कॉम्स अचीवमेंट, वो कैसे आप देखते हैं?
1: मुझे लगता है कोई भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए और हो भी नहीं सकता है. सबका अपना अपना जर्नी होता है, अपना अपना स्टोरी होता है. हर कोई अपने जो जर्नी होता है वो स्ट्रगल वो खुद फेस करता है. तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, वो तो लीजेंड है ही. हम अपना कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट कर पाए बस.
0: लवलीना, आज का जो मैच था चाइनीज़ बॉक्सर के खिलाफ, बाओजी 21 ईयर ओल्ड है, लेकिन क्या आपको लगता है आपके हाइट ने आपको थोड़ा सा एडवांटेज दिया और आपने लॉन्ग रेंजेस उसको रेंज में लॉन्ग रेंज में रखा?
1: मुझे लगता है कि हाइट से ज़्यादा मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा मैटर किया क्योंकि ओपोनेंट बहुत ज़्यादा टफ थी, यंग थी और वो बिना सोचे बस आ रही थी. उसको कंट्रोल करना, हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए उस टाइम पे. बस मेरा विल पावर और कहीं ना कहीं इतना हार्ड वर्क जो ट्रेनिंग करते आए बस वही काम किया और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस काम आया. मुझे लगता है
0: इस बाउट में मैजिक मोमेंट क्या था?
1: मेरा माइंडसेट था आई थिंक.
0: और आप जब यहाँ तक पहुँचे तो आपने वर्ल्ड चैम्पियन जो कि 69 किलोग्राम के वर्ल्ड चैम्पियन थे लेकिन अब 75 केजी में बॉक्स करते हैं, उनको आप हरा के आए हो, तो ऐसा लगता है कि मतलब पहले से ही वर्ल्ड चैम्पियन को निपटा दिया, यहाँ पे आके जो है उससे तो निपट ही लेंगे हम?
1: वैसे मैंने ओपोनेंट को इतना एनालाइज नहीं किया क्योंकि मुझे अपना गेम खेलना था, मुझे अपने ऊपर विश्वास था. ओपोनेंट चाहे जो भी हो सामने, चाहे वर्ल्ड चैम्पियन हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हो, मैंने कुछ नहीं सोचा. बस मैंने सोचा कि मुझे अपना बेस्ट देना है, उसके बाद रिजल्ट जो भी होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगी.
0: 69 से 75 में आना, हाउ वॉज द एडजस्टमेंट लाइक? डिफ़िकल्ट थी, ईजी रहा, क्या है?
1: जैसे 2024 में 69 केजी नहीं था तो मुझे 75 में आना पड़ा, लेकिन 75 में आने के बाद भी मेरा जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था. मेरा एशियन गेम्स लास्ट मेडल भी 75 में था, मैं वर्ल्ड चैम्पियन भी मैं 75 में बनी. तो हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज थी थोड़ा सा एडजस्ट होने में क्योंकि जब हम ऊपर के वेट में आते हैं तो फिजिकली और ज़्यादा फिट होना ज़रूरी होता है क्योंकि हम थोड़ा स्लो हो जाता है और मेंटली और ज़्यादा फिट रहने की ज़रूरत पड़ता है. तो हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था लेकिन अभी मैं एडजस्ट हो गई हूँ 75 में, तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अच्छे से खा सकती हूँ, मैं अच्छे से ट्रेनिंग कर सकती हूँ. हाँ, थोड़ा सा एक दो दिन पहले कंट्रोल करती हूँ मैं वेट को, लेकिन मैं अपना 100% दे पाती हूँ 75 में.
0: आज वर्ल्ड चैम्पियन होने के, एशियन चैम्पियन होने के बाद क्या खाने का मन है?
1: अभी तो घर का खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन है, आसामीज खाना खाने का मन है.
0: कुछ बोला है, कुछ मंगाया है आपने?
1: नहीं नहीं, अभी तो आसाम जाके ही खा पाऊंगी, यहाँ पे तो नहीं मिल पाएगा.
0: एक आखिरी सवाल है, आपके जो बॉक्सिंग फेडरेशन के चीफ कह रहे थे कि पिछले कुछ साल आपके लिए बहुत टफ रहा है, कैन यू टेल अस, कैन यू टॉक टू आवर व्यूअर्स, जो टफ वक्त होता है उसमें आप क्या करते हैं एंड हाउ डू यू सेल थ्रू?
1: मुझे लगता है कि जब ऐसे टाइम आते हैं कि हम सब कुछ खो जाते हैं, खो जाने के बाद फिर से हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू करना, वो माइंडसेट कि हम फिर से कर सकते हैं, जो बाउंस बैक करना होता है वो टाइम लगता है लेकिन हो जाता है. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जिस मोमेंट में रहते हैं उस मोमेंट को जीना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो मैं वही कर रही थी कि मुझे हर टाइम को, इस टाइम को भी मैं बस एंजॉय कर रही हूँ. कोई एक्सपेक्टेशन के बिना.
0: वेल, लिविंग इन द मोमेंट, बिगेस्ट लेसन. एंड थैंक यू वेरी मच लवलीना एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन.
2: All right, with that, we're slipping into a very short

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी। तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।
1: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
0: जैसे जैसे हर माँ बाप का होवे, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे।
1: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
0: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सोल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
1: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
1: भूपेंद्र भाई, क्या स्मित हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
0: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
1: जी,
0: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
1: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे? फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे
0: वो तो वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
2: So that was the pilot's father speaking to NDTV. So tonight we'll also look at this from three possible angles. The pilot who became the first line of defense, the aviation and security systems that are supposed to protect passengers, and the investigation into what happened inside the cockpit, what is supposed to follow now. We have a panel of guests with us. We have Mangal Bhanushali, who's a family friend of Smit Machar. We also have Captain C.S. Randhawa, aviation expert. He's also the president of Federation of Indian Pilots. And we have Captain S.S. Panis, sir, who is an aviation expert as well and former director of Flight Safety Indian Airlines. And we have squadron leader Akshay Chopra joining us, also an aviation expert and former pilot. Thank you all of you for being part of this broadcast. Let me speak to you, Mangal, first. Mr. Bhanushali, aap Smith ko jante the. Aapke hisab se wo kaise aadmi hai? Kyunki unhone jo kiya hai, usne pure desh ko nahi, pure vishw ko bahut hi zyada jo hai proud feel karwaya है। उनके फादर से हम लोगों ने भी बात की, वो कैसे आदमी हैं, उनसे क्या आपको ये उम्मीद थी कि एक टाइम पे सबको इतना प्राउड फील करवाएंगे?
3: देखिए, उनका स्मित जी का आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 17 साल के फ्लाइंग की उसके हिस्ट्री में एक भी लाल फीत उनको लगी नहीं है
2: जी।
3: एक तो वो बहुत सिंसियर थे फ्लाइंग के बारे में, और दूसरा वो पूरा बिजनेस फैमिली में से आते हैं। वो बिजनेस फैमिली में से आते हुए भी उन्होंने अपना जो पैशन था, उनकी जो फ्लाइंग के प्रति उनका जो लगाव था, तो उसने उन्होंने ये सेल्फ डिसीजन लिया कि मैं फ्लाई करूंगा। वो जब हमारे यहाँ घाटकोपर में हमारे सामने ही रहते थे और कभी आते जाते थे हमारे यहाँ मंदिर में, तो पहले से वो भक्ति भाव वाले हैं। हमारी हिंगलाज माता जी का मंदिर है भानुशाली वाड़ी में, वहां पे वो दर्शन करने के लिए उनका परिवार पूरा आता है। और एक रूप से अगर देखा जाए तो इतना सिंसियर बंदा था वो कि उन्होंने विदाउट एनी कोई बाहर की हेल्प लिए बिना उन्होंने अपने पेशेंस को उन्हें पूरा किया। वो फ्लाइंग में लगने के बाद में भी उन्होंने अपना भक्ति भाव कायम रखा। उनको ईश्वर में एकदम श्रद्धा थी और है और रहेगी। तो एक नेक दिल और एक सच्चा बंदा हम जिसे कह सकते हैं, वो इंसान अगर हम स्मिथ के बारे में कहें तो वो कह सकते हैं।
2: राइट मगर भाई, और उनके बारे में आपको क्या याद है, आप उनको जानते थे?
3: देखिए वो जब हमारे यहाँ उनके जो बिल्डिंग में रहते थे उसके पीछे एक टेक्निकल स्कूल है, गुरुकुल टेक्निकल स्कूल, उसमें उन्होंने अभ्यास किया। तो वो अभ्यास के समय में भी काफी सिंसियर थे। वो अभ्यास के अंदर कभी टीचर को डांट देने का चांस देते नहीं थे और अभ्यास में रुचि रखते थे। जब भी उनकी रुचि तो फ्लाइंग में ही थी, तो वो टेक्निकल अभ्यासक्रम उन्होंने कंप्लीट किया वहां से। और उनका जो मोटो था, उनका जो फोकस था, वो फोकस कुछ अच्छा करके दिखाना था और वो हमेशा उस फोकस के ऊपर लगे रहे।
2: राइट मगर भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। जब प्राइम मिनिस्टर ने उनसे आज बात की है, आपको वो सुनकर, वो बातचीत सुनकर आपको क्या लगा और आपकी क्या प्रार्थना है उनके लिए?
3: देखिए उपेंद्र भाई एक अच्छे बिजनेसमैन है और उनके पिताजी के समय से उनका बिजनेस प्रिंटिंग का कपड़े पे चलता आ रहा है। और आज हमें पूर्ण घाटकोपर वालों को, सब यहाँ जहाँ उनके नेबर्स हैं, हम सब उनके साथी हैं, हम उनको जानने वाले हैं, आज ये हम गर्व ले रहे हैं कि राष्ट्र को आज उन्नत पूरे विश्व में ऊपर ले जाने वाला काम स्मिथ के हाथ से हनुमान जी दादा ने करवाया है। हम सारंगपुर भी जाते हैं, सारंगपुर में प्रार्थना करते हैं हनुमान दादा के पास, कष्टभंजन के पास, और हम अभी भी यही उनको प्रार्थना करेंगे कि ये जो राष्ट्रभक्ति उन्होंने, राष्ट्रभक्ति से भी ज्यादा वो एक मानवता की भक्ति उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिगर औरों की जान कैसे बचाई जाए उसका उन्होंने कार्य किया है। हालांकि जो मोदी साहब कहते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है, उनको उन्होंने मयंक भाई ने आज साबित करके दिखाया है, भले उसमें एक भी भारतीय नहीं था लेकिन सारे जो उसमें प्रवासी थे वो प्रवासी हमारे ही भाई थे। उसके अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने जो बहादुरी बताई है, ये जो हमारा सूत्र है कि सारा विश्व हमारा परिवार है, उसको उन्होंने साबित करके दिया है। और अभी हम हनुमान जी के चरणों में और प्रार्थना करते हैं कि और भी उनको शक्ति मिले और उनका पहले से जिस हिसाब से स्वभाव है, मैं नहीं समझता हूँ वो अभी वो फ्लाइंग को छोड़ेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा हम सब घाटकोपर वालों को, उनको जो जानने वाले, उनके परिवार जो जानने वाला है, उनको हमको ये विश्वास है कि वो कंटिन्यू करेंगे। और अभी जो इंजरी है वो इंजरी से वो बहुत जल्दी बाहर आएंगे, आप देखिए मिरेकल होगा उनके इंजरी में से वो बाहर आने में।
2: वेरी नाइस वर्ड्स मंगल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फेलो मुंबई कर मंगल भानुशाली, आल्सो फैमिली फ्रेंड ऑफ स्मिथ मच्छर, जॉइनिंग अस एंड सेइंग दैट व्हाट कैप्टन स्मिथ डिड इज एन इंस्पिरेशन नॉट जस्ट फॉर इंडियंस बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज हिज एक्ट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। थैंक यू मंगल भानुशाली फॉर जॉइनिंग अस। वी ऑल्सो हैव अ पीस ऑफ ब्रेकिंग न्यूज राइट नाउ। इसराइल प्रेसिडेंट हैज नाउ प्रेज्ड कैप्टन स्मिथ मच्छर एंड ही हैज टॉक्ड अबाउट हिज act and he has said that it's an act of courage and he has said that the whole country salutes him and he also basically said that he was honored to share the special message with the convention of Indian Jews and Indian India Israel festival organized by the embassy of India. Let's listen in to what he said.
4: A special brave human being, I thank Indian pilot Captain Smith Mathur for his extraordinary bravery in saving so many lives aboard the flight yesterday. I wish Captain Mathur a speedy and full recovery.
2: Well, let me bring in Captain Randhawa now. Captain Randhawa is an aviation expert. I'm sure there are many answers that you are looking for here. What are the big questions that this episode has also raised, and what kind of protocols need to be put in place? Because if a person is indoctrinated, or as the speculation goes, what really can we do?
5: Vasudha and my co-panelists, good evening. I will answer that question in two parts. First and foremost thing I would like to tell the viewers, Captain Smith Machar was our FIP member till 2022 for 5-6 years. When he was in SpiceJet, and only when he went to fly Dubai that he did not keep the membership alive. The act of the captain is really commendable. The way he's handled the situation, being grievously hurt by the co-pilot, and the way he was able to still come out of the situation, and he squawked 7700, he opened the door,
2: yeah,
5: and he was in quite a bad state.
2: Yeah.
5: He was badly injured. Now, we have written to the Prime Minister today that he should be given a commendation, a bravery award, because the whole nation is proud of this Indian pilot. It's very, very proud moment, because I remember a few years back when Lion Air crash took place in Indonesia. The American companies, they jumped and immediately blamed that it was an Indian pilot.
2: Mm.
5: Later on, it was realized that there was a technical problem in the aircraft after the Ethiopian crash. So I would like to put across that a few protocols have to be now, because it's the first time such a thing has happened in aviation. In my last 50 years of aviation experience, I have never heard or even seen such a thing happening in the cockpit. The pilots are not trained on karate, judo, and you're not supposed to be doing all those things in the cockpit.
2: Yeah.
5: So what protocols now have to be put in place is the airlines have to think of putting sky marshals in the aircraft. That is one thing. Like the El Al, every flight, there are 2 to 4 sky marshals on board.
2: Mm.
5: The second important point is there has to be profiling of the pilots done.
2: Okay.
5: Especially in the Gulf, when you have multinational...
2: I think this profiling thing is very important. Let me bring in other guests also. Squadron Leader Akshay Chopra, you know, what are your thoughts on, you know, what needs to be done? And also this extraordinary act of courage of opening the door by Captain Smith. Why is it so important? Because I was reading about...

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आ, प्योर मसाला।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझ पेंट रंग।

0: और प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम टाइम विद मी रेशा सेगर एक्जेक्टली
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
3: Rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang,
4: rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang,
5: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
6: यू वॉच अस यू ट्रस्ट अस नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू योर सपोर्ट हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनडीटीवी'स जर्नी एंड एट द आईटीए अवार्ड्स 2026 वी आर आस्किंग फॉर योर वोट Vote for NDTV and show your support for the journalism you trust. It will just take a few moments and every vote means a great deal to us. So do vote, share the links and cheer for NDTV.
5: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/NDTV. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters.
7: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
8: कुछ इससे भी अनोखा
7: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन अनरिटन। As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
0: Rang rang rang rang rang rangine rang rangine re, dekho kaise bhi ho din रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: यू वॉच अस व्यूअर, यू ट्रस्ट अस, एंड नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू। वोट फॉर एनडीटीवी एट द आईटीए अवार्ड्स 2026। यू हैव गॉट दैट पावर। Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link, and cheer for NDTV.
2: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV, when it really matters.
4: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: who is this man? What kind of background does he come from? What was his upbringing like? We got a little bit of insight into it today morning when he spoke to the Prime Minister. And for more, let's cut across now to his friend and family. So not too much known about the man who the entire world is discussing today. We're trying to get you an insight into the person that Smit Machar is, and which is why joining us today is Akshay Doshi, who is a friend of Smit and the family, and Ishwar Bhai Padia, who is a relative of the entire family from both sides, from the side of his wife as well as Smit himself. Ishwar Bhai, aap se pehle shuruaat karungi. Aap thoda sa parivar ke baare mein bataiye, kyunki aaj jab pehli baar humne Smit ko pradhanmantri se baat karte hue suna, तो एक अलग ही उनका एक पर्सपेक्टिव है वो सामने आया, उनके बच्चों के बारे में, हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में, गीता बहन के बारे में, तो थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए।
1: अभी आप बोलते हो तो मैं बोलता हूं कि स्मित है ना, बचपन से एक उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे पायलट बनना है, आप उसको बोलो अरमान बोलो, महत्वाकांक्षा बोलो, आशा बोलो, वो लड़के ने करके दिखाया बन के। और उनकी जो वाइफ है सोनल, उन्होंने उसको बहुत साथ सहकार और सहयोग दिया। और मीत है बिजनेस कम्युनिटी में से आता है। और दूसरी बात, आप उनका रहन सहन खुद का उनका, उसमें आस्था श्रद्धा विश्वास बेहिसाब थे, बेहिसाब है। वो बोलते हैं ना किसी का भला करना, ये उनकी एक आदत है। जैसे कि मैं चार लाइन में आपको बोलूं कि बिछा सको तो फूल बिछाना, काटे बिछाना मस्ती को, लगा सको तो बाग लगाना, आग लगाना मस्ती को, जला सको तो दीप जलाना, तीर चलाना मस्ती को, पिला सको तो प्यार पिलाना, जहर पिलाना मस्ती को। ये इनका जीवन का ध्येय है। इतना सोबर, प्रभु के प्रति आस्था विश्वास का उसके पास कुदरती और मन से बहुत लगाव है। और उनकी फैमिली में उनके पिताजी जो है उपेंद्र भाई, माता, तो उन्होंने भी उसको बहुत साथ दिया उनकी जो इच्छा पूरी करने के लिए
0: जी।
1: और यहाँ समझो ना 10 साल से वो वहाँ रहता है, और उनको एक बड़ी लड़की है, एक छोटा लड़का है। और आपने बोला तो मैंने कहा,
0: बहुत अच्छा बोला आपने ईश्वर भाई, बहुत अच्छा शेर भी सुनाया आपने। पर मैं एक अक्षय से भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक द अदर एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली लाइफ दैट दे हैव इन मुंबई, इट वाज रियली हार्टनिंग द वे ही सेड दैट यू नो वी लिव इन अ फॉरेन लैंड बट वी आर नॉट अवे फ्रॉम आवर कल्चर, इवन नाउ आई इंश्योर दैट इन द मॉर्निंग As a family, we sit together, we pray together. Talk us a little bit about what you know of them, Akshay, as a family, the family setup, the children, and also Sonal, his wife.
2: Smitji, so we know them since the last 14, 15 years, and they're a very close-knit family. And he's the only son, and he's very, very close to his parents, his wife, and his daughter and his son. So, I mean, they're all a very close family. They're very religious. Even in the last 3 years, they had a Ganpati festival at their home. Even when they moved to Dubai, they had a Ganpati festival in Dubai as well. So, yeah, the belief in God is there and it's in their roots as well. So, yeah.
0: You know, and it was so cool because the Prime Minister, when he said Jai Shri Krishna, let's talk a little bit in Gujarati, he said that I've taught my children Gujarati first and then I taught them anything else.
2: Absolutely. No. I completely agree. His daughter is about 9 and we've seen her grow up since the time she was born. And the roots that they have, they're pretty much in religious context as well, in spiritual context, they have a very strong belief system, and the entire family is the way they spoke.
0: ईश्वर जी, जब समाज को पता चला आपके घर में, आपके जानने वालों में कि ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि छन छन के खबर आ रही थी, फिर अचानक जब स्मित का नाम आया, कैसे आपको पता चला, किस तरीके का

0: रिएक्शन आपने सुना, फिर थोड़ा बताइए हमें उस वक्त के बारे में।
1: पहले तो जब शोक तो लगा, मगर जो सक्सेस सफलता मिलती है ना तो बहुत खुशी हो जाती है ना। आज खुद को इतना लगा, उनसे लथपथ हो गया और उनके पे इतनी जवाबदारी थी, और जवाबदारी के साथ उसने पैसेंजर को भी संभाला और सफलता मिली, जो उपलब्धि मिली है। मैं आपको एक बात बोलूं कि
0: जी
1: ये अभी परिवार के बिरादरी का हिस्सा नहीं है। अभी जो स्मिथ है वो इंटरनेशनल हीरो हो गया है, और अपना हिंदुस्तान का सपूत बोलो तो हिंदुस्तान का बेटा है। अभी परिवार से बहुत उसका दर्जा ऊंचा हो गया है, समाज से बहुत दर्जा ऊंचा हो गया है, और 180 आदमी को अपनी ड्यूटी पूरी करके जो उसने कार्य किया है, ये बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि भाई आपको उस पुरस्कार दे के उसका ऑनर करना चाहिए, और हो सके तो इंटरनेशनल में नोबल प्राइज भी देना चाहिए, क्योंकि 180 आदमी का जान बचाना, 27 आदमी बच्चे थे, ये हीरो,
0: नो,
1: इसे नोबेल
0: अनडाउटेडली
1: प्राइज
0: इज अ
1: देते
0: हीरो,
1: हैं
0: एंड इन
1: हीरो।
0: फैक्ट दैट कॉल इज गोइंग अप फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स, द फैक्ट दैट ही शुड गेट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बट ईश्वर भाई, एक चीज़ और, क्योंकि जब मैं उनके पिताजी को आज शाम को सुन रही थी, उन्होंने हमसे जब बात की, भूपेंद्र भाई ने, तो उन्होंने एक बड़ी सटीक बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पालन पोषण किया जाता है किसी बच्चे का, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि एक ऐसे सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करे, वो कैसे रिएक्ट करे। तो उन्होंने भी आजकल के जो यूथ हैं, जो जेंजी हैं, उनको कहा कि भाई एक आपको कल्चरली रूटेड होना चाहिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में?
1: अभी ऐसा नहीं मैडम, सब सबका अपना दृष्टिकोण होता है, मगर मेरी जो थिंकिंग है, इंडियन अपना वर्ल्ड के लेवल में बात करता हूँ कि जो उसने जो काम किया है, जो मेहनत किया है, जो समय सूचकता से काम किया है, और जो उसको यश मिला है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके विचारों में हम बात कर सकते हैं, मगर बाकी परिवार समाज ओ आज आज उसका दर्जा बहुत बड़ा है, बस इतना ही बोल सकता हूँ।
0: अक्षय टेरेस, यू नो, टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन यू आर अंडर अटैक, दैट सेज अ लॉट अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन दैट स्मिथ इज। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर इंटरेक्शंस विद हिम, वेदर यू हैव एनी सच मेमरीज विच यू नो विच मेड यू बिलीव दैट येस, हियर इज अ पर्सन हु हैड शोन सच टेंडेंसीज, यू नो, ऑफ बींग वेरी फर्म, रियली हैविंग दैट रिजॉल्व इन मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस।
2: I think the profession itself demands great presence of mind, and he's the prime example now of putting duty before self. So I think that's the very, very the kind of character that he's shown is such a testimony of the person that he is. And I think we, as I said in some of the other interviews as well, we didn't expect any less from him. It didn't come as a surprise that he put 174 lives. He put his life on the line to save 174 lives. So yeah, it didn't come as a surprise to us. I think we all expected this out of him, and he's lived up to our expectations and probably exceeded expectations as well. So that's the kind of man that he always has been.
0: ईश्वर भाई, अभी जो आपको लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ स्मिथ, उनके फैमिली क्या कहेंगे, जो लोग देश में ही नहीं, दुनिया भर में आप तो सब लोग देख रहे हैं स्मिथ की कहानी को।
1: अभी उसको परिवार के, अभी कल मैं आप कल की बात करता हूँ, मैंने फोन किया था उपेंद्र भाई को, तो बोलता ईश्वर भाई, जब तक उनकी सासू को भी फोन किया था, अवर साहब इनको फोन किया था, उनके ससुर जयसुख भाई को भी फोन गया था, तो वो बोलता है ईश्वर भाई जब तक फोन नहीं आवे तभी हमको शांति नहीं है, हम बहुत उलझन में है, और जब फोन आया कभी अभी ट्रीटमेंट ही चल रहा है, तो फैमिली का रिएक्शन ये था और हिंदुस्तान का फेवर ये था कि भाई हमारा हिंदुस्तान का पायलट ने कितना जबरदस्त काम किया, और हमारे जैसे जो सोशल काम करते हैं उनका तो ये है कि ये भगवान का कोई आशीर्वाद था उस पर, और जो उसको उपलब्धि मिली है उसकी बदली में उनका आदर मान सम्मान बहुमान होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमारी गुजारिश है। हमारा बच्चा है और हमने उसको आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़े।
0: ईश्वर भाई आपकी, क्योंकि भूपेंद्र भाई से बात हुई है, उन्होंने कुछ बताया जब प्रधानमंत्री ने कॉल किया, पूरी फैमिली को कॉल किया, आज उन्होंने उसका जिक्र भी किया था जब वो फोन कॉल कर रहे।
1: हाँ वो बताया कि भी उपेंद्र भाई से बात किया, गीता से बात किया, अपना सोनल से बात किया और सबका समाचार उसको पूछा, बहुत अच्छा किया हो। और मैं बोलूं कि ये जो मित में जो थोड़ी ताकत है, हिम्मत है, तो ऊपर से आती है, इसमें नरेंद्र मोदी का भी साथ है। तो जो उनका जो रवैया है देश के प्रति, तो वो जुनून भी आता है, हिम्मत भी आता है और शक्ति भी मिलती है। तो नरेंद्र मोदी का भी उनका जो हिम्मत पीछे से हिम्मत मिलती है, वो उनकी योगदान है, ऐसा मैं समझता हूँ।
0: ईश्वर भाई एंड अक्षय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग, एंड आई सस्पेक्ट इन द डेज टू कम व्हेन एंड यू नो व्हेनेवर द फैमिली डज कम बैक, इट्स गोइंग टू बी एन इक्वली प्राउड एंड इक्वली इमोशनल मोमेंट फॉर यू एज वेल अलॉन्ग विद हिज इमीडिएट फैमिली। थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: थैंक यू सो मच।
0: Okay, let's turn now to battleground Punjab, where fresh signs of unease are emerging in the Congress camp. Amrinder Raja Waring has stepped down as state Congress chief, but will this make the going easier for the party, or will it actually make it more muddled? An excerpt from Politics Zindabad, and of course, you can watch the full show over the weekend. The chief of the Congress in this state, Amrinder Raja Waring, has stepped down. By the way, the official announcement wasn't made, but he changed his Twitter bio to former president, former PPCC president on his own. And this has happened just months ahead of the assembly election in the state. Now, the key question remains, who will replace Waring at a time when the campaign heat has started to rise in the state? The party will have to strike a balance now, not just between the various camps within the Congress in Punjab, but also the various social groups in the state. While Waring came to Delhi to meet Rahul Gandhi, the BJP naturally is not losing this opportunity to take a swipe at the infighting.
3: Formally resignation diya aur unhone bahut pyar diya aur Punjab ke bare mein kya halaat hai aur kis prakar se kya ho raha hai aur kya hame karna chahiye, ये राहुल जी ने जानकारी ली।
4: और राजे पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल, हुण कोई नवा आऊगा उहदे पिछे लड़नगे भी इहनूं लाउणा है। कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे कट्ठे नहीं हो सकते, हां आपदे प्रधान नूं लाउण वास्ते सारे कट्ठे हो जांदे ने, भी सारे कट्ठे हैं जी।
0: ओके, सो लेट मी आस्क जैनेंद्र, बिकॉज़ ही स्पोकन टू वरिंग एट लेंथ, हु इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट? फर्स्ट टेल अस, व्हाई डिड ही गो, व्हाई वाज ही रिमूव्ड?
5: देखिए पंजा, ये उन्हें उनका जाना जून में ही डिसाइडेड हो गया था, जब चन्नी बाजवा और सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो दिल्ली में उन्होंने कन्वे किया कि हम राजा की लीडरशिप में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसके बाद अजय माकन की कमेटी बनाई गई, हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि चन्नी को हमें प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को लगा कि पिछली बार चन्नी को बनाने की वजह से दलित वर्सेज जटसिक का एक इक्वेशन बन गया था। चन्नी खुद सीएम रहते अपने दो सीटों से चुनाव हार गए थे, तो चन्नी के साथ जाना सेफ नहीं, चन्नी को कैंपेन कमेटी चीफ बनाते हैं और सिंगला को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, विजय इंदर सिंगला को। ये बात जब आखिरी मोमेंट में कन्वे की गई केसी वेणुगोपाल के द्वारा चन्नी को और अदर सीनियर लीडर्स को, तो बताया जाता है कि चन्नी ने वीटो कर दिया और उन्होंने साफ कहा कि नहीं, सिंगला को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अध्यक्ष मुझे बनाइए। जब ये बात राहुल गांधी को कन्वे की गई तो उन्होंने कहा कि फिर स्टेटस को रखते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। और इसके बाद स्थिति और हाथ से बिगड़ी, इतनी बिगड़ गई कि भूपेश बघेल जो अंपायर की भूमिका में थे, इंचार्ज थे, उनका विरोध होने लगा,
0: अंपायर को ही रेड कार्ड कर दिया।
5: और एग्जैक्टली, और फिर उनके
6: तो मर्सिडीज गाड़ी भी मिली गई थी।
0: कहां
6: ऐसी चर्चा थी कि भूपेश बघेल को वो जब पंजाब के जब वो इंचार्ज बनाए गए थे तो उनको संभवतः उन्हीं के जो जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिनको उन्होंने एम्पायर करना था, शायद उन्हीं से उनको एक मर्सिडीज गाड़ी भी मिल गई थी। एंड दैट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई his neutrality came under question.
0: But very interesting, I have to say that Bhupendra almost 3 weeks ago had predicted that Waring is going to go as the chief of the Congress in Punjab. So now also tell us who's
6: sometimes we get it right.
0: who's going to become the new
6: so
0: chief?
6: The political logic that I have been given to understand is this, that the Congress high command believes that it's best if you make a Hindu face, a non-Sikh face, you make that Hindu face the Pradesh Congress president. The feeling is that if you have that logic, then who will be the chief minister should that situation arise, which is bound to be, let's say, a Sikh person? That question remains open. You create a mechanism much like what was tried in Kerala, where all your Lok Sabha faces are given the responsibility of campaigning. They're not asked to campaign, they're not asked to contest. So, you know, Wadding is out of the race. Sujinder Randhawa then is out of the race, all of whom are looking at themselves as potential, you know, chief ministerial candidates or people with who are in a position to control the levers. My own understanding is this, that I think none of these names that we're talking about, I spoke to Mr. Singla some time back, and I was asking him if he had been sounded out and he was on the campaign trail. The sense I get by speaking to, from Mr. Bajwa to Mr. Randhawa to Mr. Singla, is that there is one more card which is still to play out. And that card is a potential return of Captain Amrinder Singh to the Congress party. Now, I'm not suggesting that Amrinder Singh is going to be the chief ministerial candidate, but the potential of Amrinder Singh coming back to the Congress party is very, very high. And once that happens, if that were to happen, maybe by the end of the year, I think this question that you're raising, that who will be the chief ministerial candidate, will get answered then.
0: And who will be the state president?
6: I think state president at this stage is a toss-up between Mr. Singla and Pargat Singh.
0: Okay.
6: His name, Pargat Singh's name has also been pronounced.
7: He is a Jatsik and a former hockey captain, known in the entire Punjab. He's a pan-Punjab face. And the biggest thing is that he's not in the good bhaji. He's not with the Channi, neither with the Channi nor with the Raja.
0: क्योंकि विजय सिंगला के ये कहा जा रहा है कि आप एक हिंदू को बना दीजिए तो फिर एक जट सिख जो है आपके सीएम फेस हो जाएंगे, कैंपेन कमेटी के चीफ आपके ऑलरेडी चन्नी हैं जो कि दलित
7: पंजाब में अगर आप जट सिख को नहीं बनाएंगे तो आप अकालीज के लिए आप खुला मैदान छोड़ देंगे जट सिख बूट के लिए, नंबर एक। और दूसरा ये है कि आपने सुनील जाखड़ को तब बनाया था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और वो फेस थे पार्टी का, वो जट सिख थे, इसलिए सुनील जाखड़ और सुनील जाखड़ ही हिमसेल्फ इज ए जाट और उनका कद भी बड़ा था। सिंगला इज ए अर्बन फेस, उसको पंजाब के गांव में एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, इसलिए बनाना तो इनको पड़ेगा जटी लॉजिकली, बाकी किसी को बना दे कांग्रेस पार्टी।
5: ऐड करना चाहता हूँ कि प्रगट सिंह वाकई में उन पोजिशनिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो अकाली दल से आए हैं और कांग्रेस लीडरशिप के करीब नहीं है, उनके कम वकील हैं राहुल गांधी के आसपास, तो इस वजह से शायद उनकी दावेदारी। और एक ये लॉजिक भी है कि जट सिख को हटाकर जट सिख को बनाने से आप गेन क्या करते हैं, तो ऐसे में सिंगला जिस एरिया से आते हैं,
0: इनके खिलाफ गया क्या, वरिंग के खिलाफ क्या फैक्टर गया?
5: मैं आपसे वही कह रहा था, वर्डिंग सब सीनियर लीडर्स के आंखों के कांटे बन गए थे, इनकी जो कार्यशैली थी वो इन सब लोगों को असहज कर रही थी।
0: तो हरी कोई कांटा बन जाता है ना, जब कैप्टन थे तो वो कांटा बने हुए थे, जब वरिंग थे वो कांटा बन गए, सिद्धू कांटा बन गए, कौन कांटा नहीं।
5: बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब की पॉलिटिक्स में जो अकाली दल कल्चर है कि जो पिछला उम्मीदवार होता है पिछले चुनाव का वो हल्का इंचार्ज अकाली दल में बनाया जाता है, वो कल्चर सभी पार्टियों में है। तो कांग्रेस के भी जो पिछले चुनाव के हारे हुए उम्मीदवार थे वो अपने आप को अपने इलाके का, अपने विधानसभा का इंचार्ज मान के चल रहे थे। जब राजा वडिंग प्रदेश अध्यक्ष बने वो यूथ कांग्रेस बैकग्राउंड से आए हुए, उनके अपने नेता हर इलाके में है, उन्होंने अपने करीबियों को बढ़ाना शुरू किया, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाया। पुराने उम्मीदवारों को लगा कि शायद हमारी टिकट नहीं मिले, इसकी वजह से उन्होंने राजा के खिलाफ एक लॉबिंग शुरू की और फाइनली वो राजा का विकेट लेकर के माने।
0: बिकॉज यू नो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एज एन आउटसाइडर, व्हेन आई लुक एट राजा वडिंग इन द लास्ट 5 years आफ्टर द आम आदमी पार्टी केम टू पावर, चरणजीत सिंह चन्नी वाजंट इवन देयर, ही वाजंट इवन इन पंजाब। आई रिमेंबर ही वेंट अवे टू राइट हिज पीएचडी और समथिंग,
8: ही वेंट अवे टू कनाडा,
0: ही वेंट अवे टू कनाडा एंड देन ही रोट अ पेपर अपेरेंटली अबाउट हाउ द कांग्रेस इज नॉट डूइंग वेल इन पंजाब एंड देन यू कम बैक, यू लूज बोथ योर सीट्स एंड देन यू गेट योर वे,
9: ही गेट्स अ वीटो पावर।
0: Waring is the person who was there, who was carrying out the campaign, who was doing all these sabhas, who was doing Bharat Jodo Yatra, and then 4 months before the election, you kick him out.
9: Should not forget the Lok Sabha election results, where the Congress party under him won 7 Lok Sabha seats. And Aam Aadmi party was reduced to just 3.
0: Yeah.
9: And interestingly, you talked about Kanta. So I'm saying, Kanta se Kanta nikalne ka hai to hai ye Congress party mein. राजा को हटा के फिर एक राजा को हटाया, दो राजा, राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, उसके बाद अब राजा इनको हटा दिया, और तब आप राजा को हटा के चन्नी को लेके आए थे जो दोनों अपनी विधानसभा सीट हार गए, और जो राजा आपने आपको 7 लोकसभा सीटें जितवाई आप उनको हटा रहे हैं फिर से। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने फैसला सही किया, इस पर भी एक डिस्कशन होना चाहिए।
8: बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे
0: राजा के खिलाफ सारे नेता, और आपने कैप्टन को हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पे कैप्टन को हटाया, फिर सिद्धू भी चले गए, कैप्टन भी चले गए, फिर आपको क्या
8: हासिल
10: हुआ? प्रॉब्लम
8: से तो कांग्रेस 2022 हारी
0: नहीं, और क्योंकि कांटे की बात हो रही है, आई वांट टू एक्चुअली प्ले आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक दैट भगवंत मान हैड ऑन दिस एंटायर फाइटिंग दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द कांग्रेस पार्टी।
4: और राजे पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल, हुण कोई नवा आऊगा उहदे पिछे लड़नगे भी इहनूं लाउणा है। कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे इकट्ठे नहीं हो सकते, हाँ आपदे प्रधान नूं लाउण वास्ते सारे इकट्ठे हो जांदे ने, भी सारे इकट्ठे हैं जी।
0: So Bhagwan Mann has predicted that now everyone is going to get after the life of whoever is going to be the next BPCC president. But very quickly, Akhilesh, I want to ask, any chance that Raja Waring, any talks happening? Because there seems to be a great affinity that the BJP has for ex-congressmen, right from Vinod Jakar to Captain, maybe to this new Raja.
9: Not with him, but maybe with Channi. There's a buzz that Channi is in talks with the BJP, but I don't know whether it's true or not. Hmm. But it's just a small buzz there. But BJP is very keenly watching what's happening within the Congress party. Hmm. What my sources in the BJP are telling me that there's a view within the party that now we should not delay this alliance with the Akali Dal anymore.
0: It's happening. They are going to
9: tie up with Akali. It should happen.
8: Yes, yes, yes.
9: But they feel that it should happen because the internal survey of the BJP says that if BJP and Akali Dal comes together, they are going to win 80 seats. Which is a big number in the assembly. Well, this is the internal survey saying.
0: Yeah. And 80 almost as much as Aam Aadmi Party. Just
9: they had won 93, I think. Yes. So,
10: yeah. See, but all this survey and all this deliberation of the BJP is taking place or was taking place at a time when the Congress was looking as a house completely divided. Because all these leaders that we're talking about, everybody was looking for how many seats will they be able to get for their supporters. If the Congress gets its act right, the Congress is clearly going to be the front runner.

0: मेरे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
6: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal.
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
7: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
8: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टेन, अनरिटन। एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द कॉन्वर्सेशन एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 टू डीकोड द शिफ्ट्स, रीड्रॉ पॉसिबिलिटीज। NDTV World Summit 2026, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi. India's most powerful defense voices come together.
9: Warfare ke taur tareeke bhi badal rahe hain kyunki nayi technologies ka bhi itni tezi ke sath vijad ho raha hai. Aise mein is tarah ke aayojan ki zarurat main samajhta hu ki aur adhik badh jati hai.
8: One stage, one defining conversation. NDTV Defense Summit 2026. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watch and Prime 5 with me, Marisha Sager. What's happening?
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
0: Rang rang rang rang rang rangine rang rangine re, dekho kaise bhi ho tin rang bana rahe,
1: bojo paints rang bana rahe.
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टेन अनरिटन। एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द कॉन्वर्सेशन एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 टू डीकोड द शिफ्ट्स, रीड्रॉ पॉसिबिलिटीज। NDTV World Summit 2026, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।

0: Captain Smith Machar's father, Bhupendra Bhai, speaks exclusively to me on NDTV. Says his son's courage came from a determination to ensure no passenger lost their life. Chorus grows to honor Captain Smith in India. That full interview is coming up. Day three, but no name of the Omani co-pilot who attempted the FZ-1073 hijack. Israel and UAE called the incident a terror attack. Omani to be interrogated by the UAE. Dual citizenship claim ruled out by investigators. He is from Oman. He is an Omani citizen. CJP launches big protest in Mumbai, demands poll body chief Gyanesh Kumar's resignation. Abhijit Dibke says we'll hold talks on calling off the stir only after the CEC's exit. Counter-protest against CJP at Mumbai's Shivaji Park. Golden glory for India, non-stop. India beat China in the finals at the Asian Games. India women's hockey team directly qualifies for LA 2028 Olympics. Indian contingent bags 6 gold medals in a single day. And coming up, heroism, humanity and Hanuman. All of that was part of that incredible story. And it is no surprise that Captain Smith Machar's father, Bhupendra Bhai, has spoken to nobody else but me right here on NDTV. That full exclusive conversation with the father of the global hero pilot is coming right up. Also, day three and the co-pilot, the terrorist from Oman, still is in the shadows. We still don't have his name, but we've got a little bit more information about his antecedents. What are they really hiding? Are there some wheels within wheels? I'm going to answer the question that I know you have on your minds tonight. Let's begin with our big story tonight. And the breaking story that we have right now is an update on Captain Smith Machar's health, which is something that everyone is concerned about. Our political team is in touch with medical services in the United Arab Emirates. Captain Smith, I'm happy to inform you, is stable and recovering. Sources have told NDTV that Smith Machar suffered massive blood loss in the attack in the cockpit on board that flight. He has very deep, grievous wounds, cuts on his hands. There is a long road to recovery and he won't be back to flying anytime soon. It's going to take at least a few weeks of recuperation. Foreign Affairs Editor Aditya Rajkol is live with me for more on this. Aditya, it is good to hear that he is on the road to recovery, but his wounds are serious. The doctors say that it is going to be a while before he's out of the hospital and even a longer time before he gets back to flying. But the good news is he is stable and recovering, Aditya.
1: Well, that's right, Shiv. It's a good news indeed. A sigh of relief for the entire country, not just India, but in fact, Israel as well. You know, both these countries and, you know, many people all across the globe have been praying. There have been prayers being held in several temples all across India. People have been waiting to hear from Captain Smith. And this morning, Prime Minister Narendra Modi and Captain Smith spoke to each other for nearly 10 minutes. A very powerful, a very emotional conversation between Prime Minister Modi and Captain Smith. But now the road to recovery may be long, but the way the spirit of Captain Smith has been displayed in his words, in his courage that was displayed in the cockpit, it's clear that he's eager to go back to his lovely cockpit. He's been a pilot for 17 years and he would continue that journey very well. But as of now, he's out of danger. He's stable, but certainly these are very grievous injuries and that's why he has to be in medical supervision in the military hospital in Abu Dhabi for a while. And then there will be a grand reception planned here in India where he will, of course, interact with Prime Minister Modi as well as External Affairs Minister Jaishankar.
0: Thanks, Aditya, for that. We hope to hear even more good news. And today on the NDTV network, a big exclusive. The father of Captain Smith Machar has spoken to nobody else, but he agreed to speak to me here on the network. At 35,000 feet inside a cramped, locked cockpit, there is really no escape. There is no calling for backup. There is only training instinct and raw human grit. Captain Smith Machar, the Indian pilot, fought off the Omani co-pilot attacker, known to be a radicalized man, wrestled control of the aircraft and brought 174 passengers safely back down to earth. And I asked none other than pilot Smith's father himself what his son has said to him and how he feels. Upendra Bhai Machhar. He is the father of hero pilot Smith Machhar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai, unki tabiyat kaisi hai, unki abhi jo video samne aaya hai Prime Minister ke saath baatcheet karte hue saaf nazar dikhai deta hai ki wo theek hai. Aap एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
2: जैसा आपने देखा वीडियो में वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम उनके वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
0: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
2: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मिथ अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे.
0: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस है इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
2: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
0: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
2: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
0: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
2: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले.
0: जी, और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा. डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा. तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया. और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था. तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात.
0: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
2: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
0: जी,
2: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता है मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
0: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
2: वो तो वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
0: और
2: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
0: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
2: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी हो।
0: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी। क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
2: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है। हम लोग तो एक आप बोलेंगे साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी है, और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है। मेरे हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था कि प्राउड मोमेंट भले है, लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
0: जी बिल्कुल। और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मिथ को, वो बिल्कुल सही है। पूरा नेशन, एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
2: सही है, सही है। वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियो, और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका के इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और ये सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे को विश्वास है कि वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
0: भूपेंद्र भाई, स्मिथ की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी? सर
2: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही, और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होगा।
0: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट।
2: हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे और स्मिथ की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे, और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते, हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी, और डर ना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस। कैसे भी करके
0: जी
2: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
0: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इसराइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इसराइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
2: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है, और जीवन जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया ऐसा प्रूव हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
0: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं? अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
2: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
0: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही काम करेंगे आगे जाकर? भूपेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, आपके वरीज भी हैं, आप कंसर्न भी हैं, क्या आपको लगता है उनको वापस आना चाहिए भारत?
2: वो काम शायद जहां कर रहा है वहीं करेगा।
0: इसको लेकर जो इम्पैक्ट होगा एविएशन पर, भूपेंद्र जी थोड़ा डिटेल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कॉकपिट में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेकर, टेरर लेकर, एविएशन को लेकर असर पड़ेगा? अभी
2: वो अपनी कंपनी का सब लोग अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ऐसा चीज बहुत सालों में एक बार होता है और वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके लिए जो भी चौकसाई करनी होगी वो कंपनी वाले करेंगे जरूर।
0: एक एक बात बताइए भूपेंद्र जी, सारा दुनिया आपका आपके बेटे को जानता है, अब उनका नाम पूरा रोशन हो गया है, लेकिन जो ओमानी को पायलट था जो स्मिथ के साथ

0: ऑपरेट कर रहा था इस फ्लाइट में, उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट है ये, इसके बारे में आपका क्या सोच है?
1: मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
0: किसी ने क्या आपको ब्रीफ किया है कि क्या हुआ था उस कॉकपिट में? किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको क्या ब्रीफ किया है?
1: नहीं, मैं ब्रीफ करूंगा मेरे बेटे के साथ ही, जो भी समझना है पूरा उनके साथ ही।
0: जो ग्लोबल मीडिया में आपके बेटे के बहादुरी को लेकर जो मीडिया स्टोरीज चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र जी? क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू के पहले, स्मिथ मच्छर जो है एक इंडियन पायलट नहीं है, अब एक वो ग्लोबल एक बहादुरी के एक आइकॉन है ऑलमोस्ट। क्या ये सही है? ही इज अ ग्लोबल सिटीजन नाउ सर।
1: ऊपर वाले की मेहरबानी है।
0: क्या आप सिटीजन्स को कुछ बोलना चाहेंगे एज द फादर ऑफ स्मिथ मच्छर, द मोस्ट फेमस इंडियन पायलट ऑफ आर जेनरेशन सर? उन्होंने जो किया है इंडिया को प्राउड किया है, क्या सिटीजन्स को कुछ बताएंगे? अब बहुत सारे यंग जेंजी भी देख रहे हैं अभी, स्मिथ जो है 38 साल के हैं, कुछ मैसेज है आपका?
1: मैं खाली एक स्मिथ का एक आपको नेचर और हमारा फैमिली का जो चलने का रास्ता है वो मैं खाली अपने जेंजी को खाली बोल सकता हूँ कि जो रिस्पेक्ट आज स्मिथ फादर मदर को दे रहा है और जिस तरीके से अपने फैमिली के साथ वो अच्छा लाइफ जी रहा है, तो जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उतना ऊपर वाला हेल्प करेगा जब भी तकलीफ आएगी। तो मैं यंगस्टर्स को जो अपग्रोन है अभी, जो नया लाइन में जाना चाहते हैं या अभी उनके हाथ में कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, तो एक ही बात बोलूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी है ना, वो हमेशा जीतती है और उसी को पकड़ के चलना वही अपने लिए सक्सेसफुल रहेगा, तो आगे अपना इंडिया में सब जन अच्छी तरह से रह पाएंगे।
0: जी बिल्कुल। और
1: धन्यवाद। अभी
0: भूपेंद्र जी, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, एक जो मोस्ट वायरल कमेंट है इस इंटरेक्शन में प्रधानमंत्री के साथ, वो था हनुमान चालीसा को लेकर। क्या स्मिथ बहुत रिलीजियस माइंडेड है, बहुत विश्वास रखते हैं हनुमान जी में, आपके परिवार में, इसके बारे में बताइए सर।
1: खाली एक ही लाइन में बोलूंगा कि हम लोग के घर में एक सिस्टम है कि एक सोते टाइम हम लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और लाइट ऑफ करते हैं, और सुबह स्मिथ ने एक अपने छोटे बच्चे को रोज सुबह मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा बोलने का काफी दिनों से चालू किया है, तो हमको खुशी है हम लोग के घर में इस तरीके का स्वभाव है सबका। ठीक है जी
0: भूपेंद्र जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We are so proud of Smith Machar. Thank you very much. We wish you the very best. We wish him a speedy recovery. And I know you are looking forward to meeting him again after he has just spoken to the Prime Minister. Thank you very much. Bhupendra Machar, father of the hero Indian pilot Smith, speaking first in exclusive here on NDTV. Now, viewer, India has no publicly announced direct role in the investigation into the Fly Dubai airplane terror incident. But I want to say tonight that India cannot afford to be on the sidelines and let other countries carry out this investigation. Now, hear me out. Let me explain why I'm saying this. Now, Captain Smith Machar is an Indian citizen. He's an Indian national. He was grievously assaulted by his Omani co-pilot and airline colleague, a man Israel believes was radicalized and intent on bringing down the aircraft 3 days ago. Now, whether the intention was to crash it or use it against a ground target remains to be established, but an Indian national was attacked. And India has a direct stake, therefore, in the answers of this investigation. Saudi Arabia, the UAE and Israel are investigating. The country over which the attack happened, which is Saudi, the country from which the aircraft departed, which is UAE, and the country it was headed to, which is Israel. Now, India is respecting those jurisdictions. That is understandable. But respecting jurisdiction cannot mean outsourcing responsibility. India has close relations with all these three countries, Israel, the UAE, and Saudi Arabia. It also has close relations with Oman, where the co-pilot is reported to be from. Now, these relationships must secure meaningful Indian engagement, regular access to finding

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझ पेंट रंग बना रहे।
2: यू वॉच अस व्यूअर, यू ट्रस्ट अस, एंड नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू। Vote for NDTV at the ITA Awards 2026. You've got that power. Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन। स्मॉल
3: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: When others are warming up, I'm raring to go.

0: everyone is getting ready for the evening. A few pictures, a little waiting. Inside, the stage is set.
1: Well, you've heard of clubbing in dark rooms, but you've ever heard of bhajan clubbing? I'm currently present at one such event, and honestly, I'm also very curious to see what it looks like. This is what it's looking like before the event. The big question, of course, is who's going to be here at the event? Is it going to be youngsters? Is it going to be some people from the old generation? What are they going to be listening to? Is it going to be songs? Is it going to be bhajans? What's it going to look like? This is what it's looking like right before the event. We are curious to find out what exactly bhajan clubbing holds for us. Come, let's find out.
2: दोनों हाथ उठा के मेरे साथ गणपति बप्पा मंगल मूर्ति
0: ऑन स्टेज केशवम देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस साउंड डिवोशनल रॉक फॉर लविश शीतल द डिवोशनल पार्ट केम फर्स्ट.
3: मैंने अपनी शुरुआत श्रीगंगानगर राजस्थान से की और मैं जागरण करता था बचपन से ही, तो माता रानी के जागरण चौकी.
0: फॉर प्रकृति टू दिस म्यूजिक वाज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप.
4: बेसिकली मेरे जो घर का थोड़ा माहौल था वो थोड़ा स्पिरिचुअल रहा है बचपन से ही, तो मैं बचपन से ही मतलब भगवान जी के भजन गाती थी और मतलब हमारे गुरु जी के मंदिर में मैं प्रोग्राम करती थी. वही मतलब बचपन से वो माहौल रहा है.
0: They had sung bhajan.

से ढाई साल पहले हमारे दिमाग में आया कि इन दोनों जो म्यूज़िक के हमारे ये लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे स्टाइल्स हैं, रॉक स्टाइल है और देसी है, इनको अगर हम कंबाइन करें, डिवोशनल को भी तो रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि एक नया रूप, एक नया रंग आए।

0: But a new sound doesn't arrive with an audience attached.
1: कई इवेंट्स हमने ऐसे किए हैं जहाँ पे मुश्किल से हमें 10 लोग सुनने आए हैं. वो जो एक डेढ़ साल था वो लोगों को ये समझाने में हमें टाइम लगा कि हाँ डिवोशनल म्यूजिक इस तरीके से भी हो सकता है, ये म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे भी किया जा सकता है.

हमने उसमें डिवोशनल म्यूजिक में रॉक स्टाइल तो जोड़ा, लेकिन जो भजन की जो कहते हैं ना रूह है उसको ख़त्म नहीं किया, उसका जो फील है उसको वैसे का वैसे ही रखा, बस मॉडर्नाइज कर दिया।

0: मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ा करा, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम लाइफ में अटेंड करा है प्रेजेंट क्लबिंग।
1: एक्चुअली सब बढ़ती था, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आने में इंटरेस्टिंग था, चेंजेस के साथ जुड़ने का नया तरीका है, इम्प्रेसिव, पूरा ओवरऑल इम्प्रेसिव।

0: वॉज सो नाइस. लाइक मैंने इससे पहले भी फ्रेशर्स अटेंड किया और उसकी जो म्यूज़िक होता है उसके बाद आपका सर बस करता है, कानों में दर्द होता है, बट आफ्टर भजन क्लबिंग इतना स्मूदी फील हो रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है, एकदम फ्रेश हो जाता है ना मन, वो फ्रेशनेस आई है.
1: That evening, there was also seemingly an unexpected addition to the audience.
2: We were told that there might be some VIP moments right before the show, and we didn't know who exactly it could be, but we saw a lot of security arrangements happening.

0: मैं तो शॉक्ड हो गया था जब मैं सुन रहा हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सारे दोस्त मिल के हमने वो फ़ोन से बनाया था, वी लव यू मोदी जी। तो ये बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए।
1: प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ वाइब कर रहे थे, वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, वेरी ग्लैमरस एनवायरनमेंट।

0: Aditya, it is good to hear that he is on the road to recovery, but his wounds are serious. The doctors say that it is going to be a while before he's out of the hospital and even a longer time before he gets back to flying. But the good news is he is stable and recovering, Aditya.
1: Well, that's right, Shiv. It's a good news indeed, a sigh of relief for the entire country, not just India, but in fact, Israel as well. You know, both these countries and, you know, many people all across the globe have been praying. There have been prayers being held in several temples all across India. People have been waiting to hear from Captain Smith. And this morning, Prime Minister Narendra Modi and Captain Smith spoke to each other for nearly 10 minutes, a very powerful, a very emotional conversation between Prime Minister Modi and Captain Smith. But now the road to recovery may be long, but the way the spirit of Captain Smith has been displayed in his words, in his courage that was displayed in the cockpit, it's clear that he's eager to go back to his lovely cockpit. He's been a pilot for 17 years and he would continue that journey very well. But as of now, he's out of danger. He's stable, but certainly these are very grievous injuries and that's why he has to be in medical supervision in the military hospital in Abu Dhabi for a while. And then there will be a grand reception planned here in India where he will, of course, interact with Prime Minister Modi as well as External Affairs Minister Jaishankar.
0: Thanks, Aditya, for that. We hope to hear even more good news. And today on the NDTV network, a big exclusive. The father of Captain Smith Machar has spoken to nobody else, but he agreed to speak to me here on the network. At 35,000 feet inside a cramped, locked cockpit, there is really no escape. There is no calling for backup. There is only training instinct and raw human grit. Captain Smith Machar, the Indian pilot, fought off the Omani co-pilot attacker, known to be a radicalized man, wrestled control of the aircraft and brought 174 passengers safely back down to earth. And I asked none other than Pilot Smith's father himself what his son has said to him and how he feels. Upendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain, Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai? Unki tabiyat kaisi hai? Unki abhi jo video samne aaya hai, Prime Minister ke saath baatcheet karte hue, saaf nazar dikhai deta hai ki wo theek hai. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
2: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम उनके वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
0: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे, भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
2: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज मीट अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे.
0: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस है? इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
2: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
0: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?

0: जैसे जैसे हर माँ बाप का होवे सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे।
1: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
0: देखो देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
1: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
1: भूपेंद्र भाई, क्या स्मित हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
0: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
1: जी,
0: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
1: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे? फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे
0: वो तो वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
1: और
0: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
1: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
0: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है वो।
1: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी, क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
0: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम लोग तो एक आप बोलेंगे साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी है, और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है। मेरे हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था कि प्राउड मोमेंट भले है लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
1: जी बिल्कुल, और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मित को, वो बिल्कुल सही है, पूरा नेशन एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
0: सही
1: है,
0: सही है, वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियो, और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका कि इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और ये सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे को विश्वास है कि वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
1: भूपेंद्र भाई, स्मित की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी सर?
0: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही, और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होएगा।
1: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट,
0: हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे और

0: बीच की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी और डरना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस। तो कैसे भी करके
1: जी
0: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
1: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इसराइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इसराइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
0: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है और जीवन जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया ऐसा प्रूव हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
1: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
0: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
1: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही काम करेंगे आगे जाकर? भूपेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, आपके वरीज भी हैं, आप कंसर्न भी हैं, क्या आपको लगता है उनको वापस आना चाहिए भारत?
0: वो काम शायद जहां कर रहा है वहीं करेगा।
1: इसको लेकर जो इम्पैक्ट होगा एविएशन पर, भूपेंद्र जी थोड़ा डिटेल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कॉकपिट में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेकर, टेरर लेकर, एविएशन को लेकर असर पड़ेगा?
0: अभी वो अपनी कंपनी का सब लोग अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ऐसा चीज बहुत सालों में एक बार होता है और वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके लिए जो भी चौकसाई करनी होगी वो कंपनी वाले करेंगे जरूर।
1: एक बात बताइए भूपेंद्र जी, सारा दुनिया आपका आपके बेटे को जानता है, अब उनका नाम पूरा रोशन हो गया है, लेकिन जो ओमानी कोपायलट था जो स्मिथ के साथ ऑपरेट कर रहा था इस फ्लाइट में, उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट है ये, इसके बारे में आपका क्या सोच है?
0: मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं।
1: किसी ने क्या आपको ब्रीफ किया है कि क्या हुआ था उस कॉकपिट में? किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको क्या ब्रीफ किया है?
0: नहीं, मैं ब्रीफ करूंगा मेरे बेटे के साथ ही, जो भी समझना है पूरा उनके साथ ही।
1: जो ग्लोबल मीडिया में आपके बेटे के बहादुरी को लेकर जो मीडिया स्टोरीज चल रहे हैं उसको लेकर आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र जी? क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू के पहले, स्मिथ मच्छर जो है एक इंडियन पायलट नहीं है, अब एक वो ग्लोबल एक बहादुरी के एक आइकॉन है ऑलमोस्ट, क्या ये सही है? ही इज अ ग्लोबल सिटीजन नाउ सर।
0: ऊपर वाले की मेहरबानी है।
1: क्या आप सिटीजन्स को कुछ बोलना चाहेंगे एज द फादर ऑफ स्मिथ मच्छर, द मोस्ट फेमस इंडियन पायलट ऑफ आर जेनरेशन सर? उन्होंने जो किया है इंडिया को प्राउड किया है, क्या सिटीजन्स को कुछ बताएंगे? अब बहुत सारे यंग जेंजी भी देख रहे हैं अभी, स्मिथ जो है 38 साल के हैं, कुछ मैसेज है आपका?
0: मैं खाली एक स्मिथ का एक आपको नेचर और हमारा फैमिली का जो चलने का रास्ता है वो मैं खाली अपने जेंजी को खाली बोल सकता हूँ कि जो रिस्पेक्ट आज स्मिथ फादर मदर को दे रहा है और जिस तरीके से अपने फैमिली के साथ वो अच्छा लाइफ जी रहा है, तो जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे उतना ऊपर वाला हेल्प करेगा जब भी तकलीफ आएगी। तो मैं यंगस्टर्स को जो अपग्रोन है अभी, जो नया लाइन में जाना चाहते हैं या अभी उनके हाथ में कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, तो एक ही बात बोलूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी है ना वो हमेशा जीतती है, और उसी को पकड़ के चलना वही अपने लिए सक्सेसफुल रहेगा, तो आगे अपना इंडिया में सब जन अच्छी तरह से रह पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और
0: धन्यवाद। अभी
1: भूपेंद्र जी, आखिरी सवाल, एक जो मोस्ट वायरल कॉमेंट है इस इंटरेक्शन में प्रधानमंत्री के साथ वो था हनुमान चालीसा को लेकर, क्या स्मिथ बहुत रिलीजियस माइंडेड है, बहुत विश्वास रखते हैं हनुमान जी में, आपके परिवार में, इसके बारे में बताइए सर।
0: खाली एक ही लाइन में बोलूंगा कि हम लोग के घर में एक सिस्टम है ये एक सोते टाइम

0: You watch us, you trust us. Now your vote can speak for what we mean to you. Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism you trust. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the links, and cheer for NDTV.
1: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV, when it really matters. India's most powerful defense voices come together.
2: Warfare ke taur tareeke bhi badal rahe hain kyunki nayi technologies ka bhi itni tezi ke sath vijad ho raha hai. ऐसे में इस तरह के आयोजन की जरूरत मैं समझता हूं कि और अधिक बढ़ जाती है.
1: One stage, one defining conversation. NDTV Defence Summit.
3: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training. There's instinct and raw human grit. Captain Machar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp and prayed that no bad news should come.
4: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai? उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
5: जैसा आपने देखा वीडियो में वही चीज़ मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
4: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
5: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि

0: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct, and raw human grit. Captain Machar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft, and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp, and prayed that no bad news should come.
1: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smit Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है. क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मित अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए, साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई.
2: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए. तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है. तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
1: स्मित ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे, भूपेंद्र भाई आपको क्या बताया कल?
2: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मित अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया. मैं बोला वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे.
1: भूपेंद्र भाई, स्मित के जख्म कितना सीरियस है, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
2: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
1: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
2: जैसे जैसे हर माँ बाप का होवे, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है. और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
1: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
2: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले.
1: जी, और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा. डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, कि जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा. तो फिर उसके मन में

0: He hit me like
1: no.
0: So that's many times.
2: संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए, उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं इसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ।
3: स्मिथ मचार, अ मैन हु इज अ हाउसहोल्ड नेम बाय नाउ, एंड फाइनली द वर्ल्ड हर्ड हिम स्पीक टुडे व्हेन ही स्पोक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी. And this 9-minute, 52-second conversation is something that everyone across the world must hear, especially those in India. Not only because it helps you understand what happened inside the cockpit of that Fly Dubai flight, but also because it shows the clarity and conviction in the mind of Captain Machar. Driven by strong cultural roots, professional experience, and fortitude.
2: मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने घाव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एंजर में 17 साल से जा जुड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ, और मुझे पता चलता है यहाँ बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है. जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा, स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आगे, और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था.
4: पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं. और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की.
2: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा

0: बेहिसाबे। वो बोलते हैं ना किसी का भला करना, ये उनकी एक आदत है। जैसे कि मैं चार लाइन में आपको बोलूं कि बिछा सको तो फूल बिछाना, काटे बिछाना मस्ती को, लगा सको तो बाग लगाना, आग लगाना मस्ती को, जला सको तो दीप जलाना, तीर चलाना मस्ती को, पिला सको तो प्यार पिलाना, जहर पिलाना मस्ती को। ये इनका जीवन का ध्येय है। इतना सोबर, प्रभु के प्रति आस्था विश्वास का उसके पास कुदरती और मन से बहुत लगाव है। और उनकी फैमिली में उनके पिताजी जो है उपेंद्र भाई, माता, तो उन्होंने भी उसको बहुत साथ दिया उनकी जो इच्छा पूरी करने के लिए।
1: जी
0: और यहाँ समझो ना 10 साल से वो वहाँ रहता है, और उनको एक बड़ी लड़की है, एक छोटा लड़का है। और आपने बोला तो मैंने कहा,
1: बहुत
0: मगर
1: अच्छा
0: ये
1: बोला
0: जो
1: आपने
0: इश्यू है
1: ईश्वर
0: ना
1: भाई,
0: अभी,
1: बहुत अच्छा शेर भी
0: मैडम,
1: सुनाया
0: थैंक
1: आपने। पर मैं एक अक्षय अक्षय
0: यू
1: से भी
0: सर।
1: पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक द अदर एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली लाइफ दैट दे हैव इन मुंबई, इट वाज रियली हार्टनिंग द वे ही सेड दैट यू नो वी लिव इन अ फॉरेन लैंड बट वी आर नॉट अवे फ्रॉम आर कल्चर। इवन नाउ आई इंश्योर दैट इन द मॉर्निंग एज अ फैमिली वी सिट टुगेदर, वी प्रे टुगेदर। टॉक अस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट यू नो ऑफ देम अक्षय, एज अ फैमिली, द फैमिली सेटअप, द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो सोनल हिज वाइफ।
2: Absolutely. So, yeah, so we know them since the last 14, 15 years, and they're a very close-knit family. And he is the only son, and he's very, very close to his parents, his wife, and his daughter and his son. So, I mean, they're all a very close family. They're very religious. Even in the last 3 years, they had a Ganpati festival at their home. Even when they moved to Dubai, they had a Ganpati festival in Dubai as well. So yeah, the belief in God is there, and it's in the roots as well. So yeah.
1: You know, and it was so cool because the Prime Minister, when he said Jai Shri Krishna, let's talk a little bit in Gujarati, he said that I've taught my children Gujarati first and then I taught them anything else.
2: Absolutely. No. I completely agree. His daughter is about 9, and we've seen her grow up since the time she was born. And the roots that they have, they're pretty much in religious context as well, in spiritual context. They have a very strong belief system. And the entire family is the way they spoke. So, yeah.
1: ईश्वर जी, जब समाज को पता चला आपके घर में, आपके जानने वालों में कि ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि छन छन के खबर आ रही थी, फिर अचानक जब स्मिथ का नाम आया, कैसे आपको पता चला, किस तरीके का रिएक्शन आपने सुना, फिर थोड़ा बताइए हमें उस वक्त के बारे में।
0: पहले तो जब शोक तो लगा, मगर जो सक्सेस सफलता मिलती है ना, तो बहुत खुशी हो जाती है ना। आज खुद को इतना लगा, खून से लथपथ हो गया, और उनके पे इतनी जवाबदारी थी, और जवाबदारी के साथ उसने पैसेंजर को भी संभाला, और सफलता मिली, जो उपलब्धि मिली है। मैं आपको एक बात बोलूं कि
1: जी
0: ये अभी परिवार के बिरादरी का हिस्सा नहीं है। अभी जो मीत है वो इंटरनेशनल हीरो हो गया है, और अपना हिंदुस्तान का सपूत बोलो तो हिंदुस्तान का बेटा है। अभी परिवार से बहुत उसका दर्जा ऊंचा हो गया है, समाज से बहुत दर्जा ऊंचा हो गया है। और 180 आदमी को अपनी ड्यूटी पूरी करके जो उसने कार्य किया है, ये बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि भाई आपको उस पुरस्कार दे के उसका ऑनर करना चाहिए, और हो सके तो इंटरनेशनल में नोबल प्राइज भी देना चाहिए। क्योंकि 180 आदमी का जान बचाना, 27 आदमी बच्चे थे, ये हीरो।

0: No, undoubtedly he's a hero. And in fact, that call is going up from many quarters. The fact that he should get the highest civilian award. But Ishwar bhai, ek cheez aur, kyunki jab main unke pitaji ko aaj shaam ko sun rahi thi, unhone humse jab baat ki, Bhupendra bhai ne, to unhone ek badi sateek baat kahi. Unhone kaha ki jis tarike se palan poshan kiya jata hai kisi bacche ka, usse bahut fark padta hai ki ek aise situation mein wo kaise behave kare, wo kaise react kare. तो उन्होंने भी आजकल के जो यूथ हैं, जो जेंजी हैं, उनको कहा कि भाई एक आपको कल्चरली रूटेड होना चाहिए. क्या कहेंगे आप इसके बारे में?
1: अभी ऐसा नहीं मैडम, सब सब का अपना दृष्टिकोण होता है, मगर मेरी जो थिंकिंग है, इंडियन अपना वर्ल्ड के लेवल में बात करता हूं कि जो उसने जो काम किया है, जो मेहनत किया है, जो समय सूचकता से काम किया है और जो उसको यश मिला है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसके उसके इसके विचारों में हम बात कर सकते हैं, मगर बाकी परिवार समाज वो
0: अक्षय टेरस, यू नो, टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन यू आर अंडर अटैक, दैट सेज अ लॉट अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन दैट स्मिथ इज. टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर इंटरेक्शंस विद हिम, वेदर यू हैव एनी सच मेमोरीज व्हिच यू नो व्हिच मेड यू बिलीव दैट यस, हियर इज अ पर्सन हु हैड शोन सच टेंडेंसीज, यू नो, ऑफ बीइंग वेरी फर्म, really having that resolve in moments of crisis.
2: I think the profession itself demands a great presence of mind, and he's the prime example now of putting duty before self. So I think that's the very, very the kind of character that he's shown is such a testimony of the person that he is. And I think we, as I said in some of the other interviews as well, we didn't expect any less from him. It didn't come as a surprise that he put 174 lives, he put his life on the line to save 174 lives. So, yeah, it didn't come as a surprise to us. I think we all expected this out of him, and he's lived up to our expectations and probably exceeded expectations as well. So that's the kind of man that he always has been.
0: ईश्वर भाई, अभी जो आपको लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ स्मिथ, उनके फैमिली क्या कहेंगे, जो लोग देश में ही नहीं दुनिया भर में आप तो सब लोग देख रहे हैं स्मिथ की कहानी को?
1: अभी उसको परिवार के, अभी कल मैं आप कल की बात करता हूँ, मैंने फोन किया था उपेंद्र भाई को, तो बोलता ईश्वर भाई, जब तक उनकी सासू को भी फोन किया था, अवर्षा बेन को फोन किया था, उनके ससुर जयसुख भाई को भी फोन किया था, तो वो बोलता ईश्वर भाई, जब तक फोन नहीं आवे तभी हमको शांति नहीं है, हम बहुत उलझन में है. और जब फोन आया कि भाई अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फैमिली का रिएक्शन ये था और हिंदुस्तान का फेवर ये था कि भाई हमारा हिंदुस्तान का पायलट ने कितना जबरदस्त काम किया, और हमारे जैसे जो सोशल काम करते हैं उनका तो ये है कि ये भगवान का कोई आशीर्वाद था उस पर, और जो उसको उपलब्धि मिली है उसकी बदली में उनका आदर मान सम्मान बहुमान होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से. ये हमारी गुजारिश है, हमारा बच्चा है और हमने उसको आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़े.
0: ईश्वर भाई, आपकी क्योंकि भूपेंद्र भाई से बात हुई है, उन्होंने कुछ बताया जब प्रधानमंत्री ने कॉल किया, पूरी फैमिली को कॉल किया, आज उन्होंने उसका जिक्र भी किया था जब वो फोन कॉल कर रहे.
1: हाँ, वो बताया कि भी भूपेंद्र भाई से बात किया, गीता से बात किया, अपना सोनल से बात किया और सबका समाचार उसको पूछा, बहुत अच्छा किया हो. और मैं बोलूं कि ये जो मित में जो थोड़ी ताकत है, हिम्मत है, तो ऊपर से आती है, इसमें नरेंद्र मोदी का भी साथ है. तो जो उनका जो रवैया है, देश के प्रति, तो वो जुनून भी आता है, हिम्मत भी आता है और शक्ति भी मिलती है। तो नरेंद्र मोदी का भी उनका उनका जो हिम्मत पीछे से हिम्मत मिलती है वो उनकी योगदान है ऐसा मैं समझता हूँ।
0: ईश्वर भाई एंड अक्षय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग एंड आई सस्पेक्ट इन द डेज टू कम व्हेन एंड यू नो व्हेनेवर द फैमिली डज कम बैक इट्स गोइंग टू बी एन इक्वली प्राउड एंड इक्वली इमोशनल मोमेंट फॉर यू एज वेल अलॉन्ग विद हिज इमीडिएट फैमिली। थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: थैंक यू सो मच।
0: Okay, let's turn now to battleground Punjab, where fresh signs of unease are emerging in the Congress camp. Amrinder Raja Waring has stepped down as state Congress chief, but will this make the going easier for the party or will it actually make it more muddled? An excerpt from Politics Zindabad, and of course, you can watch the full show over the weekend. The chief of the Congress in this state, Amrinder Raja Waring, has stepped down. By the way, the official announcement wasn't made, but he changed his Twitter bio to former president, former PPCC president on his own. And this has happened just months ahead of the assembly election in the state. Now, the key question remains, who will replace Waring at a time when the campaign heat has started to rise in the state? The party will have to strike a balance now, not just between the various camps within the Congress in Punjab, but also the various social groups in the state. While Waring came to Delhi to meet Rahul Gandhi, the BJP naturally is not losing this opportunity to take a swipe at the infighting.
3: Formally resignation diya aur unhone bahut pyar diya aur Punjab ke bare mein kya halaat hai aur kis prakar se kya ho raha hai aur kya hame karna chahiye, ये राहुल जी ने जानकारी ली।
4: और राजे पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल, हुण कोई नवा आऊगा उहदे पिछे लड़नगे भी इहनूं लाउणा है। कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे कट्ठे नहीं हो सकते, हाँ आपदे प्रधान नूं लाउण वास्ते सारे कट्ठे हो जांदे ने भी सारे कट्ठे हैं जी।
0: ओके, सो लेट मी आस्क जैनेंद्र, बिकॉज ही स्पोकन टू वरिंग एट लेंथ, हू इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट? फर्स्ट टेल अस, व्हाई डिड ही गो, व्हाई वाज ही रिमूव्ड?
5: देखिए पंजा, ये उन्हें उनका जाना जून में ही डिसाइडेड हो गया था, जब चन्नी बाजवा और सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो दिल्ली में, उन्होंने कन्वे किया कि हम राजा की लीडरशिप में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसके बाद अजय माकन की कमेटी बनाई गई, हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि चन्नी को हमें प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को लगा कि पिछली बार चन्नी को बनाने की वजह से दलित वर्सेज जटसिक का एक इक्वेशन बन गया था। चन्नी खुद सीएम रहते अपने दो सीटों से चुनाव हार गए थे, तो चन्नी के साथ जाना सेफ नहीं। चन्नी को कैंपेन कमेटी चीफ बनाते हैं और सिंगला को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, विजय इंद्र सिंगला को। ये बात जब आखिरी मोमेंट में कन्वे की गई केसी वेणुगोपाल के द्वारा चन्नी को और अदर सीनियर लीडर्स को, तो बताया जाता है कि चन्नी ने वीटो कर दिया और उन्होंने साफ कहा कि नहीं, सिंगला को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अध्यक्ष मुझे बनाइए। जब ये बात राहुल गांधी को कन्वे की गई तो उन्होंने कहा कि फिर स्टेटस को रखते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। और इसके बाद स्थिति और हाथ से बिगड़ी, इतनी बिगड़ गई कि भूपेश बघेल जो अंपायर की भूमिका में थे, इंचार्ज थे, उनका विरोध होने लगा,
0: अंपायर को ही रेड कार्ड कर दिया।
5: और एग्जैक्टली, और फिर उनके
6: तो मर्सिडीज गाड़ी भी मिली गई थी।
0: कहा
6: ऐसी चर्चा थी कि भूपेश बघेल को वो जब पंजाब के जब वो इंचार्ज बनाए गए थे तो उनको संभवतः उन्हीं के जो जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनको उन्होंने एम्पायर करना था, शायद उन्हीं से उनको एक मर्सिडीज गाड़ी भी मिल गई थी। एंड दैट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई हिज न्यूट्रलिटी केम अंडर क्वेश्चन।
0: बट वेरी इंटरेस्टिंग, आई हैव टू से दैट भूपेंद्र ऑलमोस्ट 3 weeks अगो हैड प्रेडिक्टेड दैट वरिंग इज गोइंग टू गो एज द चीफ ऑफ द कांग्रेस इन पंजाब। सो नाउ ऑल्सो टेल अस हु इज गोइंग,
6: समटाइम्स यू गेट इट राइट,
0: हु इज गोइंग टू बिकम द न्यू चीफ।
6: सो द पॉलिटिकल लॉजिक दैट आई हैव बीन गिवन टू अंडरस्टैंड इज दिस, दैट द कांग्रेस हाई कमांड बिलीव्स दैट इट्स बेस्ट इफ यू मेक अ हिंदू फेस, अ नॉन सिख फेस, you make that Hindu face the Pradesh Congress president. The feeling is that if you have that logic, then who will be the chief minister should that situation arise, which is bound to be, let's say, a Sikh person? That question remains open. You create a mechanism much like what was tried in Kerala, where all your Lok Sabha faces are given the responsibility of campaigning. They're not asked to campaign, they're not asked to contest, so you know Waring is out of the race, Sukhjinder Randhawa then is out of the race, all of whom are looking at themselves as potential

0: you know, chief ministerial candidates or people with who are in a position to control the levers. My own understanding is this, that I think none of these names that we're talking about, I spoke to Mr. Singla some time back, and I was asking him if he had been sounded out and he was on the campaign trail. The sense I get by speaking to, from Mr. Bajwa to Mr. Randhawa to Mr. Singla, is that there is one more card which is still to play out. And that card is a potential return of Captain Amrinder Singh to the Congress party. Now, I'm not suggesting that Amrinder Singh is going to be the chief ministerial candidate, but the potential of Amrinder Singh coming back to the Congress party is very, very high. And once that happens, if that were to happen, maybe by the end of the year, I think this question that you're raising, that who will be the chief ministerial candidate, will get answered then.
1: And who will be the state president?
0: I think state president at this stage is a toss-up between Mr. Singla and Pargat Singh.
1: Okay.
0: His name, Pargat Singh's name has also been
2: pronounced. He is a jet Sikh and a former hockey captain, known in the entire Punjab. He's a pan-Punjab face. And the most important thing is that he is not in the Gutbaji. He is not with the Channi, neither with the Channi nor with the Raja.
1: क्योंकि विजय सिंगला के ये कहा जा रहा है कि आप एक हिंदू को बना दीजिए तो फिर एक जट सिख जो है आपके सीएम फेस हो जाएंगे, कैंपेन कमेटी के चीफ आपके ऑलरेडी चन्नी हैं जो कि दलित
2: पंजाब में है। पंजाब में अगर आप जट सिख को नहीं बनाएंगे तो आप अकालीज के लिए आप खुला मैदान छोड़ देंगे जट सिख बूट के लिए, नंबर एक। और दूसरा ये है कि आपने सुनील जाखड़ को तब बनाया था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और वो फेस थे पार्टी का, वो जट सिख थे, इसलिए सुनील जाखड़ और सुनील जाखड़ ही हिमसेल्फ इज ए जाट और उनका कद भी बड़ा था। सिंगला इज ए अर्बन फेस, उसको पंजाब के गांव में एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, इसलिए बनाना तो इनको पड़ेगा जट ही लॉजिकली, बाकी किसी को बना दे कांग्रेस पार्टी।
3: ऐड करना चाहता हूँ कि प्रगट सिंह वाकई में उन पोजिशनिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो अकाली दल से आए हैं और कांग्रेस लीडरशिप के करीब नहीं है, उनके कम वकील हैं राहुल गांधी के आसपास, तो इस वजह से शायद उनकी दावेदारी और एक ये लॉजिक भी है कि जट सिख को हटाकर जट सिख को बनाने से आप गेन क्या करते हैं, तो ऐसे में सिंगला जिस एरिया से आते
1: हैं, गया क्या वरिंग के खिलाफ, क्या फैक्टर
3: है? मैं आपसे वही कह रहा था, वर्डिंग सब सीनियर लीडर्स के की जो के आंखों के कांटे कांटे बन गए थे, इनकी जो कार्यशैली थी वो इन सब लोगों को असहज कर रही थी।
1: तो हरी कोई कांटा बन जाता है ना, जब कैप्टन थे तो वो कांटा बने हुए थे,
3: जब बुनियादी
1: जब वरिंग थे वो कांटा बन गए, सिद्धू कांटा बन गए, कौन कांटा नहीं।
3: बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब की पॉलिटिक्स में जो अकाली दल कल्चर है कि जो पिछला उम्मीदवार होता है पिछले चुनाव का वो हल्का इंचार्ज अकाली दल में बनाया जाता है, वो कल्चर सभी पार्टियों में है। तो कांग्रेस के भी जो पिछले चुनाव के हारे हुए उम्मीदवार थे वो अपने आप को अपने इलाके का अपने विधानसभा का इंचार्ज मान के चल रहे थे। जब राजा वर्डिंग प्रदेश अध्यक्ष बने वो यूथ कांग्रेस बैकग्राउंड से आए हुए, उनके अपने नेता हर इलाके में है, उन्होंने अपने करीबियों को बढ़ाना शुरू किया, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाया, पुराने उम्मीदवारों को लगा कि शायद हमारी टिकट नहीं मिले, इसकी वजह से उन्होंने राजा के खिलाफ एक लॉबिंग शुरू की और फाइनली वो राजा का विकेट लेकर के माने।
1: बिकॉज यू नो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एज एन आउटसाइडर, व्हेन आई लुक एट राजा वड़िंग इन द लास्ट 5 years आफ्टर द आम आदमी पार्टी केम टू पावर, चरणजीत सिंह चन्नी वाजंट इवन देयर, ही वाजंट इवन इन पंजाब। आई रिमेंबर ही वेंट अवे टू राइट हिज पीएचडी और समथिंग,
2: ही वेंट अवे टू कनाडा,
1: ही वेंट अवे टू कनाडा एंड देन ही रोट अ पेपर अपेरेंटली अबाउट हाउ द कांग्रेस इज नॉट डूइंग वेल इन पंजाब, एंड देन यू कम बैक यू लूज बोथ योर सीट्स एंड देन यू गेट योर वे,
4: ही गेट्स अ वीटो पावर।
1: Waring is the person who was there, who was carrying out the campaign, who was doing all these sabhas, who was doing Bharat Jodo Yatra, and then 4 months before the election, you kick him out.
5: Should not forget the Lok Sabha election results, where the Congress party under him won 7 Lok Sabha seats. And Aam Aadmi party was reduced to just 3.
1: Yeah.
5: And interestingly, you talked about kaanta. So, I am saying that kaanta se kaanta nikalne ka hai to hai ye Congress party mein. राजा को हटा के फिर एक राजा को हटाया, दो राजा, राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, उसके बाद अब राजा इनको हटा दिया, और तब आप राजा को हटा के चन्नी को लेके आए थे जो दोनों अपनी विधानसभा सीट हार गए, और जो राजा आपने आपको 7 लोकसभा सीटें जितवाई आप उनको हटा रहे हैं फिर से, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने फैसला सही किया, इस पर भी एक डिस्कशन होना चाहिए।
3: बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे
1: राजा के खिलाफ सारे नेता, और आपने कैप्टन को हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पे कैप्टन को हटाया, फिर सिद्धू भी चले गए, कैप्टन भी चले गए, फिर आपको क्या
0: कांग्रेस 2022 हारी
1: नहीं, और क्योंकि कांटे की बात हो रही है, वांट टू एक्चुअली प्ले आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक दैट भगवंत मान हैड ऑन दिस एंटायर फाइटिंग दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द कांग्रेस पार्टी।
6: और राजे पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल, हुण कोई नवा आऊगा ओहदे पिछे लड़नगे भी इहनू लाउणा है। कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे इकट्ठे नहीं हो सकते, हाँ आपदे प्रधान नूं लाउण वास्ते सारे इकट्ठे हो जांदे ने, भी सारे इकट्ठे हैं जी।
1: So Bhagwan Mann has predicted that now everyone is going to get after the life of whoever is going to be the next BPCC president. But very quickly, Akhilesh, I want to ask, any chance that Rajavaring, any talks happening? Because there seems to be a great affinity that the BJP has for ex-congressmen, right? From Vinod Jakhar to Captain, maybe to this new Raja.
5: Not with him, but maybe with Channi. There's a buzz that Channi is in talks with the BJP, but I don't know whether it's true or not. Hmm. But it's just a small buzz there. But BJP is very keenly watching what's happening within the Congress party. Hmm. What my sources in the BJP are telling me that there's a view within the party that now we should not delay this alliance with the Akali Dal anymore.
1: It's happening. They are going to tie up with Akali.
5: It should happen.
4: Yes.
5: But they feel that it should happen because the internal survey of the BJP says that if BJP and Akali Dal comes together, they are going to win 80 seats. Which is a big number in the assembly. Well, this is the internal survey saying.
1: Yeah. And 80 almost as much as Aam Aadmi Party. Just
5: they had won 93, I think.
1: Yes.
5: So,
1: yeah.
0: See, all the survey and all this deliberation of the BJP is taking place or was taking place at a time when the Congress was looking as a house completely divided. Hmm. Because all these leaders that we're talking about, everybody was looking for how many seats will they be able to get for their supporters. If the Congress gets its act right, the Congress is clearly going to be the front runner.

0: पूरे कंट्रोल में नहीं था, थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है। तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, थोड़े टाइम में हम ऑन द वे ही है। और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
1: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे, भूपेंद्र भाई आपको क्या बताया कल?
0: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था। तो मैंने सोचा कि आज भी अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे। आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ। तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे।
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस है, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
0: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी। तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।
1: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
0: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब भी उसमें आना चाहिए, आप बचा लेंगे।
1: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
0: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मी थे पूरे घर वाले
1: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
1: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
0: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब वो वाइफ है उसकी, ऐसा समझ लो
1: जी,
0: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
1: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
0: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
1: और
0: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
1: क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
0: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी हो।
2: Well, Captain Smith Max, extraordinary actions aboard the Fly Dubai flight have triggered a growing chorus of calls to honour him. From national recognition to bravery awards, the demand is clear. The pilot to put the lives of his passengers ahead of his own should be formally recognised for his bravery and courage as well.
3: Captain Smith Machar, the hero, the man of the moment, and the saviour of over 180 passengers, fought to keep them safe even as his own life was at grave risk. Today, that courage is being remembered and a nation is asking for it to be honoured. From the Ashok Chakra to the Bharat Ratna and National Bravery Honours, calls are growing to recognise the hero pilot who put his passengers' lives ahead of his own. The Federation of Indian Pilots has written to the PMO, seeking a National Bravery Award for Captain Smith. The pilot's body says Smith showed extraordinary courage, putting the safety of passengers and crew above his own personal safety. And the call for honour is growing louder. Rajya Sabha MP Milan Deora, former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat, author and lyricist Javed Akhtar, and Shefali Vaidya have publicly praised Smith's courage and called for him to be honoured. But while the world salutes his courage, Smith continues his recovery fight. However, he remains stable and is responding well to treatment in Abu Dhabi. His family has also been allowed to meet him at the military hospital.
0: मैं मिला था 10 मिनट के लिए और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
3: Seriously injured, yet he continued to respond to the emergency, helping bring the flight and its passengers to safety. A pilot who, in the moment of crisis, chose duty over fear. In fact, he went beyond his call of duty. And today, his courage has travelled far beyond the cockpit. From Prime Minister Narendra Modi to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, world leaders have publicly acknowledged Captain Smith's bravery. Today, the question is no longer just about what Captain Smith did in that cockpit. It is about how a nation and the world chooses to remember a pilot who put others' lives first. Bureau Report, NDTV.
2: On that note, we're slipping into a very short break. I'm right back. Lots more lineup for you here on NDTV.
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

से ढाई साल पहले हमारे दिमाग में आया कि इन दोनों जो म्यूज़िक के हमारे ये लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे स्टाइल्स हैं, रॉक स्टाइल है और देसी है, इनको अगर हम कंबाइन करें, डिवोशनल को भी तो रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि एक नया रूप, एक

0: But a new sound doesn't arrive with an audience attached.
1: कई इवेंट्स हमने ऐसे किए हैं जहाँ पे मुश्किल से हमें 10 लोग सुनने आए हैं. वो जो 1-1.5 साल था वो लोगों को ये समझाने में हमें टाइम लगा कि हाँ डिवोशनल म्यूजिक इस तरीके से भी हो सकता है, ये म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे भी किया जा सकता है.

हमने उसमें डिवोशनल म्यूजिक में रॉक स्टाइल तो जोड़ा, लेकिन जो भजन की जो कहते हैं ना रूह है उसको ख़त्म नहीं किया, उसका जो फील है उसको वैसे का वैसे ही रखा, बस मॉडर्नाइज कर दिया।

0: प्रेजेंटेबल क्लबिंग का एक्सपीरियंस था, आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ा करा, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम ने लाइफ में अटेंड करा है प्रेजेंट क्लबिंग।
1: एक्चुअली सब बढ़ती था, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आने में इंटरेस्टिंग था, चेंजेस के साथ जुड़ने का नया तरीका है, इम्प्रेसिव, पूरा ओवरऑल इम्प्रेसिव।

0: नाइस. लाइक मैंने इससे पहले भी फ्रेशर्स अटेंड किया और उसकी जो म्यूज़िक होता है उसके बाद आपका सर बस करता है, कानों में दर्द होता है, बट आफ्टर भजन क्लबिंग इतना स्मूदी फील हो रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है, एकदम फ्रेश हो जाता है ना मन, वो फ्रेशनेस आई है.
1: That evening, there was also seemingly an unexpected addition to the audience.
2: We were told that there might be some VIP movements right before the show, and we didn't know who exactly it could be, but we saw a lot of security arrangements happening.

0: मैं तो शॉक हो गया था जब मैं सुन रहा हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सारे दोस्त मिल के हमने वो फ़ोन से बनाया था, वी लव यू मोदी जी। तो ये बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए।
1: प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ वाइब कर रहे थे, इट वॉज यू नो वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, यू नो वेरी ग्लैमरस एनवायरनमेंट।

0: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
1: High rate, check the audio. High rate, check the audio.
0: Let's do it, let's do it, let's start.
2: Breaking story, we're jumping straight into it.
0: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
3: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
0: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling. For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
3: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
0: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
5: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
8: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct, and raw human grit. Captain Machar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft, and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp and prayed that no bad news should come.
0: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है. क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मिथ अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई.
9: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी है आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए. तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
0: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
9: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मिथ अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया. मतलब वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे.
0: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस हैं, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
9: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
0: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
9: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.

0: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
1: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
0: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
0: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
1: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
0: जी,
1: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
0: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे? फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे
1: वो तो वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
0: और
1: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
0: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
1: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है वो।
2: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equation shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: These are the words of the Indian captain moments after the attack. A captain who, despite his injuries, had managed to open the cockpit door. And now the co-pilot is restrained, his hands bound behind him. Passengers and crew surround him, determined that he will not be allowed to leave.
1: Where is the police? Who is police?
2: No, just outside the police. They are outside. No
0: police. A crew member calls for police.
3: That is terrorist. You understand? Yes. We need police. We need only police here.
1: Okay.
3: He can't go outside.
1: No, he cannot go anywhere.
3: Yes.
1: He's here with us.
3: Yes.
1: Yeah. Is it like this? 1 hour? 40 minutes? More? 5 minutes?
0: The co-pilot remains inside the aircraft as passengers wait for authorities. His uniform is covered in blood. Machar is still being treated nearby. One aircraft, two pilots, one badly wounded, the other restrained. And behind these images, the terrifying reality of what just unfolded at altitude. The aircraft eventually makes an emergency landing in Saudi Arabia. Medics rush to the plane. Captain Machar is taken out for treatment. The man we first saw lying on the floor, bloodied, injured, but conscious, is now being carried away by medical teams. This new footage does not show the attack inside the cockpit itself, but it captures what came immediately after.
4: Go out! Go out! Take him out!
0: The panic, the desperate calls for help. The passengers and crew taking control, and the voice of the captain himself. He hit me so many times.
5: He hit me like
1: no.
5: So many times.
0: Bureau Report, NDTV.
6: Coming up next, we'll tell you about who is Captain Smith Machar and what is his story, the man behind that courage and that valor. Because before the headlines, before the world came to know about his name, there was a pilot with thousands of hours in the sky, years of experience and a reputation among colleagues for being calm and professional. This is Captain Smith Mac and this is his story.
7: For the last few days, one name has dominated the headlines across India and around the world. Captain Smith Machar, an Indian commercial pilot who found himself at the center of an extraordinary mid-air emergency. On September 30th, Fly Dubai flight FZ1073 was flying from Dubai to Tel Aviv when an altercation erupted inside the cockpit. It was the heroism and valor of the Captain Smith Machar that saved the day. Long before he became known around the world for his actions, his courage, and his valor, Captain Smith Machar had already built a substantial career in commercial aviation. With over 13 years of aviation experience and nearly 9,750 flight hours, he has spent most of his career flying Boeing 737s, including more than 6,400 hours as pilot in command. He joined Fly Dubai in 2022 after over a decade with SpiceJet, where he rose from first officer to senior commander and line training captain. However, his aviation journey was not something he had always planned. Machar initially studied textile engineering before pursuing management studies. His path changed after he developed an interest in aviation. He eventually completed commercial pilot training in New Zealand and went on to train for the Boeing 737. From there, the cockpit became his workplace, and thousands of hours in the air became his experience. Former colleagues who worked with Machar at SpiceJet describe him as calm, knowledgeable, and professional.
8: We met in dispatch and he comes out to be very nice, humble, and very respectful guy. Like he respects each and everyone.
7: Machar has spoken about those moments himself. Speaking to Prime Minister Modi from his hospital bed, he described how he opened the cockpit door after the attack, allowing passengers and crew to intervene. And that account, the heart-to-heart conversation with the Prime Minister, is perhaps the clearest window into what was going through Captain's mind.
9: उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं नीचे गिरा हुआ था, तब मुझे तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए।
7: For his family, however, the last few days have been less about heroism and more about survival. Machar's father, Bhupendra Machar, told NDTV that the family's first reaction when they heard about the incident was fear. His son was injured. The family prayed for his safety. His father said that Smith's overriding thought during the crisis was that no passenger should lose their life.
10: के मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया, और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था।
7: एंड देन देयर इज द अदर साइड ऑफ स्मिथ्स लाइफ। हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन आर इन दुबई व्हाइल हिज पेरेंट्स आर इन मुंबई। हिज फादर डिस्क्राइब्ड फ्लाइंग एज सेंट्रल टू हिज सन्स लाइफ, सेइंग दैट स्मिथ इज डीपली कमिटेड टू हिज प्रोफेशन। फॉर मिलियंस, Captain Smith Machar is now the face of a remarkable aviation survival story. For his former colleagues, he is the senior pilot they knew as calm and knowledgeable. For his childhood friends, he is the boy they grew up with. For his parents, he is simply their son. And for the passengers aboard flight FZ-1073, he is the captain who, even after being seriously injured, kept fighting to get that cockpit door open. Today, Smith Machar is recovering in an Abu Dhabi hospital. The investigation into exactly what happened inside that cockpit continues. But the story of the pilot himself is already much bigger than the incident that made him famous.
6: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct and raw human grit. Captain Machar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp and prayed that no bad news should come.
11: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai, aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai, unki tabiyat kaisi hai, unki abhi jo video samne aaya hai prime minister ke sath baatcheet karte hue saaf nazar dikhai deta hai ki wo theek hai, aap ek update dijiye ki wo kaise hain, aapka beta kaisa hai abhi Bhupendra bhai?
10: Jaisa aapne dekha video mein wahi cheez maine bhi dekhi hai aaj, kyunki main aaj unko kal main mila tha 10 minute ke liye, tabhi wo thoda पूरे कंट्रोल में नहीं था, थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है, तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है, और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
11: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
10: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था, तो मैंने सोचा कि आज भी अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे, आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ, तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मैं बोला वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे।
11: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस हैं, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
10: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी। तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।
11: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
10: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे।
11: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
10: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
11: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
10: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
11: भूपेंद्र भाई, क्या स्मित हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
10: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
11: जी,
10: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
11: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
10: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
11: और
10: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
11: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
10: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है वो।
6: Well, Captain Smith Max, extraordinary actions aboard the Fly Dubai flight have triggered a growing chorus of calls to honor him. From national recognition to bravery awards, the demand is clear. The pilot who put the lives of his passengers ahead of his own should be formally recognized for his bravery and courage as well.
12: Captain Smit Machar, the hero, the man of the moment, and the savior of over 180 passengers, fought to keep them safe even as his own life was at grave risk. Today, that courage is being remembered and a nation is asking for it to be honored. From the Ashok Chakra to the Bharat Ratna and National Bravery Honors, calls are growing to recognize the hero pilot who put his passengers' lives ahead of his own. The Federation of Indian Pilots has written to the PMO, seeking a National Bravery Award for Captain Smit. The pilot's body says Smit showed extraordinary courage, putting the safety of passengers and crew above his own personal safety. And the call for honor is growing louder, राज्यसभा एमपी मिलन

0: टॉक योर पॉलिटिक्स, इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोइंग टू रिजाइन?
1: नो, सरकार का ये असेसमेंट है कि इसका ग्राउंड पे कोई रेजोनेंस नहीं है.
2: द डैमेज दैट हैड टू बी इन्फ्लिक्टेड ऑन द गवर्नमेंट एंड ऑन द सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैज ऑलरेडी बीन इन्फ्लिक्टेड.
0: द ऑल पार्टी मीटिंग हुई, आम आदमी पार्टी वाज़न्ट देयर, अखिलेश यादव हिमसेल्फ वाज़न्ट प्रेजेंट देयर, डीएमके हैड बॉयकॉटेड इट एज़ वेल.
3: ना उनको बुलाया गया ना वो आए.
0: राहुल गांधी टोल्ड द कांग्रेसमैन कि मोदी जी को भरोसा है कि हम सत्ता में आने वाले हैं, मेरे खुद के पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है. जमीन
4: परसेप्शन बैटल जीतने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं.
0: फॉर द होम मिनिस्टर टू से कि मैं एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला हूँ.
1: Amit Shah talks about a deadline. People take him seriously.
0: When that larger political message comes out, you will be right here with us saying, politics Zindabad.
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: उनकी तबीयत कैसी है, उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है। आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
1: जैसा आपने देखा वीडियो में वही चीज मैंने भी देखी है आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था। थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है। तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, थोड़े टाइम में हम ऑन द वे ही है। और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
0: स्मित ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
1: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था। तो मैंने सोचा कि आज भी अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे। आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ। तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे।
0: भूपेंद्र भाई, स्मित के जख्म कितना सीरियस है, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
1: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी। तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।
0: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
1: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब भी उठ नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे।
0: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
1: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मी थे पूरे घर वाले
0: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
0: भूपेंद्र भाई, क्या स्मित हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
1: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
0: जी,
1: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता है मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
0: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
1: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा। और क्या? मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
0: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
1: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है।
0: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी। क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
1: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है। हम लोग तो एक आप बोलेंगे तो साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी है, और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है। मेरे हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था कि प्राउड मोमेंट भले है लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
0: जी बिल्कुल। और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मिथ को, वो बिल्कुल सही है। पूरा नेशन, एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
1: सही है, वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियो, और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका के इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और ये सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे को विश्वास है कि वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
0: भूपेंद्र भाई, स्मिथ की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी? सर
1: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही, और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होगा।
0: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट
1: था। हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि वो दोनों बच्चे और स्मिथ की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे, और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी, और डर ना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस, ऐसे भी करके
0: जी
1: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
0: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इसराइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज़ किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इसराइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
1: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है, और जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया ऐसा प्रूव हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
0: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया है, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
1: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
0: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही काम करेंगे आगे जाकर? भूपेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, आपके वरीज भी हैं, आप कंसर्न भी हैं, क्या आपको लगता है उनको वापस आना चाहिए भारत?
1: वो काम शायद जहां कर रहा है वहीं करेगा।
0: इसको लेकर जो इम्पैक्ट होगा एविएशन पर, भूपेंद्र जी थोड़ा डिटेल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कॉकपिट में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेकर, टेरर लेकर, एविएशन को लेकर असर पड़ेगा? अभी
1: वो अपनी कंपनी का सब लोग अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ऐसा चीज बहुत सालों में एक बार होता है और वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके लिए जो भी चौकसाई करनी होगी वो कंपनी वाले करेंगे जरूर।
0: एक बात बताइए भूपेंद्र जी, सारा दुनिया आपका आपके बेटे को जानता है, अब उनका नाम पूरा रोशन हो गया है, लेकिन जो ओमानी कोपायलट था जो स्मिथ के साथ ऑपरेट कर रहा था इस फ्लाइट में, उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट है ये, इसके बारे में आपका क्या सोच है?
1: नहीं, मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
0: किसी ने क्या आपको ब्रीफ किया है कि क्या हुआ था उस कॉकपिट में? किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको क्या ब्रीफ किया है?

0: नहीं, मैं ब्रीफ करूंगा मेरे बेटे के साथ ही, जो भी समझना है पूरा उनके साथ ही।
1: जो ग्लोबल मीडिया में आपके बेटे के बहादुरी को लेकर जो मीडिया स्टोरीज चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र जी? क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू के पहले, स्मित मच्छर जो है एक इंडियन पायलट नहीं है अब, एक वो ग्लोबल एक बहादुरी के एक आइकॉन है ऑलमोस्ट। क्या ये सही है? ही इज अ ग्लोबल सिटीजन नाउ सर।
0: ऊपर वाले की मेहरबानी है।
1: क्या आप सिटीजन्स को कुछ बोलना चाहेंगे एज द फादर ऑफ स्मित मच्छर, द मोस्ट फेमस इंडियन पायलट ऑफ आर जेनरेशन सर? उन्होंने जो किया है इंडिया को प्राउड किया है, क्या सिटीजन्स को कुछ बताएंगे? अब बहुत सारे यंग जेंजी भी देख रहे हैं अभी, स्मित जो है 38 साल के थे के हैं, कुछ मैसेज है आपका?
0: मैं खाली एक स्मित का एक आपको नेचर और हमारा फैमिली का जो चलने का रास्ता है वो मैं खाली अपने जेंजी को खाली बोल सकता हूँ कि जो रिस्पेक्ट आज स्मित फादर मदर को दे रहा है और जिस तरीके से अपने फैमिली के साथ वो अच्छा लाइफ जी रहा है, तो जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उतना ऊपर वाला हेल्प करेगा जब भी तकलीफ आएगी। तो मैं यंगस्टर्स को जो अपग्रोन है अभी, जो नया लाइन में जाना चाहते हैं या अभी उनके हाथ में कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, तो एक ही बात बोलूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी है ना, वो हमेशा जीतती है और उसी को पकड़ के चलना वही अपने लिए सक्सेसफुल रहेगा, तो आगे अपना इंडिया में सब जन अच्छी तरह से रह पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और भूपे
0: धन्यवाद। अभी
1: भूपेन जी आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, एक जो मोस्ट वायरल कमेंट है इस इंटरेक्शन में प्रधानमंत्री के साथ, वो था हनुमान चालीसा को लेकर। क्या स्मित बहुत रिलीजियस माइंडेड है, बहुत विश्वास रखते हैं हनुमान जी में, आपके परिवार में, इसके बारे में बताइए सर।
0: खाली एक ही लाइन में बोलूंगा कि हम लोग के घर में एक सिस्टम है कि एक सोते टाइम हम लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और लाइट ऑफ करते हैं, और सुबह स्मित ने एक अपने छोटे बच्चे को रोज सुबह मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा बोलने का काफी दिनों से चालू किया है, तो हमको खुशी है हम लोग के घर में इस तरीके का सबका। ठीक है जी,
1: भूपेंद्र जी एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो प्राउड ऑफ स्मित मच्छर, थैंक यू वेरी मच, वी विश यू द वेरी बेस्ट, वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी, एंड आई नो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम अगेन आफ्टर ही हैज जस्ट स्पोकन टू द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र मच्छर, फादर ऑफ द हीरो इंडियन पायलट स्मित, स्पीकिंग फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव हियर on NDTV. Now viewer, India has no publicly announced direct role in the investigation into the Fly Dubai airplane terror incident, but I want to say tonight that India cannot afford to be on the sidelines and let other countries carry out this investigation. Now hear me out, let me explain why I'm saying this. Now, Captain Smit Mच्छर is an Indian citizen. He's an Indian national. He was grievously assaulted by his Omani co-pilot and airline colleague, a man Israel believes was radicalized and intent on bringing down the aircraft 3 days ago. Now, whether the intention was to crash it or use it against a ground target remains to be established. But an Indian national was attacked. And India has a direct stake, therefore, in the answers of this investigation. Saudi Arabia, the UAE and Israel are investigating. The country over which the attack happened, which is Saudi. The country from which the aircraft departed, which is UAE. And the country it was headed to, which is Israel. Now, India is respecting those jurisdictions. That is understandable. But respecting jurisdiction cannot mean outsourcing responsibility. India has close relations with all these three countries, Israel, the UAE, and Saudi Arabia. It also has close relations with Oman, where the co-pilot is reported to be from. Now, these relationships must secure meaningful Indian engagement, regular access to findings, and accountability for the assault on Indian citizen Smit Mच्छर. Now, I recognize the complexities of a sensitive investigation. I've covered national security my entire career, so I know it's not as simple as India wanting to be part of the investigation. But without direct engagement, we leave its urgency.